मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि तदनुसार 25 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को है। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से

उदार की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, श्रद्धा प्रेम और विश्वास से भाव पैदा होता है, भाव से ही भक्ति होती है। और जहां मैं मिट जाए, वस्तु ही तू रह जाए, वहीं विभक्ति रस का जन्म होता है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जिनके मस्तक मुगुर मुकुट हैं शोभे, होठों पे बांसुरी प्यारी, उंगली पर गोवर्धन पर्वत और सबके दिल में गिरधारी।

हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। आपको हम बारंबार नमन करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे हरिओम शरण, लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन, विषय है दूसरों के लिए सोचो।
1: विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने जिन दिनों स्वामी विवेकानंद शिकागो जाने वाले थे, उन्हीं दिनों माँ शारदा भी श्री रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु व पथ प्रदर्शक मान लिया था। एक दिन विवेकानंद माँ शारदा के पास पहुंचे। वो उस समय रसोई में भोजन की व्यवस्था कर रही थी। विवेकानंद को देखते ही उनका चेहरा प्रसन्नता से भर उठा। माँ शारदा ने उन्हें बैठने को कहा, पर विवेकानंद बैठने वाले कहाँ थे। माँ के साथ रसोई में हाथ बटाने लगे। माँ शारदा भी काम के साथ साथ विवेकानंद से बातें करती जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने विवेकानंद से कहा, बेटा जरा चाकू उठाकर देना। उन्होंने तुरंत चाकू उठाकर माँ शारदा को थमाया। चाकू लेते हुए माँ ने देखा कि विवेकानंद चाकू को लोहे वाले भाग की तरफ से पकड़े हुए हैं और लकड़ी के हैंडल वाले भाग को उन्हें थमा रहे हैं। आमतौर पर होता यह है कि चाकू देने वाला चाकू को लकड़ी के हैंडल की तरफ से पकड़कर लोहे वाले हिस्से को ही पकड़ाने के लिए आगे बढ़ाता है। यूं तो ये बात बहुत छोटी सी है, पर यदि विचार किया जाए तो बहुत बड़ी। ये मानवीय स्वभाव है कि जाने अनजाने में पहले अपनी सुरक्षा मनुष्य स्वयं करता है, परंतु विवेकानंद तो जन सामान्य से ऊपर थे। उनमें असाधारण प्रतिभा थी। वो तो स्वयं को कष्ट देकर दूसरों के हित की बात सोचने वाले प्राणी थे। प्यार से विह्वल हो माँ शारदा ने उन्हें अपने गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया, बेटा तुम अपने उद्देश्य में सफल होगे, लोग तुम्हारा नाम मान सम्मान से लेंगे, इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम सदा सदा के लिए अमर रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम स्वभावतः दूसरों का भला चाहते हो। इस संसार में सारे कष्टों का मूल यही है कि हम केवल अपना हित चाहते हैं। अपने छोटे से हित के लिए दूसरे का बड़े से बड़ा नुकसान करने में नहीं हिचकिचाते। देव और दानवों में भी यही अंतर है। जहां देव देता है

0: दानव केवल लेता है और लेता ही रहता है। एक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान विष्णु ने देव और दानवों को भोजन पर निमंत्रित किया, लेकिन शर्त यह रखी कि भोजन खाते समय कोई भी अपना हाथ नहीं मोड़ेगा। अब समस्या ये थी कि बिना हाथ मोड़े खाना मुंह में कैसे डाला जाए। कुछ देर सोच विचार चलता रहा और देवताओं को इसका समाधान मिल गया। उन्होंने एक दूसरे के मुख में भोजन का ग्रास डालना शुरू कर दिया, क्योंकि बिना हाथ मोड़े भी सामने वाले को तो भोजन कराया ही जा सकता है। केवल मन में ये विचार भर ही आना चाहिए कि हमें दूसरों को भोजन कराना है। उधर दूसरी ओर दानवों को केवल अपने अपने भोजन की चिंता थी। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि भगवान विष्णु द्वारा लगाई गई शर्त का उल्लंघन किए बिना वे कैसे भोजन कर सकते हैं। क्षुधा से आतुर हो वे भभक उठे। क्रुद्ध होकर वे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, अरे विष्णु, आज तुम अतिथि अपमान के पाप से नहीं बच सकते। एक ओर तो हमें आमंत्रित किया और दूसरी ओर ऐसी शर्त लगा दी कि हम भोजन ही नहीं कर सकें। विष्णु मुस्कुराए, बोले, पहले दूसरों को खिलाना सीखो, तुम्हारा पेट स्वयं भर जाएगा। तुम दूसरों की भलाई करके तो देखो, तुम्हारे कष्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। संसार में शांति लाने का यही तो एक छोटा सा गुर है। इस बात पर दानव बहुत लज्जित हुए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था दूसरों के लिए सोचो। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान कार्यक्रम। खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी गाय के गोबर और मूत्र के महत्व के विषय में डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर ओपी वर्मा बरसाती बुखार और फोड़े फुंसी से बचाव के विषय में जानकारी देंगे।

समवेत स्वर में लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर। प्रातः 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा शबीर अहमद खां का राग तोड़ी में ख्याल गायन। ग्यारह बजे आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता महमूद के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा वर्षा ऋतु में प्राकृतिक जल स्रोतों के नजदीक जाने से बचे और 12 बजे कार्यक्रम लोक मंजरी के अंतर्गत सुनिएगा मनोरमा तिवारी के गाए कुछ लोकगीत।

दिन में 1:15 पर कार्यक्रम पनघट के अंतर्गत आप सुनेंगे लकी आलम की वार्ता, जिसका विषय होगा प्रगति के रास्ते पर ग्रामीण महिलाएं। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा का विषय होगा मिलेट अपनाएं, सेहत और आय दोनों बढ़ाएं। आशा भोसले और गुलाम अली की कई गजलें हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर।

हमारी सांधिकालीन सभा में फिल्मी प्रश्न पर आधारित कार्यक्रम सुरसंध्या प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में शाम 5:30 पर सुनी जा सकेगी मेहर सत्संगी की वार्ता, जिसका विषय होगा मानवता के भविष्य की कुंजी है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत, चर्चा का विषय होगा कौशल से स्मृति, साथ ही हम जानकारी देंगे वीरता पुरस्कार के बारे में। 6:00 क्रमालोक कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी धान की फसल के सामयिक कार्य के विषय में प्रगतिशील किसान देवेंद्र सिंह से श्री कृष्ण की बातचीत। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा का विषय होगा स्वस्थ मिट्टी संपन्न किसान, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। श्रोताओं 6:30 पर मसूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनेंगे मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाले रोग और उनके उपचार के विषय में डॉक्टर अनुजा जैन की वार्ता। फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे डूब दुर्घटनाएं और हमारी लापरवाही, घरेलू हिंसा और बच्चे। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा विज्ञापनों में नारी छवि के अपचित्रण के विषय में डॉक्टर ममता सिंह की वार्ता। और 7:31 पर आप सुनेंगे पानी में डूबते व्यक्ति का बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर अतुल कुमार सारस्वत से श्री अनिंद्र सिंह की बातचीत।

श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस कांड।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाडीकर। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए अब आपको सुनवाते हैं गाय के गोबर और मूत्र के महत्व के विषय में डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता।
1: पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका तात्पर्य गाय से प्राप्त 5 द्रव्यों का मिश्रण है, जैसे गाय का दूध, दही, घी, मूत्र एवं गोबर। ऐसा माना जाता है कि मात्र गाय के गोबर एवं मूत्र के सेवन से शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकार भी दूर होते हैं तथा आयु, बलव एवं ओज में वृद्धि होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर में व्याप्त मंद विष समाप्त हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यसनों एवं पर्यावरण प्रदूषणों से प्रभावित शरीर पर यह अद्भुत चमत्कार प्रभावकारी है। बिगड़े स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोधी क्षमता को यह ठीक करता है। तंबाकू, मंदिरा आदि के सेवन से शरीर को जो क्षति होती है उसे भी गाय के गोबर एवं मूत्र से ठीक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पशुपालक भाई गाय के गोबर एवं मूत्र का इस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। गौमय गोबर के रस को कहते हैं। गाय के गोबर को बारीक सूती कपड़े से छानकर गौमय रस प्राप्त किया जा सकता है। यह कसैला एवं कड़वा होता है एवं कफ जन्य रोगों में प्रभावशाली है। इसे अनेक त्वचा रोगों में प्रयोग किया जाता है। इसे मुहासे दूर करने तथा चेहरे पर कांति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गौमय रस एवं गौमूत्र को मिलाकर बनाया गया मालिश तेल वात व्याधि में उपयोगी है, जिसे जोड़ों के दर्द, गर्दन दर्द, सियाटिका, स्पॉन्डिलाइसिस आदि रोगों में प्रभावकारी पाया गया है। यह तेल शरीर की मांसपेशियों को पुष्ट करता है। गौमय रस के साथ गेरू तथा मुल्तानी मिट्टी व नीम के पत्तों को मिलाकर नहाने का साबुन बनाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों तथा खाज, खुजली, दाद, बालों की रूसी आदि में लाभकारी है। इसे त्वचा की झुर्रियां दूर करने तथा चेहरे को कांतिमय बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इससे बना दंत मंजन दांतों में कीड़ा नहीं लगने देता तथा पायरिया की शिकायत ठीक करता है। यह मंजन मुख की दुर्गंध दूर करता है तथा

छालों में आराम देता है। नेडअप कंपोस्ट, इस विधि के लिए पशुपालक भाई समतल सतह पर ईंटों का ढांचा जिसका आकार 3.5 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर ऊंचा हो, इस प्रकार से ईंटों का ढांचा बनाया जाता है। इसे सीमेंट या चूने से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ढांचे में वायु संचार हेतु पर्याप्त छेद हों। ईंट की पहली तथा अंतिम 2 पंक्तियों में किसी प्रकार का कोई छेद नहीं होता है। ढांचा तैयार होने पर इसकी सतह व अंदर की दीवारों पर गाय के गोबर एवं मिट्टी के मिश्रण से लीपा जाता है। इस विधि द्वारा कंपोस्ट तैयार करने हेतु फसलों के डंठल, छाल, जड़, गाय के गोबर, पानी एवं मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ढांचे को भरने हेतु अधोसतह पर लगभग 200 किलो कचरे की तह लगाकर तथा दूसरी सतह पर 150 किलो गाय का गोबर डालकर पानी का छिड़काव करने के पश्चात यह प्रक्रिया ढांचा के भरने तक दोहराई जाती है। ढांचे के ऊपरी हिस्से को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह झोपड़ी नुमा हो, जिससे किसी भी प्रकार का पानी ढांचे के ऊपर टिक ना सके। कंपोस्ट की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एक हल्की तह रॉ फॉस्फेट या सिंगल सुपर फॉस्फेट की बिछाई जाती है तथा बांस की सहायता से इसमें छेद करके इसमें 500 ग्राम PSB, 500 ग्राम एजोटोबैक्टर, 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर को 23 लीटर पानी में घोलकर इन छेदों में डाला जाता है। इस विधि के द्वारा 90 से 110 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी साधारण खाद की अपेक्षा 25 गुना गुणवत्ता अधिक होती है। CPP काऊ पेट पिट, इस विधि के अंतर्गत 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा तथा 1.5 फीट गहरा जमीन में गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें गाय के ताजे गोबर अधिकतम 24 घंटे पुराना लगभग 60 किलो लिया जाता है। इसके साथ ही मुर्गी के 250 ग्राम अंडे के छिलके, बेसाल्ट या वेंटोनाइट 250 ग्राम जूट या टाट का बोरा तथा बायोडायनेमिक प्रिपरेशंस 502 से 507 तक 1-1 ग्राम ली जाती हैं। इस विधि से 3 माह में ही गैर रासायनिक खाद तैयार हो जाती है। इस खाद को 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग मिट्टी में बुवाई से पहले, फसलों पर, बागानों में, बीज शोधन एवं नर्सरी विकास में किया जाता है। गौमूत्र, गौमूत्र तीखा व कड़वा होता है जो क्षारयुक्त है। गौमूत्र में कार्बोलिक एसिड होने से उसकी स्वच्छता और पवित्रता बढ़ती है। इसमें फॉस्फेट, पोटाश, लवण, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, हार्मोन, साइटोकाइंस व जीवाणु एवं विषाणु नाशक तत्व पाए जाते हैं। यह लघु अग्निदीपक, मेघकारक, पित्तकारक तथा कफ एवं वातनाशक है। यह भूख बढ़ाता है। यह शूल, उदर रोग तथा कब्ज को दूर करता है। इसका उपयोग प्राकृतिक चिकित्सा में पंचकर्म क्रियाएं यथा व्रण, धावरणार्थ, स्वेदनार्थ, विरेचनार्थ तथा निरूह वस्ती में एवं विभिन्न प्रकार के लेपों में होता है। आयुर्वेद में कई प्रकार की औषधियां गौमूत्र से ही बनाई जाती हैं। गौमूत्र के द्वारा कई प्रकार के चूर्ण जैसे कफनाशक चूर्ण, वातनाशक चूर्ण एवं मोटापा नाशक चूर्ण आदि कई प्रकार के चूर्ण बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद जन औषधियों का शोधन गौमूत्र में ही किया जाता है तथा कुछ औषधियों का सेवन गौमूत्र के साथ करने की सलाह भी दी जाती है। गैर रासायनिक कीटनाशक निर्माण, इसके अंतर्गत पशुपालक भाई लगभग 10 से 12 किलो गाय का मूत्र एक घड़े में भर लें तथा उसमें 4 से 6 किलो नीम की पत्ती डाल दें तथा उसमें एक तांबे का छोटा सा टुकड़ा डाल दें तथा इस घड़े को 3 माह के लिए 1 फीट जमीन के अंदर गाड़ दें। 3 माह के पश्चात घड़े को निकालकर उसे इतनी देर तक गर्म करें कि उसमें उपलब्ध पानी की मात्रा या गौमूत्र की मात्रा 1/3 रह जाए। शेष मात्रा को 100 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से मिलाकर फसलों पर छिड़काव किया जाता है। इस छिड़काव से काफ़ी बेहतरीन नतीजे प्राप्त हुए हैं तथा फल पर

0: फसल पर किसी भी कीटनाशक के छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: कार्यक्रम खेती की बातें भी अभी आपने सुनी। गाय के गोबर और मूत्र के महत्व के विषय में डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद सुनिएगा हिंदी में समाचार, और उसके बाद सुने जा सकेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थक चर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्र प्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिक द्वादशशतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेलसम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रूमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षाक्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रोमानिया देशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननं भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने

0: डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जलक्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बाब सामेह को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वो इस प्रतिष्ठित जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal actions will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. Delhi Police has constituted a special task force STF to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Delhi Police in a statement said that the task force will be responsible for conducting prompt, professional and comprehensive investigations into offences pertaining to public examinations conducted by different authorities. Prime Minister Narendra Modi has thanked the country's youth for the response and suggestions following his video. In a social media post, Mr. Modi expressed gratitude to the youth for the overwhelming support. The video has now crossed more than 303 million views. It is the most viewed reel within its first 24 hours. The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Earlier, Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leaks. Delhi Metro Rail Corporation has informed that 18 stations have been closed from 7:30 a.m. this morning till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Rajiv Chowk, Patel Chowk, New Delhi, Central Secretariat, ITO, Mandi House, Supreme Court and others. However, DMRC noted that interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं बरसाती बुखार और फोड़े फुंसी से बचाव के विषय में डॉक्टर ओपी वर्मा की वार्ता।
1: बरसाती बुखार उस बुखार को कहते हैं जो बरसात के समय बरसात के कारण होने वाली कुछ बीमारियों में उत्पन्न होता है। बरसात में चूंकि जगह जगह पानी का भराव होता है तो उस पानी के भराव की वजह से वहाँ मच्छर पैदा होते हैं और इन मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू आदि बुखार उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा बरसात के समय में हवा में पानी की नमी बढ़ती है, यह नमी वायरस के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होती है, सहायक होती है, तो इस कारण बरसात के समय में वायरल फीवर भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त बरसात की वजह से गंदगी के कारण टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड या पीलिया की बीमारी की होने की भी संभावना बनी रहती है। अतः ऐसी स्थिति में हमें इन सब चीज़ों से बचाव करने के लिए पानी का इकट्ठा होना या अन्य ऐसी गंदगियां जो बरसात की वजह से हो रही हैं उनसे बचाव करना होता है। इसके अलावा बरसात में हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से हमारा पसीना नहीं सूख पाता है, तो पसीना ना सूखने की वजह से शरीर के अंदर इधर तो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और दूसरा पसीना ना सूखने की वजह से फोड़े फुंसी भी ज़्यादा होते हैं। अतः बरसात के समय में फोड़े फुंसी और इन बुखार की बीमारियों से बचाव करने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम घर के आसपास बरसाती पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने कूलर्स जो कि पानी का सबसे बड़ा स्टैगनेंट वाटर का सबसे बड़ा सोर्स होता है उसमें बार बार पानी की सफाई करते रहें, बदलते रहें। इसके अलावा पहनने के लिए सूती और पतले कपड़े का उपयोग करें ताकि पसीना इकट्ठा ना हो और सूखता रहे। इसके अतिरिक्त हम बरसात के समय में गंदी और खुली हुई चीज़ या कटे हुए फलों का सेवन न करें।

0: और जहां तक हो सके इन चीजों से अपने आप को बचाते हुए चलें। फिर मच्छरों से बचाव करने के लिए मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते रहना चाहिए। घर के कूलर में सबसे बड़े एक सोर्स होता है जहां मच्छर इकट्ठे होते हैं, इसलिए घर के कूलर की सफाई समय समय पर करते रहें, उसमें पानी बदलते रहें। अगर बरसात का पानी आसपास कहीं गड्ढों में इकट्ठा होता भी है जो हमारे लिए मजबूरी है, तो उस पर हम थोड़ा मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। इस छिड़काव की वजह से वहाँ एक एक पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है, यह लेयर फिर मच्छरों को पैदा नहीं होने देती है और इसकी वजह से हमें उसका फीवर का बचाव होता है। मलेरिया या डेंगू या मच्छर से होने वाली अन्य बीमारियों की तरफ से हम बचते हैं। लेकिन इसके अलावा मुख्य रूप से हमें जो ख्याल रखना है बरसात के समय में वो है गंदगी का। बरसात के समय में हमारे जूते आदि के साथ गंदगी घर के अंदर पहुंचती है, तो घर के अंदर जाने से पहले अपने बाहर एक पायदान पर अपनी गंदगी जूतों की साफ करनी चाहिए। इसके अलावा घर के अंदर भी गंदगी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदी चीज खाने से बचना चाहिए। कटे हुए ये फलों को बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके सेवन से ही बार बार हमें कुछ ना कुछ बीमारी या इन्फेक्शन लगते रहते हैं। और इसके अतिरिक्त समय पर हमें जिन जिन बीमारियों के टीके उपलब्ध हैं वो टीके लगवाने चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी बरसाती बुखार और फोड़े फुंसी से बचाव के विषय में डॉक्टर ओपी वर्मा की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वर में देशगान। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षणों में।

0: दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव ना रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सब।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी, बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मामले पर संसद के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विधेयक के पारित होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हटकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
4: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: इससे पहले गुरुवार रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। इस बीच सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में अहम कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने कल केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर कड़ी निगरानी रखेगी और नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा कि वह परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम में बदलने के लिए क्या कदम उठा रही है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
5: लगभग 2 घंटे बातचीत चली सरकार की ओर से, मैं और मेरे साथ मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: श्री नड्डा ने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगें रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। दोनों केंद्रीय मंत्री कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक बार फिर चर्चा करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा युवाओं के हितों को ध्यान में रखा है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में समय रहते कार्रवाई के साथ दोबारा परीक्षा भी करवाई गई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरने के बजाय सदन में चर्चा करनी चाहिए।
6: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद सरकार उस पर सख्त सख्त कार्रवाई भी की। हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत रहा है वैसा जो आपके पास सुझाव हो ताकि हम उसका कानून बनावे नया ताकि आगे से पेपर लीक आओ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी कांवड़ यात्रा और अन्य पर्वों को लेकर कल देर शाम उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा में प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा सुविधा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने अफवाह फैलाने मिलावट ओवररेटिंग अव्यवस्था या अराजकता करने का प्रयास करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखी जाएं। इसके साथ ही प्रत्येक दुकान पर संचालक का नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा प्रदेश के किसी एक हिस्से तक सीमित आयोजन नहीं रह गई है। ऐसे में हर जनपद में व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा से पहले यात्रा मार्गों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था स्वच्छता पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर लेने के भी निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आगामी सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कई विभागों और जनता के बीच समन्वय बनाया जा रहा है।
7: कांवड़ यात्रा को लेके जो भी से जुड़े हुए चाहे वो सरकारी विभाग हों या फिर आम जन हों या जो भी समितियां उनके साथ एक संवाद स्थापित किया गया है। मुख्य जो घाट हैं जहां से गंगा जल लेके लोग शिवालयों में जाते हैं वहां का निरीक्षण किया गया, रूट का निरीक्षण किया गया। घाटों पर जहां जहां पे जल पुलिस की सहयोग लेनी है जल पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस तरह से श्रद्धालुओं को कहीं कठिनाई न हो इसके लिए हमारे पूरे अधिकारी पूरे अलर्ट मोड में हैं।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के दौरे पर रहेंगे। वह फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान 342 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कल झांसी में 83 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुरसराय नगर पालिका परिषद और गरौठा नगर पंचायत संयुक्त पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में पेयजल बिजली और आधारभूत ढांचे के

विकास पर अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं। सहारनपुर के गंगोह थाना अंतर्गत ग्राम नयाकुंडा में एक पटाखा फैक्ट्री में कल शाम विस्फोट हो जाने से दो मजदूरों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कराया। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं अयोध्या और बलिया में घाघरा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बाढ़ की आशंका के दृष्टिगत सभी संवेदनशील जिलों में वहां का प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को दी मंजूरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति की मांगी जानकारी। केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। कहा, अफवाह फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरुद्ध की जाए कठोर कार्रवाई। और प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। श्रोताओं, डीयू में स्नातक में प्रवेश के लिए आज दूसरी सीट आवंटन सूची जारी होगी। इस सूची का इंतजार उन हजारों छात्रों को है जिन्होंने पहली सूची में सीट नहीं मिलने के बाद अपग्रेड का विकल्प चुना था या अगले चरण का इंतजार कर रही थी। दूसरी सूची जारी होने के साथ ही विश्वविद्यालय में दाखिले का दूसरा और अहम चरण शुरू हो जाएगा। दूसरी आवंटन सूची में उन छात्रों को प्राथमिकता मिलेगी जिन्होंने पहले चरण में सीट स्वीकार कर अपग्रेड का विकल्प चुना था। इसके अलावा पहली सूची में सीट से वंचित रहे अभ्यर्थियों को भी उनकी वरीयताओं के आधार पर उपलब्ध सीटों के आधार पर नया आवंटन मिल सकेगा। कई लोकप्रिय कॉलेजों और पाठ्यक्रमों में सीटों के अपग्रेड होने की संभावना है, जबकि कुछ कॉलेजों में रिक्त सीटें भी भरने की उम्मीद है। इसके साथ ही यदि कुछ सीटें खाली रहती हैं तो उन्हें आगामी आवंटन सूचियों और स्पॉट एडमिशन के माध्यम से भरा जाएगा। श्रोताओं, डीयू में स्नातक प्रवेश का दूसरा राउंड 25 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में सबसे बड़ा बदलाव नए विद्यार्थियों के प्रवेश से ज्यादा पहले से सीट स्वीकार कर चुके अभ्यर्थियों के अपग्रेड में देखने को मिलेगा। पहले राउंड में हजारों छात्रों ने अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए उपलब्ध विकल्प स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनकी पहली पसंद का कॉलेज या पाठ्यक्रम नहीं मिला। अब इन्हीं छात्रों के पास बेहतर कॉलेज और पसंदीदा कोर्स में पहुंचने का सबसे बड़ा अवसर होगा। दूसरे राउंड में हजारों छात्र अपने ड्रीम कैंपस के सपने को साकार करने के लिए अपग्रेड का विकल्प चुनेंगे। पहले राउंड की कट ऑफ से कुछ अंक पीछे रह गए अभ्यर्थियों को दूसरे राउंड में बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं जिन छात्रों ने सीट स्वीकार करते समय अपग्रेड का विकल्प चुना है उसके लिए उच्च वरीयता वाले कॉलेज में पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरे राउंड के बाद कॉलेजों में सीटों का नया संतुलन बनेगा।

शेष कॉलेजों से विद्यार्थियों के अपग्रेड होने पर उनकी सीटें अन्य कॉलेजों के छात्रों को मिलेंगी और ये सिलसिला नीचे तक चलता रहेगा। यानी कि एक सीट खाली होने से कई छात्रों का कॉलेज बदल सकता है। ऐसे में दूसरे राउंड को इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया का सबसे निर्णायक चरण माना जा रहा है, क्योंकि यहीं से हजारों विद्यार्थियों को अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का मौका मिल सकेगा।

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में वोकेशनल पाठ्यक्रम में साइबर सिक्योरिटी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता फॉर ऑल शामिल किया गया है। साइबर सिक्योरिटी का पाठ्यक्रम आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। विश्वविद्यालय ने साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम को आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार किया है। इसके तहत विद्यार्थियों को साइबर खतरों की पहचान, डेटा सुरक्षा, एथिकल हैकिंग और साइबर कानून का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही एआई फॉर ऑल के माध्यम से छात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बुनियादी और व्यवहारिक उपयोग को भी समझ सकेंगे। साइबर सिक्योरिटी को द्वितीय सेमेस्टर और एआई फॉर ऑल को तृतीय सेमेस्टर में छात्र पढ़ सकेंगे। इससे विश्वविद्यालय के छात्र साइबर वॉरियर बन सकेंगे।

श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह से पहले छात्रों को अंक तालिका उपलब्ध कराने की कवायद शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय के छलेसर परिसर से स्नातक और परास्नातक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की अंक तालिका आज कॉलेजों को उपलब्ध कराई जाएगी। छात्र अपने कॉलेज से अंक तालिका ले सकेंगे। विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह 3 अगस्त को है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक और परास्नातक अंतिम सेमेस्टर के 2 लाख से अधिक छात्रों का परिणाम घोषित कर दिया है। आवासीय संस्थानों के छात्रों का भी परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिन छात्रों का परिणाम घोषित किया गया है उनकी अंक तालिका दीक्षा समारोह से पहले कॉलेजों में पहुंच जाएगी। विश्वविद्यालय के छलेसर परिसर से कॉलेजों को अंक तालिका वितरित की जाएंगी। 25 जुलाई को कोड संख्या 1 से 400, 26 जुलाई को कोड संख्या 401 से 800 और 27 जुलाई को कोड संख्या 801 से अधिक के कॉलेजों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक अंक तालिका दी जाएगी। इसके लिए कॉलेज के प्राचार्य अंक तालिका लेने के लिए शिक्षक और कर्मचारियों को भी भेज सकते हैं।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर गुजरात या फिर मुंबई की यात्रा करने जा रहे हैं तो एक बार ट्रेन की स्थिति को ज़रूर चेक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन रद्द कर दी गई हो। जी हाँ श्रोताओं, वर्षा से रेल ट्रैक में पानी भरा हुआ है, पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, इससे ट्रेनों के संचालन को खतरा पैदा हो सकता है। रेलवे ने आधा दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आगरा से होकर हर दिन गुजरात और मुंबई के लिए 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। एसी प्रथम में 20, द्वितीय में 70 और तृतीय में 150 और स्लीपर श्रेणी में 250 तक की वेटिंग रहती है। रेलवे ने बांद्रा बरौनी एक्सप्रेस, हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस सहित अन्य 2 को रद्द कर दिया है। 3 विशेष ट्रेनों का भी संचालन रोक दिया गया है। पश्चिम रेलवे गुजरात के घोलवाड़ उमरगाम रोड रेलखंड के मध्य पुल नंबर 203 है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, इसलिए ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। तो अगर आप गुजरात और मुंबई की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो अपनी ट्रेनों की स्थिति जांच लें और बहुत

ज़्यादा ज़रूरी हो तभी इस समय यात्रा करें, अन्यथा अपनी रेल यात्रा को आगे के लिए स्थगित कर दें, कैंसिल कर दें, और जब मौसम सही हो जाए तो आप अपने गंतव्य पर जा सकते हैं।

श्रोताओं, पावन चातुर्मास का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। इसकी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष मान्यता है। हिंदू धर्म में से चातुर्मास, जैन धर्म में वर्षा योग और बौद्ध धर्म में से वर्षावास कहा जाता है। आध्यात्मिक साधना, आत्मशुद्धि और संयमित जीवन के लिए इस काल को विशेष माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से आरंभ होने वाला ये पवित्र समय कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी तक चलता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को देवताओं का विश्राम काल माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान सृष्टि संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है। श्रोताओं, चातुर्मास का समय 25 जुलाई से 20 नवंबर तक रहेगा। इन चार महीनों में सावन में भगवान शिव की आराधना, भाद्रपद में भगवान श्री कृष्ण और गणेश पूजन, आश्विन और कार्तिक मास में देवी देवताओं की उपासना का विशेष महत्व माना गया है। श्रद्धालुओं को संयम, सात्विक जीवन और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जाती है और चातुर्मास में किए गए जप, तप और दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। अब सुनिए कार्यक्रम की कुछ अन्य सूचनाएं। श्रोताओं, गुरु पूर्णिमा और गोवर्धन परिक्रमा मेला को लेकर 31 जुलाई तक उत्तर मध्य रेलवे भारत द स्काउट और गाइड आगरा मंडल द्वारा मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सेवा शिविर लगाया जाएगा। होने वाले शिविर में 60 स्काउट गाइड 24 घंटे श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा के लिए तैनात रहेंगे। यात्रियों को प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्रवेश और निकास मार्ग की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन और महिला यात्रियों की सहायता, प्राथमिक उपचार, पेयजल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा। श्रोताओं, इसके साथ साथ मुड़िया पूर्णिमा और गोवर्धन परिक्रमा मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने 31 जुलाई तक शकोरबस्ती पलवल शकोरबस्ती ट्रेन का अस्थायी विस्तार मथुरा जंक्शन तक कर दिया है। नई दिल्ली पलवल गाजियाबाद का अस्थायी विस्तार कोसीकला जंक्शन तक करने का निर्णय लिया गया है। इससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। आषाढ़ के

शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पूरे देश के लिए गुरु पूर्णिमा ब्रज में मुड़िया पूर्णिमा वो मेला जो केवल धार्मिक आयोजन ही भक्ति और गुरु शिष्य परंपरा की अमर गाथा है। एक ऐसा महापर्व जिसका प्रारंभ आंसुओं से हुआ लेकिन समय के साथ साथ ये पीड़ा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा उत्सव बन गया। इस बार गोवर्धन में मुड़िया मेला 25 से 29 जुलाई तक है। 21 किलोमीटर क्षेत्र में विराजे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में जब लाखों श्रद्धालु जुटेंगे तो तलहटी हरिनाम संकीर्तन भजन और दीपों की आभा से गूंज उठेगा।

आइए अब आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के विषय में। भुवनेश बघेल पुत्र बलवीर निवासी मोहल्ला सत्ता बरहन रोड थाना एतमादपुर आगरा से दिनांक 26 जून सन 2026 से लापता है। भुवनेश की उम्र 12 वर्ष कद 4 फुट चेहरा गोल और रंग सांवला है। गुमशुदगी के समय भुवनेश ने क्रीम रंग की टी शर्ट काली जींस पहनी हुई थी। भुवनेश के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना एतमादपुर आगरा के पति पर सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार नैना पुत्री प्रेम सिंह कुशवाहा निवासी 28/425 कुशवाहा गली गोकुलपुरा थाना लोहामंडी आगरा से दिनांक 16 जून सन 2026 से लापता है। नैना की उम्र 21 वर्ष कद 5 फुट 3 इंच चेहरा गोल और रंग की हुआ है। नैना के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना लोहामंडी आगरा के पते पर सूचित करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार अदीबा खान पुत्री मोहम्मद इमरान निवासी 36/50 तेलीपाड़ा थाना लोहावंडी आगरा से दिनांक 15 जून 2026 से लापता है। अदीबा की उम्र 18 वर्ष, चेहरा गोल और रंग कोरा है। गुमशुदगी समय अदीबा ने मेहरून रंग का सूट और सलवार पहनी हुई थी। अदीबा के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया थाना लोहा मंडी आगरा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई से होगी। इसमें आगरा के शिवालयों में विशेष आयोजन होंगे। यहां हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। शहर के चारों कोनों पर स्थित प्राचीन शिव मंदिरों पर पारंपरिक मेला आयोजित किए जाएंगे। अन्य मंदिरों में भी धार्मिक अनुष्ठान होंगे। पारंपरिक मेले की शुरुआत राजेश्वर मेले के साथ होगी। शाम 4 बजे राजेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक और पूजन होगा। 5:30 पर राजेश्वर महादेव की भव्य डोला यात्रा निकाली जाएगी। बैंड बाजों, ढोल लगाड़ों और शिव भक्तों के साथ निकलने वाली यात्रा राजपुर चुंगी तिराहा पर जाकर पुनः मंदिर में पहुंचकर संपन्न होगी। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालु बाबा की आरती और पुष्प वर्षा करेंगे। अगले दिन 3 अगस्त को मेला लगेगा। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना के साथ कांवड़ अर्पित करने पहुंचेंगे। मेला को पहले से अधिक भव्य और आकर्षक बनाने के लिए विशेष डिजिटल लाइटिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। मंदिर परिसर में बैरिगेटिंग, खोया बाया केंद्र, चिकित्सा शिविर, मीडिया और प्रशासनिक कैंप और अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। शुद्ध श्रावण के 4 सोमवार को चारों कोनों पर स्थित शिवालयों पर मेले का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत 3 जुलाई को राजेश्वर महादेव मंदिर से होगी। 10 अगस्त को कैलाश महादेव मंदिर पर मेला लगेगा। इससे पूर्व रात में शहर के कोनों पर स्थित महादेव मंदिरों की पैदल परिक्रमा लगेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। 17 अगस्त को कैलाश

देव मंदिर पर मेला लगेगा। इस दिन स्थानीय अवकाश भी रहेगा। वहीं श्रावण के अंतिम सोमवार 24 अगस्त को शाहगंज स्थित पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पर मेला लगेगा।

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
4: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
5: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता

0: थैंक यू।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
2: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः तीन डिमांड थी और पांच शामिल हुए।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
3: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी, ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रीशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज, चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
4: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय

0: में लिखा है, सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है, केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
3: Thank you, friends. मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
2: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering

0: rarely the first thing one noticed in a Pink Floyd song, but imagine the song stripped off his saxophone and the incompleteness will reveal what he brought to them. In his aching solo on Shine On You Crazy Diamond, written in memory of Syd Barrett, one can feel the instrument channeling the collective grief of the band. Vishwanathan Anand becomes PDA interim president, reports a pioneer. Jurgen Klopp named new Germany football coach, informs Hindustan Times. And finally, spectacular cultural mix gives Commonwealth Games a fresh start, writes the Asian Age. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves anti-paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in the Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत ने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए ज्यादा सख्त सजा से मुतालिक बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ ताल्लुकात जारी रहेंगे। हुकूमत और सीजेपी आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल जहाज पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें एक भारतीय मल्लाह की मौत हो गई थी। गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। और दौलत मुश्तरक खेलों में झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में भारत की तरफ से कांस्य का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहान में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मसौदे को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में बिल के इस मसौदे को मंजूर किया गया। जराए ने हमारे नामनिगार को बताया कि उम्मीद है कि यह मुजवजा बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। इसी दौरान इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी एनटीए ने 47 अफसरान को बर्खास्त कर दिया। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये इकदामात एनटीए में मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने का एक हिस्सा है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने जनरल मैनेजर की सतह पर सीनियर पेशावर अफराद के तकरूर के लिए इश्तेहारात जारी किए हैं। उसने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल प्रतिभु सेतु के जरिए 16 नौजवान पेशावर अफराद की खिदमात हासिल करने के लिए भी दरखास्त तलब की है। एनटीए ने एक बयान में कहा है कि इन इकदाम से एजेंसी की इदारा जाती तश्कील नौ के पहले इकदाम की अक्कासी होती है। एनटीए ने कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 4 जनरल मैनेजर के ओहदों को नोटिफाई किया है, जिनमें से हर एक की इब्तदाई मुद्दत 3 साल मुकर्रर की गई है। उसने बताया कि नौजवान पेशावर अफराद की पहली मर्तबा खिदमात हासिल की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के वाकयात और इम्तिहान से मुतालिक दीगर जराइम की तहकीकात के लिए एक खसूसी टास्क फोर्स एसटीएफ तश्कील दी है। ये टास्क फोर्स सरकारी इम्तिहानात में नाजायज तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक 2024 के कानून के तहत तश्कील दी गई है। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा है कि यह टास्क फोर्स मुख्तलिफ अथॉरिटीज के जरिए मुनक़िद कराए जाने वाले

0: हुई दोस्ती का जश्न भी थी, जिसमें बामी एहतराम और उम्मीद का जज्बा पूरा हॉल महसूस कर रहा था। रोमानिया से सुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने बहरे अस्वद में कमर्शियल एमवी ओमोर्फी जहाज पर हमले की सख्त मजम्मत की है।

0: को हमला किया गया था जब यह जहाज बोहरे अस्वद से गुजर रहा था। इस जहाज में अमले के 10 अफराद सवार थे, जिनमें 3 भारतीय शहरी भी थे। वजारत खारजा ने बताया कि इस हमले में 1 भारतीय मल्लाह की जान चली गई और 2 भारतीय बाशिंदे जहाज में महफूज हैं। वजारत ने एक बयान में मुतासरा कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और कहा है कि भारत तजारती जहाजों को निशाना बनाकर किए गए इस तरह के हमलों और अमले के बेकसूर अरकान की जिंदगियों को जोखम में डालने की वाजह तौर पर सख्त मजम्मत करता है। ईरान की हदूद में मोजम्बिक के परचम बरदार LPG टैंकर दिशा पर हुए हमले के बाद इसमें सवार अमले के तमाम 28 भारतीय महफूज हैं। तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने इसकी तस्दीक की है और LPG टैंकर दिशा के साथ पेश आने वाले वाकये की बात तस्लीम की है। एक सरकारी बयान में सिफारतखाने ने कहा है कि वो अमले की खैर वाफियत को यकीनी बनाने के लिए मकामी अफसरान के साथ राबते में है। हुकूमत ने कहा है कि वादी सिंध का समझौता उस वक्त तक इल्तिवा में रहेगा जब तक पाकिस्तान सरहद पार की जाने वाली दहशतगर्दी की हिमायत से बाज नहीं आ जाता। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी मीडिया की इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि भारत पड़ोसी मुल्क में जानबूझकर सैलाब की सूरत हाल पैदा कर रहा है। कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि समारोह में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: द्रास में वाके कारगिल वार मेमोरियल 27वीं कारगिल विजय दिवस की तकरीबात की तैयारियों की तकमील के बाद पुरवकार और पुरजोश मंजर पेश कर रहा है। 2 रोजा यादगारी तकरीबात का आगाज आज से हो रहा है, जबकि कल वजीर दिफा राजनाथ सिंह ऑपरेशन विजय के शोधा को खिराज अकीदत पेश करने में कौम की क्यादत करेंगे। हजारों विजिटर साबिक फौजियों शोधा के अहलखाना और फौजी एहलकारों की इन यादगारी तकरीबात में शिरकत की तवक्को है। ये तकरीबात 1999 की कारगिल जंग के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज की गैर मामूली शुजात हिम्मत और अजीम कुर्बानी को एक अजीम शान खिराज अकीदत है। कारगिल से इनायत अली रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ग्लासगो में 2026 के दौलत मुश्तरक खेलों में भारत ने मेडल जीतने का आगाज कर दिया है। झंडू कुमार ने मर्दों के हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में कांसे का तमगा हासिल किया। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दूसरी कोशिश में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने 130.9 पॉइंट्स के साथ कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों के क्रिकेट में आज हरारे में भारत 3 मैच की T20 सीरीज के दूसरे मैच में मेजबान जिम्बाब्वे से मुकाबला करेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम को सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। उसने जुमेरात को पहले मैच में 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने आज सुबह कनाडा के ओंटारियो में मिस्र की बार्ब समय को सेमीफाइनल में 3-1 से हराकर आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। भारत की 18 साला अनाहत इस अहम जूनियर मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मुत्तला किया है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के सबब 18 स्टेशनों को सुबह 7:30 बजे से दूसरी हिदायत जारी होने तक कल बंद कर दिया गया है। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, नई दिल्ली सेंट्रल सेक्रेटरिएट, ITO, मंडी हाउस, सुप्रीम कोर्ट और दीगर स्टेशन शामिल हैं। अलबत्ता DMRC ने वाजे किया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर ट्रेन तब्दीली की सहूलियत बरकरार रहेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने पेपर लीक मामले में कसूरवार को सख्त सजा दिए जाने वाले तरमीम बिल के मसौदे को काबीना की तरफ से मंजूरी मिलने की खबर को सुर्खी बनाया है, जिसमें कसूरवारों को 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का इल्तिजाम रखा गया है। रोजनामा प्रताप ने पेपर लीक मामले में NTA के 47 अफसरों को बर्खास्त किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रिपोर्ट के मुताबिक NTA इंतजामिया में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो पैगाम में नौजवानों और आम लोगों को यकीन दिलाया कि हुकूमत पेपर लीक के मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने पहले सफ़े पर जगह दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया बिजनेस फोरम से खिताब के दौरान रोमानियाई कंपनियों से भारत की तरक्की के सफर में शामिल होने की अपील की। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने खुसूसी तौर पर शाया किया है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। حکومت نے پیپر لیک واقعات کی روک تھام کے لیے زیادہ سخت سزا سے متعلق بل کے

सवदे को मंजूरी दे दी गई। उम्मीद है कि यह बिल पार्लियामेंट में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने पेपर लीक वाकयात की रोकथाम के लिए मुजवजा इस्लाहात से मुतालिक उनके वीडियो पर तजावीज पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये ताल्लुकात मजीद मजबूती के साथ जारी रहेंगे। हुकूमत और CJP आज तीसरी बार बातचीत करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को उनकी इम्तियाजी अवामी खिदमात पर रोमानिया ने डॉक्टर ऑनरिस कोजा के खिताब से नवाजा है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर, अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रातः के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना, स्वर थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की फिल्म थी वो सात दिन। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है सातवां आसमान, स्वर है लता मंगेशकर और उदित नारायण की, गीतकार है सूरज, संगीतकार है बाबुल बोस।

डब्बू मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम को। बोल थे सलीम की फिल्म थी तुमको ना भूल पाएंगे।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत, फिल्म है रॉक की। स्वर है लता मंगेशकर और किशोर कुमार के, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया है आरडी परमन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
1: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मेरठ मंडल के पर्यटन और सांस्कृतिक विकास से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में पर्यटन विभाग की कुल 27 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपए से अधिक है। इनमें मेरठ के 2, गाजियाबाद के 4, गौतम बुद्ध नगर के 3, बुलंदशहर के 7 और हापुड़ के 8 प्रस्ताव शामिल हैं। ब्रजघाट क्षेत्र के पर्यटन विकास और गंगा तट से जुड़े स्थलों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में विरासत स्थलों को पर्यटन परिपथ से जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। पर्यटन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन को स्थानीय आस्था, सांस्कृतिक विरासत और जन भागीदारी से जोड़ते हुए नए आयाम देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में 199 मेधावियों को पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी चरण सिंह जी का व्यक्तित्व भारतीय लोकतंत्र में सादगी, ईमानदारी, संघर्ष और जनसेवा के अद्भुत उदाहरण था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गाँव, गरीब और किसान के उत्थान के लिए समर्पित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज समाज में बिना विचार किए किसी भी विचारधारा या झंडे के पीछे चल पड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। युवाओं को पहले यह समझना चाहिए कि वे जो कार्य कर रहे हैं वह देश हित में है या नहीं। विश्वविद्यालय का दायित्व केवल शिक्षा देना नहीं बल्कि विद्यार्थियों से सही सोच और राष्ट्रहित की भावना को विकसित करना भी है। अमर यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने हेतु शासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन SP गोयल एवं DGP राजीव कृष्ण की संयुक्त अध्यक्षता में कांवड़ यात्रा को लेकर मंडलायुक्त सभागार में मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद मंडल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान राज्यों के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। वर्चुअल माध्यम से संबंधित समस्त अधिकारी भी जुड़े। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा कार्यवाही से अवगत कराया गया। बैठक कांवड़ यात्रा के संबंध में आने वाली चुनौतियां एवं उनसे निमटने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव SP गोयल ने कहा कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसे सफलता पूर्वक संपन्न कराना हम सभी का साझा दायित्व है। इसके लिए सभी विभाग अपने अपने दायित्वों एवं दिए गए निर्देशों का 100% सुनिश्चित पालन करें। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान संपूर्ण कांवड़ मार्ग एवं उससे जुड़े सभी प्रमुख स्थलों पर नियमित साफ सफाई, स्वच्छता एवं सैनिटेशन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कांवड़ शिविरों का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाए। शिविर के लिए आवश्यक अनुमति, विद्युत कनेक्शन, अग्नि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं अन्य सभी सुरक्षा मानकों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2: कांवड़ यात्रा सकुशल बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो सके, किसी भी कांवड़िया को कहीं कोई कष्ट न हो, चार रूप से ये कार्यक्रम संपन्न हो, उनका सम्मान के साथ सारे लोग योगदान करें।
1: केंद्र में NDA सरकार के 12 वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त हुई हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया में हुनरमंद महिलाओं ने रोजगार शुरू किया और कामयाबी के कदम चूमे। मेरठ की ममता गर्ग ने घर से ही हैंडीक्राफ्ट का कार्य शुरू किया। उन्हें स्टैंड अप इंडिया योजना में 10 लाख का लोन मिला, जिससे ममता गर्ग ने काम को आगे बढ़ाया। आज वह भगवान की पोशाक, लड्डू गोपाल के सिंहासन, पालने, बंदरवार, विभिन्न प्रकार के हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं बना रही हैं। खुद सशक्त बनने के साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया। आज उनका हैंडीक्राफ्ट भारत ही नहीं अन्य देशों में भी पसंद किया जा रहा है।
3: मेरी काफी सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें कि मैं भगवान के पालने, सिंहासन ये सब बनाते हैं, बंदनवार बनाते हैं और पूजा के लक्ष्मी गणेश और होली से रिलेटेड सामान सभी कुछ हमारे यहाँ बनता है।
1: मेरठ में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस योजना के शुभारंभ अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सांसद अरुण गोविल मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी सुना गया। कार्यक्रम में शिक्षकों को मुख्यमंत्री कौशल कैशलेस योजना का कार्ड देकर सम्मानित किया गया। साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं को DBT के माध्यम से योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं, जिससे छात्र छात्राओं और शिक्षकों को अच्छा शिक्षा का माहौल और शिक्षा का स्तर मिल रहा है।
0: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्रीराम राय का।
4: पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने स्वामी विवेकानंद के गुरु पौहारी बाबा के आश्रम में दर्शन पूजन के बाद केंद्र में NDA सरकार के 12 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया एवं उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में लोग सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। पद मिलने के बाद गाजीपुर में प्रथम आगमन पर कृष्ण बिहारी राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों एवं जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर आयोजित प्रदर्शनी एवं कार्यक्रमों में जितना जनता उत्साह से भाग ले रही है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के नगर विकास राज्य मंत्री उमेश राय का भी आगमन गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के पैतृक गांव पलिया में हुआ। पलिया पहुंचने पर उमेश राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की विजय से पूरे भारत में उत्साह का माहौल है। गाजीपुर में किसान कल्याण के लिए जगह जगह कैंप लगाकर किसानों को वैज्ञानिक खेती तथा KCC के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि निदेशक विजय कुमार ने कहा कि धान के मौसम में किसान नर्सरी के बजाय सीधे खेतों में नमी के बीच बीज बोकर खेती कर सकते हैं, इससे उपज अच्छी होती है। उन्होंने सूखे को ध्यान में रखते हुए किसानों से बाजरा, ज्वार, मक्का आदि की खेती करने की भी अपील की। वहीं अग्रणी जिला प्रबंधक यूनियन बैंक राजदेव ने कहा कि मात्र 4% ब्याज दर पर सभी किसानों का KCC कार्ड बनाया जा रहा है एवं KCC बन जाने पर सभी किसान फसल बीमा का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने गाजीपुर के सभी किसानों से अपने निकटतम बैंक से KCC बनवाने की अपील की। आगामी कांवड़ यात्रा एवं श्रावण माह में भगवान शिव के जलाभिषेक के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने गाजीपुर के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा, स्नान, जल लेने या जलाभिषेक के समय न हो, इसके लिए पूरे जनपद में प्रसिद्ध देवालयों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा गंगा घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।
5: श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ये हम लोग की व्यवस्था है कि आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, कि उनके रहने के लिए, बैठने के लिए, स्नान करने के लिए प्लस जल लेने के लिए कोई दिक्कत ना हो, भीड़ का नियंत्रण ठीक से हो, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, यही सब देखा जा रहा है।
4: गाजीपुर के विकास भवन में मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद की अध्यक्षता में निपुण भारत मिशन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य है कि अभी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने वाले निपुण भारत मिशन के तहत जनपद के 30% स्कूल ही आच्छादित हो पाए हैं। ऐसे में जिले के सभी विद्यालयों को निपुण बनाने पर जोर दिया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत विद्यालयों में कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित की जानकारी देने का लक्ष्य निर्धारित है।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: जिले की हलचल में आज आपने सुनी मेरठ और गाजीपुर जिलों की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ

0: केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में कार्यक्रम का ये आरंभिक गीत आपने सुना। आशा भोसले और किशोर कुमार के जुगल स्वरों में गीतकार थे गोविंद। फिल्म थी आंसू और मुस्कान। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है तुमसे अच्छा कौन है। स्वर है मोहम्मद रफी का। गीतकार है हसरत जयपुरी। संगीतकार है शंकर जयकिशन।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मंजूषा का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा है और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को हसरत जयपुरी के पूर्व को संगीत से सजाया है रामलाल ने। फिल्म का नाम है सेहरा।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना, स्वर थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की फिल्म थी रामपुर का लक्ष्मण। श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं समवेश स्वर में कुछ लोक गीत।

इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे इंदिवर की शब्द रचना स्वर थे अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर के फिल्म थी प्रेम गीत।

साथियों, आइए अब आपको सुनवाते हैं धनवान फिल्म का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं हृदयनाथ मंगेशकर।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा है।

कार्यक्रम का ये गीत आपने सुना दौलत फिल्म से, स्वर था किशोर कुमार का। गीतकार थे विट्ठल भाई पटेल और निदा फासदी। संगीतकार थे आर डी परमन।

और अब लीजिए सुनिए, मोहम्मद रफ़ी को। गीतकार है निदा फासदी, संगीतकार है उर्षा खन्ना, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

कार्यक्रम सुर सरिता में अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को। इंदिवर के बोलों को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है कामचोर।

शमाकी जी का कार्यक्रम का ये गीत है। महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर के जुगल स्वरों में आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम है गीत।

साथियों, गीत फिल्म से अभी आप सुन रही थी महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को। हसरत जयपुरी के बोलों को संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम सर सरिता का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा है।

कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर के जुगल स्वरों में इंदिवर के बोलों को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है कामचोर।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की गाई इस गीत के साथ। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग तुड़ी में ख्याल गायन। कलाकार थे शब्बीर अहमद खान।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दिन के 11 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार।

आज की कलाकार कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है भारत के, या हम यूं कह सकते हैं हिंदी सिने जगत के जाने माने हास्य अभिनेता पर। जी हाँ, जिन्होंने अपनी कला से अपने आप को, अपने नाम को अमर कर दिया है। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे। चलिए आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का एक गीत, जिससे आप कोई भी शक की गुंजाइश नहीं रहेगी।

पहचान लिया ना श्रोताओं, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। आज का हमारा कार्यक्रम केंद्रित है मशहूर हास्य अभिनेता महमूद पर। महमूद अली, जिनका जन्म का नाम जो था वो महमूद अली था, मगर हम उन्हें प्यार से जानते हैं महमूद के नाम से।

श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस हास्य भरे गीत को सुनकर आपको भी जरूर हंसी आ रही होगी। यूं ही नहीं, महमूद साहब को हास्य का पर्याय कहा जाता है। उनका जन्म 29 सितंबर सन 1932 को हुआ। वे लतीफ़ुन्निसा और फिल्म एवं रंगमंच अभिनेत्री और नर्तकी मुमताज अली के सबसे बड़े पुत्र थे। मुमताज अली 1940 और 1950 के दशक में मुंबई सिनेमा की एक जानी मानी स्टार थी। महमूद जी की एक बड़ी बहन और 6 छोटे भाई बहन थे। उनके भाई बहन भी उन्हीं की तरह फिल्मों से जुड़े हुए थे, जिसमें शामिल थी मीनू मुमताज, अनवर अली आदि। जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि हास्य का पर्याय जो थे वो महमूद साहब ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने दृढ़ निश्चय से अपने आप को बना लिया था। मगर वो सिर्फ एक हास्य अभिनेता ही नहीं श्रोताओं, बल्कि एक गायक, निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे। हास्य कलाकार के रूप में उनकी छवि जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा में अमर हो चुकी है। महमूद साहब ने 1950 के दशक के उत्तरार्ध से 1970 के दशक तक का जो सफर था वो एक अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में एक बड़े सुपरस्टार की तरह जिया है। यानी कि उस दौर की जो फिल्में होती थीं, उनमें जहां कहीं भी हास्य का किरदार होता था, वहां पर आप देखिएगा आपको कहीं ना कहीं महमूद साहब की जो प्रेजेंस है, जो उनकी उपस्थिति है, वो जरूर दिखाई देगी। उन्होंने बहुत सी फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिनमें शामिल थी कुंवारा बाप। ये एक बहुत ही भावुक और हास्य से भरपूर फिल्म थी जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया था। बहुत सी फिल्में की थी, जैसा कि अभी हमने कार्यक्रम में अभी आपको पहला गीत जो सुनवाया था, जो कि हमने लिया था फिल्म पड़ोसन से, जिसे उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय संगीत शिक्षक पिल्लई के यादगार किरदार से अमर कर दिया था। हास्य से भरपूर वो किरदार, हास्य से भरपूर वो फिल्म, उनका अपना जीवन भी इसी प्रकार से हास्य से, खुशियों से भरा हुआ था। और तभी वो जहाँ जाते थे बस वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देते थे। उनके जो बोलने की कला थी, उनके जो हाव भाव थे, चेहरे के हाव भाव थे, उन्हें ही सुनकर हम जो है वो खुशी से झूम उठते थे, हमारी आत्मा प्रसन्न हो उठती थी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार, और हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है हास्य अभिनेता महमूद साहब पर। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में 300 से ज़्यादा फिल्में की। उनकी फिल्मों की जो लिस्ट है श्रोताओं बहुत लंबी है, मगर हम कुछ प्रमुख फिल्मों का जिक्र यहाँ ज़रूर करना चाहेंगे, जिनमें शामिल हैं पड़ोसन, गुमनाम, प्यार किए जा, भूत बंगला, बॉम्बे टू कुआ, सबसे बड़ा रुपया, पत्थर की सनम, अनोखी अदा, नीला आकाश, नीलकमर, कुंवर बाप आदि। आईएस जौहर के साथ जो महमूद साहब की जो जोड़ी थी श्रोताओं, वो बहुत मशहूर हुई थी, और दोनों ने जौहर महमूद इन गोवा और जौहर महमूद इन हांगकांग के नाम से फिल्में भी की। निर्देशक के रूप में, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे अपने कार्यक्रम की शुरुआत में, हमने आपको बताया कि वो एक हास्य अभिनेता ही नहीं बल्कि एक गायक भी थे, एक निर्देशक भी थे। तो आपको बता दें कि निर्देशक के रूप में उनकी अंतिम फिल्म जो थी वो थी दुश्मन दुनिया का। सन 1996 में बनी इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे मंजूर अली को पर्दे पर उतारा था। जब बात बेटे की हो रही है तो आइए जान लेते हैं उनके पारिवारिक निजी जीवन के बारे में भी। उन्होंने 1953 में मधु कुमारी से निकाह किया और इस निकाह से उनके चार बच्चे हुए। बाद में कुछ आपसी मनमुटाव की वजह से उनका तलाक हो गया, मगर फिर उन्होंने फिर दूसरा विवाह किया ट्रेसी से, जिससे उन्हें तीन औलादें हुई, और उनके कई बच्चों ने उनके साथ उनकी फिल्मों में भी काम किया है, यानी कि अपने पिता का उन्होंने पूर्ण योगदान दिया उनके साथ उनकी फिल्मों में। महमूद साहब ने चार दशकों से अधिक के अपने लंबे करियर में 300 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया है, और उन्हें बॉलीवुड का असली भाईजान कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि महमूद साहब कहीं पे भी किसी भी जरूरतमंद इंसान को देखते थे ना, तो उसकी मदद जरूर करते थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उनके आसपास के लोग हों, उनके रिश्तेदार हों, या कोई भी कलाकार जिसे उनके साथ की ज़रूरत है होती थी, जो उनके भरोसे की ज़रूरत होती थी, वो हमेशा

साथ खड़ी रहती थी। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात श्रोताओं आपको बताना चाहूंगी कि उनकी यानी कि महमूद साहब की पारखी नजरों ने ही हिंदी सिनेमा को दिया था एंग्री यंग मैन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि मैं किस कलाकार की बात कर रही हूं। एक ऐसा भी समय था श्रोताओं जब हर हिंदी फिल्म निर्माता जो था वो अमिताभ बच्चन जी से काम, या यूं कहें कि अमिताभ बच्चन जी को काम ना देने देना चाहता था, क्योंकि उनकी लगातार फिल्में जो थी वो फ्लॉप हो रही थी। और बात सही भी थी, जब इंसान असफलता की तरफ बढ़ता चला जाता है, जो काम करता है उसमें असफल हो जाता है, तो जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो उसे शक की निगाह से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंसान काबिल नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता। इसलिए हम अपना पैसा है, अपना समय है, वो क्यों इस पे बर्बाद करें, क्यों लगाएं। मगर तब महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन जी पर पूरा भरोसा दिखाया और उन्हें बॉम्बे टू गोवा में मुख्य भूमिका की पेशकश की, जो उनके लिए अमृत समान साबित हुई। यदि आपने एक फिल्म देखी हो तो उस फिल्म में एक बहुत ही दमदार, एक बहुत ही बड़ा बस दुर्घटना का जो दृश्य है वो फिल्माया गया था। उस दृश्य में अमिताभ जी ने जो ऊर्जा दिखाई थी, जो जोश दिखाया था, उसे देखकर महमूद साहब दंग रह गए थे। और यही भविष्यवाणी हुई एंग्री यंग मैन की।

0: रहा हूँ।
1: भैया छोड़ो ना।
0: क्यों छोड़ूं?
1: प्लीज समझो ना।
0: क्या समझूं?
1: वो लोग देख रहे हैं।
0: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
1: अच्छा तो ये बात है तो मैं और पास आऊं?
0: आओ ना।
1: नो,

कार्यक्रम आज के कलाकार में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर हास्य अभिनेता महमूद पर। महमूद साहब ने अपने पूरे करियर में कई बार फिल्म फेयर अवार्ड्स जो हैं, पुरस्कार जो हैं वो जीते हैं, जिनमें शामिल हैं सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार, फिल्में लव इन टोक्यो, मेहरबान, नीलकमल, मेरी भाभी, मैं सुंदर हूँ, कुंवारा, पाप, नौकर आदि, इन सब फिल्मों में उन्होंने काम किया और उनके काम को सराहा गया पुरस्कार देकर। वर्ष 1963 में उन्होंने फिल्म दिल तेरा दीवाना के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार भी जीता। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपको श्रोताओं बता दूं कि वर्ष 2013 में महमूद को भारत के एक डाक टिकट पर चित्रित भी किया गया था। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, जब आपके काम को, आपके नाम को इस प्रकार से एक स्मृति के रूप में, एक चिन्ह के रूप में पूरे देश में सम्मानित किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत ही अहम बात होती है। आउटलुक इंडिया के 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में भी महमूद साहब का नाम जो है वो शामिल किया गया था। बातें किससे, हर फिल्म से एक कहानी जुड़ी हुई होती है, किस प्रकार से एक निर्माता निर्देशक उस कहानी को बुनता है, किरदारों को बुनता है, और किस प्रकार से कलाकार अपने अभिनय से उस किरदार को जीवंत करते हैं, ये हर फिल्म की अपनी एक कहानी होती है। श्रोताओं, इसी प्रकार के कई बहुत सारे ऐसे किस्से भी होते हैं जिनका जिक्र, जिनको जानने की उत्सुकता हम सभी श्रोतागणों में होती है, मगर समय की कमी होती है जिसमें हम हमेशा हार जाते हैं। और हारते इंसान ही है और जीतते भी इंसान ही है। हम अपनी मेहनत से जीत भी जहां हासिल करते हैं, वहीं कहीं ना कहीं अगर यदि हमारी कोशिश कम रह जाए तो हम हार भी जाते हैं, मगर इस हार और जीत के सफर में, इस चक्र में कभी भी इंसान को अपनी मेहनत से, अपनी लगन, सच्ची लगन से पीछे नहीं हटना चाहिए, दृढ़ निश्चय कर आगे बढ़ना चाहिए। ये सिखाती हैं, ये सारी बातें सिखाती हैं, ये इसी प्रकार के लोगों की, कलाकारों की जो जीवनी होती है, जो उनका जीवन जो उन्होंने जिया होता है, उनसे हम इन सब बातों को सीखते हैं और ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करती हैं कि किस प्रकार से ये लोग विषम परिस्थितियों से उठकर अपने आप को स्थापित कर पाए। हर चीज हासिल करवाना सबके लिए मुमकिन नहीं, मगर नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है।

0: ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

जी श्रोताओं, हम भी इस गीत की तरह कहना चाहेंगे कि महमूद साहब, आप जहाँ भी हैं, हम हिंदी फिल्मों को देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, वो आपको यूं ही सदा सदा हमेशा प्यार करते रहेंगे। माना 23 जुलाई सन 2004 को उनका इंतकाल हो गया। उनका जो शरीर है जो है वो हमारे बीच अब नहीं है, वो हमारे मध्य नहीं है, मगर उनकी रूह, उनकी आत्मा, उनकी फिल्में, उनका काम, उनके किए गए कार्य, वो सदियों तलक जिंदा रहेंगे और जमाना इस महान कलाकार को हमेशा याद रखेगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के कलाकार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनने वाले हमारे सभी दोस्त श्रोताओं का

तहे दिल से स्वागत है सभी को, हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुद्धों कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज हम जिक्र करेंगे डूबने से रोकथाम संबंधी जागरूकता दिवस पर। जी हाँ, आज है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। वर्षा ऋतु में प्राकृतिक जल स्रोतों के नजदीक जाने से बचें, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्षा ऋतु जो है वो शुरू हो चुकी है। माना कि जो हमारा शहर वो है वो अभी झमाझम बारिश में भीगा नहीं है, वो मस्ती अभी हम शहरवासी जो हैं उस बारिश का आनंद अभी नहीं उठा पाए हैं, मगर पूरे देश में बहुत जगह जो है मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। वर्षा ऋतु अपने आगोश में सबको ले चुकी है, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, नदी हैं, तालाबें हैं, वो झमाझम भरे हुए हैं। मगर ये जो वर्षा ऋतु का सुहाना मौसम होता है, जिसका हम पूरे वर्ष इंतजार करते हैं, मानते हैं कि इंद्रदेव कभी हम पर भी कब न जाने इस भीषण गर्मी से हमें राहत दिलाएंगे, हमें आनंद देंगे, हमारी इस गर्मी की जो ये तपिश है उसको शांत करेंगे। उसके लिए जरूरी है कि वर्षा हो, और जलवायु परिवर्तन के कारण जो भीषण गर्मी का सामना अब हम दिनों दिन करते जा रहे हैं, उसके लिए भी जरूर है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा यानी कि मानसून का जो समय है वो सक्रिय रहे, मानसून से अच्छी बारिश हो, ताकि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे हमारे जो पेड़ पौधे हैं, हमारी जो नदी हैं, तालाब हैं, ये सब वर्षा के जल से भरे रहे। और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई जल जीवन है और जल के बिना कुछ भी नहीं है। हम एक दिन भोजन के बिना रह सकते हैं, मगर हम एक घंटे प्यास यानी कि जब हमें प्यास लगी हो और अगर जल उपलब्ध ना हो तो हम नहीं रह सकते। मगर कभी कभी हमारी नादानी की वजह से, हमारी ये कहें कि निग्लिजेंस की वजह से हम जो है वो इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि यही जल जो है वो हमारे लिए जानलेवा हो जाता है। मगर इस पे यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम जरा भी थोड़ी देर में बात करेंगे। आइए सुनते हैं जिस ऋतु का, जिस वर्षा का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ ये मधुर गीत।

जी, इस गीत की तरह हम भी मिन्नत कर रहे हैं कि बरखा रानी जरा जम के बरसो। मगर चलिए, अभी मेघ जो है वो हम पर मेहरबान नहीं है, मगर मेहरबान होंगे, जरूर होंगे। और आइए अब आते हैं अपने आज के विषय पे, क्योंकि आज है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी कि डूबने से रोकथाम संबंधी जागरूकता दिवस। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाव दिवस मनाया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक वैश्विक जागरूकता अभियान है, ताकि डूबने से होने वाली जो दर्दनाक मौतें हैं उन्हें रोका जा सके। आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में लाखों लोग डूबने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में डूबने से होने वाली मौतों में लगभग 19% मौतें केवल हमारे देश भारत में होती हैं। इसकी शुरुआत, यानी कि इस दिवस की शुरुआत जो है, वो अप्रैल सन 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी, और इसका समन्वय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया जाता है। ये दिवस डूबने से होने वाली मौतों की जो भयावहता है और रोकथाम योग्य प्रकृति पर प्रकाश डालता है, और सरकारों, समुदायों, स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और व्यक्तियों से समन्वित कार्रवाई करने का आह्वान करता है। यानी कि ये हमें जागरूक करने का संदेश भी देता है। ये हमें बताता है कि किस प्रकार से कितनी दर्दनाक मौतें जो हैं, कितनी लोगों की, लाखों लोगों की इस पूरी दुनिया में होती हैं। तो हम कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, और किस प्रकार रख सकें, इस पर हम आयुष्यताओं आगे विचार विमर्श भी करेंगे, आपसे बातें भी करेंगे। ये आपको बता दें कि वर्ष 2026 का विषय है डूबने की घटनाओं के खिलाफ लहर को पलटने के लिए एकजुट हों, अर्थात एकजुट होकर हम हालात बदलें। कहते हैं ना कि अकेले अकेले यदि हम काम कोई करें तो हमें उस बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और हो सकता है कभी कभी हम असफल होकर हार भी जाएं, मगर जब 10 हाथ आपस में मिल जाते हैं तो एक शक्ति बन जाते हैं, और हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं। इसलिए एक जुटता की जो ताकत है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी प्रकार की, यदि कोई प्राकृतिक आपदा भी आती है तो हम उसका सामना कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डूबना 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु के 10 प्रमुख कारणों में से एक है, और डूबने से होने वाली सभी मौतों में से 90% से अधिक मौतें जो हैं वो निम्न और मध्यम आयु वाले देशों में होती हैं। हमारे देश में, यानी कि हमारे देश भारत में, अकेले जल निकायों में आकस्मिक रूप से गिरने से प्रतिवर्ष 28,000 से अधिक मौतें हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हम जानबूझ के ही डूबे, कभी कभी हम आकस्मिक, मतलब भी अनजाने में भी हम उस हादसे का शिकार हो जाते हैं, और इसमें 1 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनका सबसे अधिक जोखिम रहता है, क्योंकि उन्हें इतनी समझ भी नहीं होती है, उनको इतनी जानकारी भी नहीं होती है। और कभी कभी आपने खुद भी देखा होगा, ये सब हर समाज की अपनी ऐसी ही तस्वीर है कि बच्चा, आपने सुना भी होगा, समाचारों में भी सुना होगा कि कोई छोटा सा बच्चा था, 1 वर्ष का बच्चा था, खेलते खेलते जो है वो टब में पानी में गिर गया, डूब गया, मर गया। यानी कि बहुत अधिक मात्रा में भी जल की आवश्यकता नहीं है, कभी कभी बहुत कम जल में भी डूबकर मृत्यु हो जाती है। मगर मृत्यु होती क्यों है, उसका कारण क्या है, डूबना हम किसे कहते हैं, किस प्रकार से डूब के ही हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसके बारे में भी श्रोताओं हम आगे जिक्र करेंगे। मगर हम यही कहेंगे कि जीवन अनमोल है, उसे बचाना, संवारना

हम सबका परम कर्तव्य है। ये एक जीवन की गाड़ी के समान है श्रोताओं, जो चलती रहती है तो समय पर अपने कर्तव्य तक पहुंच ही जाती है। तो कोशिश करें और ये जो जीवन रूपी जो पथ है, पहिया है, इसे निरंतर घुमाते रहें, चलते रहें, सुरक्षित रहें, सुरक्षा के जो नियम हैं उन्हें थामे रहें और जागरूक रहें, तभी हम अपने आप को किसी भी विषम परिस्थिति से या प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं।

जी श्रोताओं, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जिस प्रकार से समय अपनी गति से चलता जाता है, हमें भी वो संदेश देता है कि निरंतर बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, अर्थात काम करते रहो, जागरूक होकर धैर्य से, संयम से अपने कामों को अंजाम देते रहो। और आइए अब जानते हैं हम कि ये डूबना होता क्या है। पानी या किसी अन्य तरल में डूबने से होता क्या है, श्वास नली जो और जो है हमारी और फेफड़े जो हैं उनमें तरल पदार्थ भर जाता है। अब जब तरल पदार्थ भर जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने लगता है, जिसकी वजह से दिमाग में क्षति होने लगती है, यानी कि मस्तिष्क क्षति हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हृदय गति रुकने का जो कारण है, मुख्य कारण है, वो भी शामिल हो जाता है। और जब हृदय गति रुक जाती है तो मृत्यु जो है वो हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि डूबना एक प्रकार का घुटन है, घुटन की सी प्रक्रिया होती है, जो मुंह और नाक में, जैसा कि अभी हम कह रहे थे कि कोई भी तरल पदार्थ यदि घुस जाए तो उससे घुटन से महसूस होने लगती है। और आपको बता दें कि ये जो स्थिति है, यानी कि जो डूबने की स्थिति है, ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है गीला डूबना। इसमें पानी जो है वो सीधे फेफड़ों में चला जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। और दूसरी प्रक्रिया होती है सूखा डूबना। इसमें पानी जो है वो फेफड़ों में नहीं जाता, मगर पानी के संपर्क में आने से गले की जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे श्वास नली बंद हो जाती है। और जब श्वास नली बंद हो जाती है तो जीवन जो है वो भी समाप्त हो जाता है। और हम तो यही कहेंगे श्रोताओं कि हर जीवन महत्वपूर्ण है और हर कर्म मायने रखता है, हर किसी को इसमें अपनी भूमिका जो है उसमें निभानी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि हम किसी व्यक्ति को देख भी रहे होते हैं कि वो डूब रहा है, मगर हम खुद जागरूक नहीं होते, हमें खुद पता नहीं होता कि हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। हम खुद ही बदहवास से हो जाते हैं, हम चिल्लाने लगते हैं, लोगों की मदद को मांगने लगते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि वहां पे लोग भी उपस्थित नहीं होते हैं। तो इसके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बता दूं कि यदि आप तैरना जानते हैं तो आप डूबते हुए व्यक्ति को बचा सकते हैं। आप उसे कोशिश कीजिए तुरंत बाहर निकालने की और कृत्रिम सांस यानी कि CPR देने की। मगर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक दो कार्यों की जरूरत नहीं होती, बहुत से काम करने होते हैं, उनको अंजाम देना होता है, और उसमें जरूरत होती है सभी लोगों के सहयोग की, सभी लोगों द्वारा, सभी स्थानों पर, सभी परिस्थितियों में सबकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जिन पे यदि हम जागरूकता से यदि काम करें, ध्यान दें, तो डूबने से जो मौतें होती हैं उनको हम कम कर सकते हैं। कैसे? चलिए एक एक का जिक्र हम करते हैं। जैसे कि माता पिता और देखभाल करता, ये पानी के पास बच्चों, यदि उनका कोई बच्चा खेल रहा हो तो उस पर कड़ी निगरानी रखें, ध्यान दें। हमारे घर के आसपास यदि कोई स्विमिंग पूल है तो ध्यान दें कि उसके चारों ओर बाड़ लगी हो, जिसमें छोटे बच्चे जो है खेलते खेलते कहीं गलती से गिर न जाएं। घरेलू जो जल स्रोत हैं उनको ढककर रखें, जैसे कि कुएं इत्यादि हो गए, उनको ढककर रखें, क्योंकि उसमें भी गिर के मौतें हो जाती हैं। बच्चों को तैराकी या जल सुरक्षा सिखाएं, बच्चों को तैराकी सिखाना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ उन्हें CPR और सुरक्षित बचाव तरीके भी सिखाएं। यही बच्चे जब विद्यालय में पहुंच जाते हैं तब विद्यालय और शिक्षक की भी बहुत बड़ी और अहम भूमिका होती है। विद्यालयों

में जल सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे जान सकें कि किस प्रकार से जो जल जीवन है कहीं उनकी मृत्यु का कारण न बन जाए। जल सुरक्षा संबंधी जानकारी उन्हें बतानी चाहिए। परिवारों को पानी की सुरक्षा से संबंधित व्यावहारिक जो संसाधन है उनको जोड़ के रखने चाहिए। जो लोग जल क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका जीवन जो है जो जल पर ही निर्भर रहता है, जल में ही जो काम करते हैं, वो हमेशा लाइफ जैकेट पहन के रखें। सुरक्षा प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरणों तक अपनी पहुंच को बनाए रखें, उनका हाथ थामे रखें। जो भी संचालक हैं, जो नियोक्ता है यानी कि जो जल क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को की नियुक्ति करते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करें। प्रशिक्षण जो है यहाँ पे बहुत काम आता है, अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जा सके ये कोई भी नियोक्ता है संचालक जो है अपने कर्मचारी को बता सकता है, सिखा सकता है। सुरक्षा जोखिमों की पहचान करें, उन पर प्रतिक्रियाएं उन्हें सिखाएं, बताएं कि किस प्रकार से वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। वहीं नीति निर्माता जो हैं वो भी ऐसे कानून पारित करें जो लोगों को पानी के आसपास सुरक्षित रखें, डूबने से बचाव के सिद्ध उपायों के लिए धन उपलब्ध कराएं और विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करें। ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें थी, जानकारियां थी जिनका हम कह सकते हैं कि पालन करना बहुत ज़रूरी है, मगर उनकी जो भूमिकाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है कि हमें पता हो कि किस प्रकार से हम अपने आप को डूबने से सुरक्षित कर सकते हैं। उसके लिए हमें तैराकी आनी चाहिए, हमें जल सुरक्षा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमारे पास इस प्रकार के उपकरण होने चाहिए जो हमें सुरक्षित रख सकें। यदि हम कहीं किसी नदी तालाब में जाते भी हैं वहाँ, यदि हम काम भी करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि श्रोताओं जीवन जो है, हम फिर पुनः कहेंगे कि जीवन अनमोल है, गाने के लिए है, झूमने के लिए है, आनंद करने के लिए है। और जीवन का एक अपना, हर एक के जीवन का अपने एक उद्देश्य है, उसे पूर्ण करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें यदि इस प्रकार की कोई असमय घटना, अप्रिय घटना हो जाती है जिस पे हमारा बस नहीं होता, कभी कभी धोखे में भी हो जाती है, तो किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित रखें ये जानना ज़रूरी है। और इसी के लिए मनाया जाता है डूबने से रोकथाम संबंधी जागरूकता दिवस। यदि इंसान जागरूक होगा तभी वो अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा और अपने जीवन को खुशियों से भर पाएगा।

इस मधुर गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आज का विषय था वर्षा ऋतु में प्राकृतिक जल स्रोतों के नजदीक जाने से बचें। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दिन के 12 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। आज की गायक कलाकार हैं मनोरमा तिवारी।

0: मनोरमा तिवारी की स्वर में भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकमंजरी। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है नई फिल्मों से फिल्म संगीत के कार्यक्रम में नए तराने।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

सोनू निगम के सुर में भी आपने सुना कार्यक्रम का पहला तराना। तराने के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, संगीत आदेश श्रीवास्तव का और फिल्म का नाम था चलते चलते। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना, अरिजीत सिंह और अरमान मलिक की आवाजों में। बोल कुमार के दिए हुए, धुन बनाई है अमाल मलिक ने और फिल्म का नाम है कैलेंड्रा गर्ल्स।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना सलीम मर्चेंट के सुर में। फिल्म का नाम है फैशन। बोल इरफान सिद्दीकी के दिए हुए धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना, आनंद राज आनंद के स्वर में। गीत संगीत स्वयं आनंद राज आनंद का और फिल्म का नाम है बुलेट।

बुलेट फिल्म का तराना अभी आपने सुना आनंद राज आनंद के स्वर में। गीत और संगीत आनंद राज आनंद का। फिल्मी तरानों का सिलसिला श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

दस फिल्म का गीतक है आपने सुना केके और शान की आवाजों में। शब्द रचना पंछी जुलानी की थी, संगीत विशाल शेखर का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत सोनू निगम और जावेद अली की आवाजों में, बोल इरशाद कामिल के संगीत प्रीतम का, और फिल्म का नाम है जब वी मेट।

जब भी मिड फिल्म की इस तराने के साथ ही नई तरानों का सिलसिला यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बज चुके हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली की आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का, इंतजार कुछ पलों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा

0: चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: इस वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने को पाए से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने इस बैठक को सकारात्मक बताया था। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी है और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनके अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. In Assam, more than 1,15,000 people have taken shelter in relief camps as the flood situation continues to remain grim, with the worst impact being felt in Sibsagar, Charaideo and Jorhat districts. According to latest report, 14 more flood-related deaths have been reported. Rescue and relief operations are being carried out on a war footing following heavy rains in Gujarat. 5 deaths are confirmed so far by the State Relief Commissioner. The IMD has forecast very heavy rainfall today in parts of Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and Rajasthan. Prime Minister Narendra Modi today held a telephonic conversation with Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma and reviewed the flood situation in the state. In a social media post, Mr. Sarma said that the Prime Minister sought an update on the extent of the devastation, the progress of relief operations and the challenges being faced on the ground. He said that Prime Minister Modi assured him of every possible assistance from the central government to support the ongoing relief, rehabilitation and reconstruction efforts. Mr. Sarma also said that the people of Assam are deeply grateful to the Prime Minister for his reassurance and steadfast support during this difficult time. The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demand for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, in a press conference in New Delhi today, demanded the removal of Education Minister Dharmendra Pradhan from the cabinet. The Congress leader also demanded that those allegedly responsible for the assault on students during the protest should be held accountable.

0: अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से ज्यादा के 125 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब के मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि डबल इंजन की हुकूमत तेजी से तरक्की कर रही है। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।
1: आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुकसक बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है और मैं इसका उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं। ये डबल इंजन की सरकार पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी, उसको हम जब्त भी करेंगे।
0: इस मौके पर वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तहकीन में चाबियां, चेक और स्कूल बैग तकसीम किए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज जालौन और आगरा में भी मुख्तलिफ असेंबली हलकों में 2105 करोड़ रुपए से ज्यादा के 552 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह संग बुनियाद रखेंगे और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के इस्तफादा कुंदगान में सर्टिफिकेट किट्स और चेक तकसीम करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल एक मसौदे बिल को मंजूरी दी जिसमें फास्ट ट्रैक अदालतें कायम की जाएंगी और पेपर लीक और इम्तिहान में बेजाबतियों के लिए सख्त सजा को यकीनी बनाया जाएगा। तवक्को है कि यह बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इस मामले पर पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए मरकजी पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि बिल की मंजूरी में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के लिए कई अहम इकदाम कर रही है। वहीं वजीर आजम ने कल अपने पोस्ट किए गए वीडियो पर नौजवानों से मिल रहे मुस्बत मशवरे भेजने के लिए शुक्रिया अदा किया है। ये 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो है। तकरीबन 3.3 करोड़ अफराद ने ये वीडियो देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल मरकजी हुकूमत और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हिदायत दी है कि वो पेपर लीक के बाद इस्लाहात को लागू करने में होने वाली पेशरफ्त के बारे में तफसीली हलफनामा दाखिल करे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अरादे ने कहा कि वो इस मामले की करीब से निगरानी करेंगे और इसके बाकायदगी से जायजा लेंगे। अदालत उज़्मा ने मरकजी हुकूमत से यह भी पूछा है कि वो इम्तिहानी अमल को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन मोड में मुंतकिल कराने के लिए क्या इकदाम कर रही है। केस की अगली समाअत 27 जुलाई को होगी। मरकजी वज़रा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के एक वफद से मुलाकात की। मिस्टर नड्डा ने कहा कि मुलाकात मुस्बत रही। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी निजाम में इस्लाहात के मुतालबात को गौर से सुना गया। जनाब नड्डा ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने 3 अहम मुतालबात किए और इम्तिहानी पेपर लीक होने

0: को रोकने के लिए कुछ इस्लाहात का भी मशवरा दिया है। दोनों मरकजी वुजरा आज दोबारा कांग्रेस जनता पार्टी के वफद के साथ बातचीत करेंगे। रियासती बीजेपी सदर और मरकजी वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमेशा नौजवानों को मफादात को जहन में रखा है। उन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान के पेपर लीक की वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर बरवक्त कार्रवाई की और दोबारा इम्तिहान भी कराया गया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सड़कों पर आने के बजाय ऐवान में इस मामले पर बहस करे।
1: युवा हमारा देश का भविष्य और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है बल्कि देश का एसेट और प्रधानमंत्री हमेशा उस युवाओं पे फोकस किया है और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त कार्रवाई भी की और बच्चों का भविष्य खराब ना हो जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराया लाखों परीक्षार्थियों से मांग और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो इन युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना आए वैसा जो आपके पास सुझाव हो दें ताकि हम उसका कानून बनावे नया ताकि आगे से पेपर लीक ना हो।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में आवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम की 136वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आने वाले कांवड़ यात्रा और दीगर त्योहारों के सिलसिले में कल देर शाम एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर अकीदतमंद की हिफाजत सहूलत और एहतराम अवलियन तरजीहात है। वजीर आला ने कहा कि हम आंगी में खलल डालने अफवाहें फैलाने मिलावट करने हद से तजावुज करने इंतशार फैलाने या अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत की दी कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में गोश्त और शराब की दुकानें बंद की जाए और हर दुकान पर ऑपरेटर का नाम वाज़े तौर पर जाहिर होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि कांवड़ यात्रा अब रियासत के किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रही इसलिए हर जिले में इंतजामात पर तवज्जो दी जानी चाहिए। रियासत के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़ने की वजह से बाराबंकी में दरियाए घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। महकमे मौसमियात ने अगले 5 दिनों तक रियासत के मशरकी और मगरबी हिस्सों के कई अजला में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशेंगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:16 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट।

राम राम बहनों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट में। और मैं हूं आपकी अपनी रेडियो बहन सोमा जैन। बहनों, जुलाई का खूबसूरत महीना चल रहा है, आसमान में बादल छाए रहते हैं, रिमझिम फुहारों का पड़ना, हमारी मिट्टी से हमें सोंधी सोंधी खुशबू आती है, जिससे मैं बड़ा अच्छा लगता है। और अब घर के कामकाज के साथ खेतों में भी काम चल पड़ा है, कहीं धान की रुपाई हो रही है तो कहीं खरीफ की फसलों की बुवाई की तैयारी है। इस सुहाने से मौसम में जब चारों तरफ हरियाली अंगड़ाई ले रही है, तब हमारी रसोई और खेतों में भी एक नई रौनक आनी चाहिए, क्यों मानती हो ना आप सब। इसलिए आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बारिश के मौसम में हमारे खेतों को भी लहराएगा और हमारी सेहत को भी।

कम भी हुई तो भी ये फसलें सूखती नहीं हैं और बम्पर पैदावार देती हैं, और बम्पर पैदावार हो यही तो हम सबका सपना होता है। चलिए ये तो रहा पहला फायदा, अब दूसरा, इसमें महंगे खाद, यूरिया या कीटनाशकों का भारी भरकम खर्चा भी नहीं होता, यानी कि लागत ना के बराबर। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये फसलें बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। कम लागत में इतनी मजबूत फसल होना हमारी बहनों के लिए खेती में बचत का पहला कदम है। भाई आज के समय आप बहनें घर के साथ साथ अधिक आमदनी का भी सोचती हैं, सपना देखती हैं, इसलिए तो घर के कामकाज के साथ साथ आप आज खेती किसानी में भी पूरा पूरा काम कर रही हैं, उसमें योगदान दे रही हैं। ऐसे में जितनी बचत ज्यादा होगी आपका मुनाफा भी उतना होगा और आपको खुशी भी ज्यादा होगी। मैंने जुलाई अगस्त के इस बरसाती मौसम में अक्सर सर्दी खांसी, पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में हमारे परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अंदरूनी ताकत, यानी कि इम्यूनिटी, मतलब कि जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी बनी रहे, इस बात की। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो जल्दी से संक्रमण की चपेट में कोई नहीं आएगा, और ये जो ताकत है ना, वो उसके कारण हमें बाजारों से महंगे टॉनिक और दवाइयाँ नहीं खरीदनी पड़ेंगी, और ये जो ताकत है वो हमें मिलती है हमारी खुद की रसोई में मौजूद मिलेट से। बाजार में बाजरे में जैसे अगर हम बात करें तो भरपूर आयरन होता है जो हम बहनों में खून की कमी को जड़ से खत्म करता है। अगर रागी की बात करें बहनों, तो रागी में कैल्शियम होता है जिससे हमारे बच्चों की जो हड्डियां होती है ना वो मजबूत बनती हैं। बहनों मोटे अनाज यानी मिलेट्स में फाइबर सबसे ज्यादा होता है जो बरसात के दिनों में हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है, और पता है ये शुगर और जो मोटापा है ना उसको भी कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद करता है। भाई हम में से कोई भी मोटा तो होना नहीं चाहता, तो उसमें फायदा क्या करेगा हमारा ये मोटा अनाज यानी कि ये मिलेट्स। तो भाई बारिश के मौसम में अगर सुबह के नाश्ते में बच्चों को रागी और गरम गरम दलिया दे, दोपहर में ज्वार की रोटी या सावा के चावल की खिचड़ी खिलाएं, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दवाइयों का खर्चा बचेगा और अच्छी सेहत के कारण घर में भी खुशहाली होगी। तो भाई है ना हमारे ये मिलेट्स बहुत फायदे की चीज। तो भाई ये तो रही मोटे अनाज से सेहत को होने वाले फायदे की बात, और अब बात करते हैं लक्ष्मी जी की यानी हमारी आमदनी की। बहनों आज देश दुनिया में मोटे अनाज की मांग आसमान छू रही है, शहरों में लोग इसे महंगे दामों पर खरीदने को तैयार है, तो आप यानी कि हमारी जो ग्रामीण बहनें हैं इसका फायदा उठा सकती हैं। आप अपने गांव में 10 से 12 बहनों का एक स्वयं सहायता समूह बनाकर खेत में जो बाजरा, ज्वार या रागी निकलता है उसे सीधे बाजार में मत बेचिए, बल्कि उसका रूप बदल के ज्यादा मुनाफा लेने का मन बनाइए। उसके लिए आप रागी और बाजरा के स्वादिष्ट बिस्कुट बना सकती हैं, बाजरे के लड्डू, रागी के पापड़ या मिलेट्स का मिक्स नमकीन भी तैयार कर सकती हैं। बच्चों के लिए मिलेट्स का न्यूट्रिशन पाउडर आप बना सकती हैं। आज ऐसी चीजों की मांग बाजार में बहुत ज्यादा है। इन्हें बनाकर सुंदर पैकेट में बंद कर जब आप अपने स्थानीय बाजारों में, मेलों में या शहरों की दुकान में बेचेंगी तो आपको जो सामान्य अनाज है ना उससे ज्यादा मुनाफा होगा, आप खुद की कमाई शुरू कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, सावन की बूंदे हमसे कह रही हैं कि अब समय बदल चुका है। आज हमारी ग्रामीण बहनें सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, वो खेत में अन्नपूर्णा भी हैं। भाई और किसी की बात नहीं।

हो रही, ये बात तो आपकी हमारी हो रही है ना। तो हम अन्नपूर्णा भी हैं खेत में, व्यापार में हम सब लक्ष्मी भी हैं, तो रिमझिम फुहारों का आनंद तो लेना है, साथ में गीत भी गुनगुनाना है, लेकिन सपना देखना है और उसे पूरा करने के लिए हम सबको आगे बढ़ना है। तो बस हम तो यही कहेंगे कि मिलेट्स की खेती बरखा की बूंदों के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि बरसा का मस्त बहार झूमे दुनिया। तो चलो आप भी इस गीत के साथ थोड़ा सा गुनगुना लो और मुस्कुरा लो।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: तो भाई बरसा की मस्त बहार झूमे दुनिया, तो उस दुनिया में हम और आप भी तो है, तो झूमेंगे भाई बरसा की मस्त बहार के साथ साथ। और जब खेतों में हमारा ये लहराता हुआ मोटा अनाज होगा तो और खुशी दुगनी हो जाएगी, है ना बहना। हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट होगी जो आत्मनिर्भरता के नए आसमान को छुएगी, और वो गवाही देगी कि अब प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं ग्रामीण महिलाएं। तो चलो इस विषय को और अधिक जानते हैं और अधिक समझते हैं कि कैसे आज हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। हमारी वार्ता में हमारी जानकारी दे रही हैं हमें लकी आलम।
2: किसी भी समाज या देश की प्रगति के लिए वहाँ की महिलाओं का योगदान सबसे अहम होता है। महिलाएं वो आधारशिलाएं होती हैं जिन पर एक विकसित व सशक्त देश का निर्माण होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ भी कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों या महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ देवता का निवास होता है। आज महिलाओं के बिना किसी भी क्षेत्र में विकास कर पाना असंभव सा लगता है। अच्छी बात तो ये है कि वर्तमान सरकार भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है, और बहुत सारी योजनाएं इस दिशा में आ रही हैं जो उनको सशक्त बना सके। लकड़ी के चूल्हे से गैस चूल्हे तक, खुले में शौच से शौचालय तक, शौचालय से बेहतर स्वास्थ्य तक, स्वास्थ्य से शिक्षा और विकास तक, इन सभी दिशाओं में वर्तमान सरकार ने महिलाओं की जागरूकता और उनके सशक्तिकरण की ओर ध्यान दिया है, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन महिलाओं के लिए किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का अधिकतर समय घरेलू कार्य करने में निकल जाता है। पहले वो लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल कर रही थी जो स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक साबित हो रहा था, लेकिन आज सबसे अच्छी बात यह है

कि वर्तमान सरकार के द्वारा उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई, जिसके द्वारा महिलाओं को गैस सिलेंडर का कनेक्शन मुफ्त में मिल रहा है, जिसके उपयोग से अब वो आसानी व अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही साथ महिलाओं के समय की बचत, स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है। ग्रामीण महिलाएं खुद को इसलिए भी सशक्त महसूस कर रही हैं क्योंकि आज गांव में भी उनकी सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही हैं। उनके लिए अलग से महिला थाने बने हैं जिसमें अब वो जाने की हिम्मत भी करने लगी हैं और FIR व शिकायत को दर्ज करवा रही हैं। और आज देश में महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संगठन व हेल्पलाइन कार्य कर रहे हैं, जो उनकी समस्याओं से निजात दिलाकर उनको विकास व प्रगति की ओर अग्रसर कर रहे हैं। पहले ग्रामीण इलाकों में महिलाएं शौच के लिए खेतों में और खुले में जाया करती थी, जिससे उनके साथ तरह तरह की समस्याएं व घटनाएं भी उत्पन्न होती थी। खुले में शौच जाने से स्वास्थ्य में खराबी व बीमारियों का जन्म होता है और लड़कियों को जुर्म का सामना भी करना पड़ता है। आज वर्तमान सरकार के द्वारा घर घर में शौचालय बनवाए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य व सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखा जा रहा है, जिसके कारण आज महिलाएं खुद को सुरक्षित व सशक्त महसूस कर रही हैं। गांव में शराब जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ भी जनमत आगे आ रहा है और आज कई राज्य सरकारों ने शराबबंदी का प्रयास भी किया है, जो अपने आप में अत्यंत सराहनीय कदम है। जब से शराबबंदी का प्रयास हो रहा है, तब से गांव की महिलाओं को अपने हस्बैंड से पिटना, गाली गलौज, घरेलू हिंसा, रिश्ता खराबी व रोज के छोटी मोटी समस्याओं से निजात मिलती दिख रही है। आज की जागरूक ग्रामीण महिलाएं खुद ही आगे आकर शराब जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कभी थाने पर प्रदर्शन तो कभी जगह जगह आंदोलन करती दिखाई देती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना है, जो पूरे तरीके से वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, ऋण, बीमा, पेंशन तक आम व ग्रामीण आदमी की पहुंच को सुनिश्चित कर रहे हैं। आज महिलाएं अधिक मात्रा में अपने खाते खुलवा रही हैं। महिलाओं के पर्सनल अकाउंट्स होने से वे अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत समझ रही हैं। फाइनेंशियली मजबूती के साथ ही साथ आज महिलाएं खुद को फिजिकली और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सशक्त महसूस कर रही हैं, क्योंकि आज महिलाओं के लिए प्रेगनेंसी के वक्त सुरक्षित प्रसव के लिए सरकार ने इनके हित में एक योजना, सुरक्षित मातृत्व लाभ योजना चलाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर में सुरक्षित डिलीवरी की संख्या में वृद्धि और प्रसूता मृत्यु दर में कमी लाना है। इस योजना को देश के सभी 650 जिलों में लागू किया गया है और इस योजना में महिलाओं को 6,000 रुपए गर्भावस्था सहायता के लिए तथा प्रसूता मृत्यु दर में कमी लाने के प्रयास के रूप में सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। कल का भविष्य कही जाने वाली बेटियों के लिंग अनुपात में बीते सालों में जो आश्चर्यजनक गिरावट आई है, उसको संज्ञान में लेते हुए हरियाणा सरकार ने सर्वप्रथम इस पर पहल की और अब केंद्र सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किया गया। आज बेटियों को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार से मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि भविष्य की नींव इन बेटियों के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सरकार ने बच्चियों के भविष्य और शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का क्रियान्वयन किया है, जो कि एक लघु बचत योजना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में बेटियों की पढ़ाई और उनकी शादी पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करना है। वर्तमान सरकार के द्वारा देश में कौशल विकास अभियान स्किल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया है। यह एक बहुआयामी विकास योजना है। इसके अंतर्गत भारतीय युवाओं को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कर सके। यह मिशन सरकार की गरीबी के खिलाफ एक जंग है और भारत का प्रत्येक गरीब और वंचित युवा व युवती इस जंग का सिपाही है। देश को विकसित करने के उद्देश्य से इस योजना का आगाज हुआ। इसका मुख्य प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर भी पड़ा है, जिसका उद्देश्य

0: उनको विभिन्न क्षेत्र में प्रशिक्षित करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण महिलाओं की गरीबी को दूर करने के साथ ही साथ गरीब लोगों, परिवारों तथा युवाओं में नया जोश व सामर्थ्य भरकर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास लाना है तथा देश में नई ऊर्जा लाने का प्रयास करना है। दरिया की कसम मौजों की कसम, दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदल गया, ये ग्रामीण महिलाओं का जमाना भी तो बदल गया, क्योंकि प्रगति की ओर निकल पड़ी हैं अब ग्रामीण महिलाएं।
1: सच्ची तो कहा हमारी वार्ताकार ने कि ग्रामीण महिलाओं का जमाना भी बदल गया है, क्योंकि हम सब भी प्रगति की ओर निकल चुके हैं। और इसके लिए जैसा कि हमने कहा ना बहनों, ज़रूरी है कि अब हम मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को अपनाएं, उसकी खेती करें, अपनी सेहत बनाएं और साथ में आय को भी बढ़ाएं। भाई आय बढ़ेगी तभी तो प्रगति आगे बढ़ेगी। तो ऐसी और भी बात करेंगे, पर फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

अल्प विराम के बाद स्वागत है आप सभी बहनों का आपके अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट में, और मैं हूँ आपकी बहन सुमा जैन। भाई, अल्प विराम से पहले आज हमने बात करी मिलेट्स के ऊपर। हमने बात करी कि कैसे हम बहनें, ग्रामीण बहनें, प्रगति के रास्ते पर चल पड़ी हैं, और साथ में आनंद लिया बरसात की मस्त बहार का भी, और उसमें हम झूमे भी। भाई, बरसात की बात होती है ना तो मक्का बड़ा याद आता है। बरसात में मक्का खाने का आनंद ही अलग है। इस मौसम में भुट्टे बहुत मिल रहे हैं बाजार में, तो आपने खाया या नहीं, ज़रूर खाइएगा। वैसे मक्के के सिर्फ भुट्टे ही नहीं होते, मक्के से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। नमकीन तो आप जानती हैं, पर आज हम आपको मक्के का हलवा कैसे बनता है ये बताते हैं। तो फटाफट उठा लीजिए अपनी डायरी और अपना कलम और लिख लीजिए मक्के का हलवा बनाने में जो सामग्री हमें चाहिए वो क्या क्या चाहिए। बहनों, मक्के का हलवा बनाने में हमें चाहिए 2 कप मक्के का आटा, 3 कप या माफ करिए 3 बड़ी चम्मच हमें घी चाहिए। भाई, 3 कप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बड़ी चम्मच घी चाहिए, क्योंकि बिना घी के हलवा अच्छा कैसे बनेगा। ठीक है, इसके साथ साथ बहनों हमें चाहिए 1/2 कप चीनी, 10 से 12 काजू कटे हुए चाहिए हमें, 10 से 12 बादाम वो भी कटे हुए चाहिए, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर हमें चाहिए, 2 छोटा चम्मच नारियल कद्दूकस करा हुआ, और अब तो बाज़ार में भी कद्दूकस करा हुआ नारियल मिलता है, वो भी ले सकती है। इसके साथ हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच किशमिश। ये तो रही सामग्री, हमें उम्मीद के का आटा, 3 बड़ी चम्मच हमें घी चाहिए। भाई, 3 कप तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बड़ी चम्मच घी चाहिए, क्योंकि बिना घी के हलवा अच्छा कैसे बनेगा। ठीक है, इसके साथ साथ बहनों हमें चाहिए 1/2 कप चीनी, 10 से 12 काजू कटे हुए चाहिए हमें, 10 से 12 बादाम वो भी कटे हुए चाहिए, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर हमें चाहिए, 2 छोटा चम्मच नारियल कद्दूकस करा हुआ, और अब तो बाज़ार में भी कद्दूकस करा हुआ नारियल मिलता है, वो भी ले सकती है। इसके साथ हमें चाहिए 1 छोटा चम्मच किशमिश। ये तो रही सामग्री, हमें उम्मीद है आपने लिख ली होगी। अब इसे बनाना कैसे है वो भी जान लेते हैं। तो भैया, आपको सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गरम करना है, और उसी घी में से थोड़ा सा घी आप बचा लें, जिसे हलवा बनाने के बाद हम ऊपर से डालेंगे, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो जब हमारा घी है जो है वो गर्म होने लगे, तो इसमें हमें मक्के का आटा डालना है और धीमी आंच पर उसे भूनना है। जब वो सुनहरा होने लगे तब तक हमें उसे भूनना है। जब अच्छी सी महक आने लग जाए, उसकी महक अलग से ही आती है तो आप जानती हैं, तो जब महक अच्छी आने लगे तो इसमें 1.5 कप पानी और चीनी डालकर हमें अच्छे से इसे मिला लेना है, और मध्यम आंच पर इसे पकने देना है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक हलवा गाढ़ा ना हो जाए। जब हलवा हमारी कढ़ाई की तली को छोड़ने लगे तो इसमें हमें इलायची पाउडर मिला लेना है। हलवा गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें जो नारियल है, बादाम है, काजू किशमिश है, उन सबको मिला लेना है। मक्के के आटे का हलवा बनकर तैयार है। बस इसे प्याली में निकालें, ऊपर से जो बचा हुआ घी है ना वो डाल दें, और फिर क्या है, थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते और डाल दें, और फिर इसे घर में सबको खिलाएं और तारीफ पाएं। वैसे बहनों, इस बरसात के मौसम में मक्के का आटा अच्छा, मक्के का हलवा अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, पर एक परेशानी होती है, हमारे जो मसाले हैं ना वो अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे मसाले ख़राब ना हो, इसके लिए दादी जी सलाह देती हैं कि जो मसाले हैं उन्हें आप कभी भी चूल्हे के पास नहीं रखें, क्योंकि भाप से मसालों में नमी बढ़ जाती है और वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। अक्सर हम इन्हें चूल्हे के पास रख देते थे, तो दादी जी की सलाह ज़रूर मानिएगा। तो भाई, कार्यक्रम के माध्यम से यही कोशिश रहती है, हम आपको अधिक से अधिक जानकारी दें जो आपके काम आए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए स्वीकार करें अपनी बहन सोमा जैन की। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 1:46 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद गजलें। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और गुलाम अली।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गजलें, गायक कलाकार थीं आशा भोसले और गुलाम अली। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2 बजने को है हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का इंतजार कुछ पलों का।

0: Evening atop their majestic chariots stationed on the grand road. During this time honored ritual, the sibling deities will be adorned with around 208 kilograms of traditional ornaments comprising gold and other precious materials symbolizing divine majesty, prosperity and universal benevolence. Elaborate security arrangements and extensive pilgrim facilitation measures have been put in place to ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashvani News.
1: Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of the three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Sameh 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Jhandu Kumar, clenched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई. 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन. वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर. 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू. सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की. स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची. और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा. अब समाचार विस्तार से. असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. 1 लाख से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं. सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं. ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई. इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है. एक रिपोर्ट.
3: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है. प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है. प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है. आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है. अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों राहत उपायों को तेज कर दिया गया है. गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट.

0: साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशय में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जलभराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में

0: कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहे।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे News on AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा।

0: ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी गिरिजा देवी का राग मिश्र खमाज में ठुमरी गायन।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का गाया राग मिश्र खमाज में ठुमरी गायन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2:45 हुए हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत।

कन्हैया फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। शब्द रचना मज्जू सुल्तानपुरी की, संगीत ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ।

जादू फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीत गाते शकील बदायूं, संगीतकार नौशाद। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत की बोल लिखे हैं साहिर ने, संगीत दिया है रोशन ने और फिल्म का नाम है ताजमहल।

ताजमहल फिल्म के इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत अब यहीं पर संपन्न होते हैं। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है छलिया, शब्दरचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत आर डी बर्मन का।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है नागिन।

ये इश्क नहीं आसा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनवर के स्वर में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है और फिल्म का नाम है राजपूत।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत येसुदास के स्वर में। शब्दशना कैफी आजमी की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने और फिल्म का नाम है टूटे खिलौने।

टूटे खिलौने इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना यशुदास के स्वर में, और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है। अब हिंदी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
2: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत देश के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग SC के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश

0: और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। अनहत जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची।

शाम 5:10 का समय रहेगा भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या का। शाम 5:30 का समय रहेगा हमारे युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा कौशल से समृद्धि। साथ ही होगी मेहर सत्संगी की वार्ता, जिसका विषय होगा मानवता के भविष्य की कुंजी है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। साथ ही होंगे सेगमेंट्स आज का सवाल, आइए जानें इस सप्ताह और ताकत वतन की हमसे है। इसी के साथ आनंद लीजिएगा अपने पसंदीदा फिल्मी गीतों का।

शाम 6 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्यालोक का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा स्वस्थ मिट्टी संपन्न किसान। साथ ही होगी भेंट वार्ता जिसका विषय होगा धान की फसल के सामयिक कार्य, जिसमें आज प्रगतिशील किसान देवेंद्र सिंह से श्री कृष्ण जी की बातचीत हम सुनेंगे। इसके साथ ही होंगे सेगमेंट्स नई खोज, मंडी भाव, मौसम का हाल और आनंद लेंगे अपने पसंदीदा लोकगीतों का। शाम 6:30 का समय रहेगा कार्यक्रम मजदूर मंडल का, जिसमें आज की चर्चा का विषय होगा डूब दुर्घटनाएं और हमारी लापरवाही, और होगी चर्चा घरेलू हिंसा और बच्चे विषय पर। कार्यक्रम मजदूर मंडल में होगी आज वार्ता जिसका विषय होगा मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाले रोग और उनका उपचार। वार्ताकार होंगी डॉक्टर अनुजा जैन। इसमें आज जानकारी लीजिएगा आज का प्रश्न, ज्ञान सागर सेहत टिप्स, नई खोजें और आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों का। शाम 7:10 का समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आपके लिए हम लाए हैं वार्ता विज्ञापनों में नारी छवि का अपचित्रण विषय पर। वार्ताकार होंगी डॉक्टर ममता सिंह।

शाम 7:31 का समय रहेगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का, जिसमें आज वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे यानी डूबने से रोकथाम संबंधी जागरूकता दिवस पर आज हम जानेंगे पानी में डूबते व्यक्ति का बचाव एवं उपचार विषय पर डॉक्टर अतुल कुमार सारस्वत से अनिंद्र सिंह की बातचीत। रात्रि 8 बजे का समय रहेगा इस सप्ताह संसद में का, जिसका अनुप्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 8:15 का समय रहेगा फिल्मों से भजनों के कार्यक्रम भजन संध्या का।

रात्रि 8:30 का समय रहेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। रेडियो पत्रिका विज्ञान भारती का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 10:00 हमारे दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की सूची। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरसंध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे और साथियों की आवाज में शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म परिणय से शर्मा बंधु की आवाज में। रामानंद शर्मा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों से। सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज में समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। इसी के साथ हमारा आज का भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का युवानी कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं अपेक्षा शाक्या को। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसकी डिग्री से नहीं बल्कि उसके युवाओं के हाथों के हुनर और दिमाग की सोच से तय होता है। आज की फास्ट पेस लाइफ में जब हर तरफ AI और न्यू टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, जहां एक बात तो साफ है कि आने वाला कल उनका है जिनके पास सही स्किल है। इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दूरदर्शी विचार के साथ, कौशल से समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी थ्रू स्किल्स। दोस्तों, कौशल यानी स्किल सिर्फ टेक्निकल नॉलेज तक सीमित नहीं है। जब भी कोई हायरिंग होती है या आप कहीं इंटरव्यू देते हो तो एम्प्लॉयर सिर्फ आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज ही नहीं बल्कि ये भी देखते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी सॉफ्ट स्किल्स यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल लिटरेसी जैसे स्किल्स काफ़ी मायने रखते हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानते हैं लेकिन अगर आप टीम के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे या प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते तो आपको इनएफिशिएंट माना जाता है। नॉलेज, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल स्किल्स आज की नई स्ट्रेंथ हैं। दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे यंग कंट्रीज में से एक है। हमारे पास एक बहुत बड़ा यूथ पॉपुलेशन है और अगर हमको सही ट्रेनिंग और स्किल्स मिल जाए तो यही देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। दोस्तों, जब कोई देश या समाज आगे बढ़ता है तो उसके पीछे हुनरमंद लोग होते हैं। आज इंडस्ट्रीज और कंपनीज सिर्फ ये नहीं देख रही कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है बल्कि वे ये देख रही हैं कि आपका इंटेलेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास सही स्किल है तो आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं ढूंढते बल्कि आप दूसरों के लिए भी रास्ता खोलते हैं। अब सवाल ये है कि कौशल से समृद्धि कैसे आती है। दोस्तों, हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। अगर आपके पास स्किल है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपना छोटा बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, विच मीन्स आपके अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाती है, आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है, देश की इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूट

0: कर पाते हैं। तो आज की फास्ट पेस लाइफ में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम भी स्किल्ड हो सकें? दोस्तों, जवाब बिल्कुल सिंपल है, नेवर स्टॉप लर्निंग। नई नई टेक्नोलॉजीज और स्किल्स के साथ खुद को अपग्रेड करते रहें। एआई और डिजिटल टूल्स के जरिए मत उन्हें अपनी ताकत बनाइए। दोस्तों, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए, क्योंकि आज सरकार के कई स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव हैं जहां आप फ्री या रीजनेबल फी में बेहतरीन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को ज़रूर पहचानें। याद रखिए, स्किल्स सिर्फ जॉब पाने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में हर चैलेंज को कॉन्फिडेंटली फेस करने के लिए भी ज़रूरी है। अब जब हम कौशल से समृद्धि की बात कर चुके हैं, तो हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अब वक्त है हमारे आज के सवाल का। दोस्तों, हर साल 25 जुलाई यानी आज के दिन दुनिया भर में कौन सा अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है? ज़रा सोचिए और एक हिंट ज़रूर देंगे हम आपको। दोस्तों, ये पानी से जुड़ी सेफ्टी और लोगों की जान बचाने के लिए एक बेहद गंभीर विषय से संबंधित है। आप सोचिए, तब तक हम बुलाते हैं महर सत्संगी को। दोस्तों, जब हम भविष्य, जीवन की सुरक्षा और प्रगति की बात करते हैं, तो इंसानी सभ्यता का अगला सबसे बड़ा कदम है फ्यूचरिस्टिक साइंस और टेक्नोलॉजी। और इसी गहराई को समझने के लिए अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगी महर, जिनका विषय है मानवता के भविष्य की कुंजी है क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी।
1: मानव सभ्यता ने समय समय पर अनेक वैज्ञानिक क्रांतियों का अनुभव किया है। पहिए से लेकर इंटरनेट तक हर खोज ने समाज को नए आयाम दिए। आज जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति देख रहे हैं, उसी समय आज विज्ञान की एक और क्रांति हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यह विज्ञान न केवल भविष्य की दिशा तय करेगा, बल्कि मानवता की कई गहरी समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत कर सकता है। इसे सही मायनों में मानवता के भविष्य की कुंजी कहा जा सकता है। साथियों, क्वांटम शब्द का अर्थ है ऊर्जा का सबसे छोटा कण। क्वांटम हमें यह सिखाता है कि कोई कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। यह भी संभव है कि दो कण लाखों किलोमीटर दूर होने पर भी एक दूसरे से तुरंत जुड़ रहे हैं, जिसे हम इंटेंगलमेंट कहते हैं। सोचिए, अगर यह अद्भुत सिद्धांत तकनीक में बदल जाए तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। क्वांटम विज्ञान के शुरुआती दौर की बात करें तो इसकी नींव 1900 में मैक्स प्लैंक ने रखी। सन 1905 में आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव समझाया। फिर सन 1925 में हाइजनबर्ग ने और 1926 में श्रोडिंगर ने आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी को जन्म दिया। भारत ने भी इस क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। सन 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस के विचारों ने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का सिद्धांत और बोसोन कणों की समझ को जन्म दिया। सन 1928 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की और नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यानी भारत ने सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों स्तरों पर क्वांटम विज्ञान में अपनी ऐतिहासिक छाप छोड़ी और इस तरह क्वांटम विज्ञान की जन्म कथा में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। आज भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो और डीआरडीओ क्वांटम संचार पर काम कर रहे हैं। आईआईटीज और आईआईएससी क्वांटम कंप्यूटिंग और सेंसरिंग में शोध कर रहे हैं। भारत ने 2023 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM की घोषणा करी, जिसके तहत 2031 तक भारत को क्वांटम शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा गया। आज भारत के स्टार्टअप जैसे QNU Labs और बोसोन क्यूपाई क्वांटम साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। क्वांटम तकनीक के अनुप्रयोगों की अगर बात करें तो

0: तो स्वास्थ्य क्षेत्र में क्वांटम कंप्यूटर, नई दवाइयों की खोज, कैंसर जैसी जटिल बीमारियों के निदान और उपचार, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में गतिशील है। क्वांटम एन्क्रिप्शन डेटा को हैक प्रूफ बनाकर साइबर सुरक्षा और संचार प्रदान करेगा। भारत पहले ही क्वांटम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सफल परीक्षण कर चुका है। अब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे जटिल मुद्दों पर विश्लेषण और समाधान क्वांटम कंप्यूटर से संभव होगा। ऊर्जा दक्षता और स्थिरता से नए रास्ते खुलेंगे। रक्षा क्षेत्र में DRDO क्वांटम रेडार और संचार विकसित कर रहा है। इसरो उपग्रह आधारित क्वांटम नेटवर्क बना रहा है, जो हमारे सुरक्षा को मजबूत करेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में आज क्वांटम विज्ञान और तकनीकी के समावेश की बड़ी भूमिका है। अमेरिका ने गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं। चीन ने मिशियस नामक क्वांटम उपग्रह लॉन्च किया। यूरोपियन यूनियन ने क्वांटम फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया और वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम वर्ष के रूप में मनाया जाना अपने आप में इसके महत्व को दर्शाता है। भारत की भूमिका को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज वित्तीय मॉडलिंग, लॉजिस्टिक और सामग्री विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों में क्वांटम तकनीक से अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। ये बात सही है दोस्तों कि क्वांटम तकनीक अभी बहुत महंगी और जटिल है और क्वांटम कंप्यूटरों में त्रुटियों को नियंत्रित करना कठिन है। प्रशिक्षित वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी कम है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए संसाधन जुटाना आसान नहीं है, परंतु हर अवसर के साथ चुनौतियां भी होती हैं। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री जी आपदा में अवसर की बात करते हैं और भारत के पास युवाओं की विशाल शक्ति है। यदि हम शिक्षा, शोध और उद्योग को जोड़ पाएं, तो भारत क्वांटम क्रांति का नेतृत्व कर सकता है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है। इसके लिए स्टार्टअप्स और विश्वविद्यालयों को आगे आना पड़ेगा और सबसे जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। साथियों, क्वांटम विज्ञान अब केवल प्रयोगशालाओं की जटिलता नहीं है, यह मानवता के भविष्य की कुंजी है। यह विज्ञान स्वास्थ्य से लेकर रक्षा, शिक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। भारत के पास अवसर है कि वह केवल इस क्रांति का हिस्सा ना बने, बल्कि इसको नेतृत्व प्रदान करे। राष्ट्र के रूप में भारत का सपना केवल प्रयोगकर्ता बनने का नहीं, बल्कि वैश्विक नेता बनने का होना चाहिए। जब 100 साल पहले परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े भारत में बोस और रमन जैसे वैज्ञानिकों ने दुनिया को चकित कर इतिहास रच दिया था, तो आज के बदलते भारत में आज की युवा पीढ़ी क्यों नहीं कर सकती? हम सब युवाओं को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि हम डिजिटल इंडिया से आगे बढ़कर एक क्वांटम इंडिया बनाएंगे, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होता है जो उसे गढ़ने की क्षमता रखते हैं।
1: दोस्तों, अभी हमने सुना मेहर को, जिन्होंने समझाया कि कैसे क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर बदल सकती है। और अब वक्त है मेहर की वार्ता से पहले पूछे गए सवाल के सही जवाब जानने का। दोस्तों, हमने आपसे पूछा था कि 25 जुलाई को कौन सा अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो सही जवाब है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी डूबने से रोकथाम संबंधी जागरूकता दिवस। दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि स्विमिंग और वाटर सेफ्टी जैसी बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स सीखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि सही समय पर सही हुनर किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, अगर आप डूबने से रोकथाम संबंधी जानकारी लेने के लिए इच्छा रखते हैं, तो आज 7:30 बजे ट्यून इन करें आकाशवाणी ऑन एयर ऐप पर और सुने भेंट वार्ता, जिसका विषय है पानी से डूबते व्यक्ति का बचाव एवं उपचार। और अब जब बात जिंदगी बचाने की हो, तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सेफ्टी तक नहीं रहती। एक जागरूक नागरिक

के नाते हमें सिर्फ पानी से सुरक्षित रहना ही नहीं बल्कि पानी को सुरक्षित रखना भी सीखना होगा। दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं जल संचय में जन भागीदारी की। बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

वेलकम और वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूफानी और मैं हूं आपकी होस्ट अपेक्षा शाक्या। दोस्तों, अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट ताकत वतन की हमसे है, जहां हम बात करेंगे जल संचय में जन भागीदारी की। दोस्तों, कहते हैं कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना, उसकी इमारतें या उसकी तकनीक ही नहीं, बल्कि उसके जागरूक और जिम्मेदार नागरिक भी होते हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक है जल संरक्षण, यानी पानी बचाना। बढ़ती पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज और पानी के बढ़ते कंजप्शन की वजह से कई इलाकों में पानी की कमी एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। ऐसे में सिर्फ सरकार के प्रयास काफ़ी नहीं है, पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी जन भागीदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि पानी सिर्फ पीने, नहाने या खाना बनाने के लिए ही चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं उनके बनाने में भी हज़ारों लीटर पानी खर्च होता है, चाहे वो जीन्स हो चाहे या एक कप कॉफ़ी। दोस्तों, पानी बचाना सिर्फ नल बंद करने तक सीमित नहीं है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन भी वाटर कंजर्वेशन का एक बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, एक फैक्ट शायद आपको सरप्राइज कर दे, आज हम सब ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, ओटीटी पर मूवीज देखते हैं, क्लाउड स्टोरेज यूज़ करते हैं, एआई टूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब चलता कैसे है? दोस्तों, इसके पीछे काम करते हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, जहाँ लाखों सर्वर्स 24/7 चलते रहते हैं। जब ये सर्वर लगातार काम करते हैं तो काफ़ी हीट जनरेट होती है और उस हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग सिस्टम्स काम करते हैं। कई डेटा सेंटर्स में इस कूलिंग प्रोसेस के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, जबकि कई नए डेटा सेंटर्स अब क्लोज लूप या वाटर एफिशिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं, यानी हमारी डिजिटल लाइफ भी कहीं ना कहीं पानी से जुड़ी है। इसे एक तरह का डिमांड एंड सप्लाई लूप समझिए। जितनी ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, उतनी ही कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटिंग बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ेगी तो कूलिंग की ज़रूरत भी बढ़ेगी। इसलिए टेक्नोलॉजी और वाटर कंजर्वेशन दोनों का साथ साथ चलना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरी ड्रॉप काउंट्स एंड एवरी चॉइस काउंट्स। क्योंकि देश की ताकत सिर्फ बड़े फैसलों से नहीं बनती, बल्कि करोड़ों लोगों की रोज़मर्रा की अच्छी आदतों से बनती है। आफ्टर ऑल, ताकत वतन की हमसे है। और दोस्तों, जब देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात आती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी देश के नाम कर देते हैं। उनका साहस, उनका डेडिकेशन और उनका सेक्रीफाइस हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आइए जानते हैं वीरता पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, ब्रेवरी सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि एक जज्बा है, जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी इंसान को सही फैसला लेने के लिए हिम्मत देता है। और जब बात देश की रक्षा या दूसरों की जान बचाने की हो, तब ये हिम्मत और भी खास बन जाती है। इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज को रिस्पेक्ट देने के लिए भारत सरकार वीरता

पुरस्कार यानी गैलेंट्री अवार्ड्स प्रदान करती है। अगर हम वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो सबसे हाईएस्ट ऑनर है परमवीर चक्र, और उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान सबसे असाधारण वीरता और सुप्रीम सेक्रीफाइस का परिचय दिया हो। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र आखिरी बार 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान प्रदान किया गया था। उस युद्ध के चार वीरों कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार मेजर संजय कुमार ने अपने अदम्य साहस से इतिहास रच दिया। इसके बाद आता है महावीर चक्र, और वीर चक्र जो युद्ध के दौरान दिखाई गई अद्भुत वीरता और समर्पण के लिए दिए जाते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, क्योंकि बहादुरी सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं होती। कई बार आतंकवाद विरोधी अभियानों, रेस्क्यू ऑपरेशंस या लोगों की जान बचाने के दौरान भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां कोई व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए खड़ा हो जाता है। ऐसे साहसी लोगों को सम्मानित किया जाता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से। दोस्तों, वीरता का मतलब सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना और सही काम के लिए खड़े होना भी अपने आप में एक तरह की वीरता है। अब इस इंस्पायरिंग थॉट के साथ सुनते हैं एक इंस्पायरिंग गाना।

देखने को मिले। अमेरिका और यूरोप के बीच बढ़ती ट्रेड टेंशन एक बार फिर चर्चा में रही, जिसका असर फ्यूचर में टेक्नोलॉजी, बिजनेस और जॉब पर पड़ सकता है। ये थी इस वीक की कुछ ग्लोबल अपडेट्स। दोस्तों, आप सुन रहे थे अपेक्षा शाक्या को। फिर से मिलेंगे कल 5:30 बजे। नमस्कार।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम्यालोक।

हमारे सभी अन्नदाताओं को हमारी राम राम, प्रणाम और नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम ग्रामीलोक, और आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो साथी, आपका रेडियो दोस्त अनिरुद्ध कुमार। दोस्तों, हमारे गांव देहात में हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बाबा, पर बाबा, ताऊ, चाचा कहा करते थे कि जैसी नींव वैसा मकान और जैसी माटी वैसा किसान। दोस्तों, जैसा हमारा शरीर सही पोषण न मिलने पर कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक वैसे ही हमारी धरती माँ, हमारी माटी भी ज़्यादा रसायनों और उसकी सही देखभाल न मिलने से थक जाती है। और जब माटी थकती है तो आप जानते हैं क्या होता है, किसान की जेब खाली होने लगती है। मित्रों, हमारी फसलों की तंदुरुस्ती हमारी मिट्टी की सेहत पर निर्भर करती है, ये हम सबको पता होना चाहिए। लेकिन साथियों, आज की सच्चाई की बात करें तो हम में से ज़्यादातर किसान साथी अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में सोचते तक नहीं। उन्हें केवल और केवल मतलब फसलें उगाने से है। हमारे खेत की मिट्टी में जान है या नहीं, कहीं वो धीरे धीरे दम तो नहीं तोड़ रही, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। दोस्तों, बात कड़वी है पर सच्चाई यही है, और इसे हम अच्छी तरह जानते भी हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी हमारे बहुत से किसान भाई खेती को कोसते हुए कहते हैं कि भैया, अब तो खेती करबे में कलेजा कहाँ पता है। हर साल फसल में यूरिया डीएपी बढ़ा रहे हैं, दिन रात खूब मेहनत कर रहे हैं, पर पतों ना पैदा लगातार कम हो रही है। ज़मीन हर साल खाद ज़्यादा मांग रही है, फिर उपज घटती जा रही है। जाते हमारी जेबों खाली हो रही है, सो अलग। साथियों, हमें अपनी खेती में, अपनी धरती में बीमारी तो दिख रही है, लेकिन उस बीमारी की जड़ क्या है वहाँ तक हम नहीं पहुँचते और नहीं पहुँचने की कोशिश करते हैं। और पता है, वो जड़ है बिना सोचे समझे खेती में बोरी भर भर कर रासायनिक खादों का प्रयोग, जिसे हमें जितना जल्दी हो सके बंद और बहुत ही सीमित मात्रा में ज़रूरत के हिसाब से करना होगा। अब हमारे बहुत से किसान साथी कहेंगे कि अगर फसलों में रासायनिक खाद नहीं देंगे तो पैदावार कहाँ से आएगी। तो भाइयों, ये बात आप मान लीजिए कि हमने अपनी ज़मीन में रासायनिक खादों का प्रयोग इतना ज़्यादा कर दिया है कि मिट्टी की जो जैविक क्षमता है वो बहुत घट गई है, मिट्टी सांस तक नहीं ले पा रही। अब आप सोच रहे होंगे, भला मिट्टी भी सांस लेती है? तो दोस्तों, जान लीजिए, मिट्टी सिर्फ धूल मिट्टी नहीं है, ये करोड़ों सूक्ष्म जीवों और मित्र कीटों का घर है। जब आप हद से ज़्यादा रासायनिक खाद डालते हैं तो ये मित्र कीट मर जाते हैं, मिट्टी सख्त हो जाती है और उसमें पानी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है, और इसी को कहते हैं मिट्टी का कुपोषण। भाई बहनों, एक बात बताइए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सीधे दबा देता है या फिर पहले खून या दूसरी जांच करवाता है? जाहिर सी बात है, सही इलाज करना है तो इलाज से पहले जाँचें जरूरी हैं, तभी डॉक्टर सही इलाज कर पाएगा। ठीक वैसे ही हमारी मिट्टी की जांच होती है, अगर इसके लिए हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिलता है। साथियों, मिट्टी की सही जांच कराने के लिए आपको फसल कटने के बाद अपने खेत की 4-5 अलग अलग जगहों से अंग्रेजी के वी आकार में लगभग 6 इंच गहरा गड्ढा खोदकर नमूना लेने होते हैं। इस मिट्टी को सुखाकर अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK या फिर जिला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में ले जाएं। जांच के बाद आपको सॉयल हेल्थ कार्ड मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी जमीन

में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक या आयरन जैसे किन तत्वों की, किन चीजों की कमी है और कौन सी चीज ज्यादा है। तो साथियों, मिट्टी की जांच के बाद हमें अपने खेतों में वही खाद डालनी होती है या देनी होती है जिसकी कमी होती है। हमारी मिट्टी में जो तत्व ज्यादा मात्रा में होते हैं उन्हें हमें नहीं डालना होता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे पैसों की बर्बादी रुकेगी, हमारी लागत कम आएगी, फसल मजबूत होगी और मिट्टी की सेहत में भी सुधार आएगा। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, मिट्टी की जांच तो हमने करा ली, लेकिन अपनी मिट्टी को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये बात जान लेनी चाहिए। इसके लिए साथियों, आपको चार बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात है, जैविक और प्राकृतिक खाद आप लोग अपनाएं, खेत में केवल रसायन न डालें। गोबर की पुरानी खाद, केंचुआ खाद और जीवामृत का प्रयोग करें, ये मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। दूसरी बात है फसल चक्र, हर बार एक ही फसल ना उगाएं। फसलों के बीच में दलहनी फसलें जैसे चना, मूंग, उड़द या अरहर जरूर बोएं, ये फसलें हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन में जमा करती हैं। पराली और फसल अवशेष न जलाएं, ये बात हम आपको अपने कार्यक्रम के माध्यम से बार बार कहते भी हैं। इससे होता क्या है कि खेत के जो फसल होती है उसके जो डंठल होते हैं, पराली को अगर हम जलाते हैं तो मिट्टी के ढेरों में जो जितने भी हमारे मित्र कीट होते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं और मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वो भी नष्ट हो जाती है। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन्हें वेस्ट डीकम्पोजर से खेत में ही हम सड़ा सकते हैं। और चौथा है हरी खाद का प्रयोग। बारिश के मौसम में ढेंचा, सनई बोकर हम 45 दिनों बाद खेत में उसकी जुताई कर दें। ये खाद मिट्टी को भरपूर कार्बनिक खाद देती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्राकृतिक तरीकों को वैज्ञानिक खेती से जोड़ देते हैं तो हमारी लागत आधी और आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो किसान साथियों, ध्यान रहे, धरती माँ हमारी अन्नदाता है। अगर हम अपनी माटी का ध्यान रखेंगे तो माटी हमारी आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखेगी। इसीलिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल सीमित करें, मिट्टी की नियमित जांच कराएं, जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर अपने कदम बढ़ाएं। भाई बहनों, हमेशा याद रखिए, माटी का जब रखोगे ध्यान तभी बनेगा देश महान। स्वस्थ रहेगी जब मिट्टी हमारी, तभी संपन्न बनेगा हमारा किसान। तो एक बार फिर कहेंगे, अपनी माटी को स्वस्थ बनाइए, अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। और अब सुनिए जीवन की वो सच्चाई जिसे हम और आप अक्सर भूल जाते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: किसान भाइयों, अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम ग्रामीलोक में आपका स्वागत है। किसान साथियों, आप में से जिन भाइयों ने धान की फसल लगाई है, उसमें धान रोपाई के बाद तमाम काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, तभी हमें अपनी फसल से बेहतर पैदावार मिलती है। दोस्तों, धान की फसल में कौन कौन से सामयिक काम करना ज़रूरी होता है, इन तमाम बातों को बताने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे ही बीच के एक प्रगतिशील किसान देवेंद्र सिंह। आपसे बातचीत कर रहे हैं श्री कृष्ण।
2: किसान भाइयों, आजकल आपके खेतों में धान की फसल लगी है, रोपाई हो चुकी है और हमारे साथ सफल किसान हैं देवेंद्र सिंह जी, जिन्हें ये केवी के अवागढ़ से भी काफी जानकारी मिली है। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार सर।
2: ये बताएं देवेंद्र जी कि जो हमारे बहुत सारे किसान भाई धान की फसल लेते हैं खरीफ में, तो धान

0: फसल में, जैसे इस समय खेतों में फसल है, रुपाई हो चुकी है, तो क्या क्या करने योग्य बातें हैं जो किसानों को अपने खेत में करना चाहिए?
1: किसान भाइयों को सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो वैरायटी चल रही है इस समय 1692 है, 1500 है, 1718 है,
0: जी
1: सबसे श्रेष्ठ वैरायटी यहाँ पे अपने आसपास जो चल रही हैं,
0: जी
1: इनके बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ मैं, कि जब हम अपने जो घरेलू बीज डाल देते हैं उसमें एक समस्या आती है किसान के पास, कि उसमें एक बकानी टाइप का, चाहे उसे रोग मान लें, पौधा निकल जाता है।
0: जी
1: तो उसकी रोकथाम के लिए अगर घर का भी बीज किसान भाई डाल रहे हैं तो उसमें बावेस्टन कार्बंडा जिमकी नाम की एक दवा आती है,
0: जी
1: उसको 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से भिंगोते समय उस बीज में डाल दें, तो इससे ज्यादा तो गारंटी नहीं है लेकिन 50% फिर भी उससे रोग वो रुक जाएगा,
0: रोग नहीं होगा वो।
1: वो रोग नहीं होगा। उसके बाद में अगर चाहें तो पौध में भी लगा सकते हैं। जब हमारी नर्सरी हो जाती है 10 दिन की 12 दिन की, तो हल्का सा उसमें खाद लगा सकते हैं, इसको भी बावेस्टन को भी
0: जी
1: उसमें थोड़ा सा मिला करके लगा दे तो रोग की और रोकथाम हो जाती है।
0: जी
1: नर्सरी है, अधिकांश किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं उसे, नर्सरी को कर लेते हैं, कोई 1.5 महीने की है, कोई 32 दिन की है, कोई 35 दिन की है, ये सही समय की नर्सरी नहीं है। अगर समय से सही पैदावार लेनी तो हम अपनी नर्सरी को
0: जी
1: 22 से 25 दिन की लगा देते हैं तो सबसे अधिक पैदावार इसमें हमको मिलती है।
0: यानी नर्सरी लगाने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो 22 से 25 दिन से ज्यादा नर्सरी न लगाएं।
1: ज्यादा 22 से 25 दिन की अगर नर्सरी खेत में लगाते हैं तो वो लकड़ापन की हो जाती है, फिर वो खेत में लगाने के मतलब की नहीं होती है, पैदावार कम देती है, प्रतिदिन उसकी पैदावार गिरती जाती है।
0: तो किसान भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई नर्सरी कितने दिन की है, उसी हिसाब से आपकी पैदावार और अधिक मिलती। और क्या बताना चाहेंगे?
1: और सर मैं ये बताना चाहूंगा, जब नर्सरी हमारी खेत में लग जाती है उसके बाद में हम जब उसमें पहला खाद देते हैं तो खाद लगाने का सही समय 7 से 10 दिन के अंदर हमें पहला खाद दे देना चाहिए। उसमें किसान भाई वैसे तो सब अपनी अपनी समय से लगा देते हैं, वैसे तो उसमें 1.5 किलो गोभी का थेरासल्फेट और 1 किलो का बीघा ये 33% जिंक सल्फेट आती है
0: जी
1: उसे, और 7 से करीब यूरिया लेकर के उसे पहली डोज में लगा दें तो अच्छा रिजल्ट मिलता है।
0: अच्छा, एक बार फिर बता दीजिए कौन कौन सी आपने बताई खादें।
1: ये 7 से 10 दिन के अंदर
0: जी
1: हमारी धान की फसल खाद के समय पे आ जाती
0: यानी
1: है,
0: रुपाई के 7 से 10 दिन के
1: दस
0: अंदर।
1: दिन के अंदर।
0: जी, तो उसमें
1: तो
0: खाद का कौन कौन सा डोज देना है?
1: खाद में हम देना है हमको 7 किलो यूरिया, 1 से 1.5 किलो थेरासल्फेट और 1 किलो 33% जिंक। अगर वो नहीं 33% कहीं मिल पाती है तो 33% में जो पाउच आते हैं चिलेटेड नाम से आते हैं, वो किसी भी कंपनी के हों 33% वो भी होती थे, एक पाउच 1 बीघा में। वैसे तो सबसे उसका रिजल्ट तो स्प्रे में है लेकिन किसान भाई फिर भी उसे बिखेर के भी लगा देते हैं तो वो भी लगा दें, वो भी अच्छा है। और माइक्रो न्यूट्रेंट्स 10% वाला 2 किलो को बीघा उसको भी लगा सकते हैं। उसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं थोड़े थोड़े, मतलब कुछ तो हमारे खेत में अवेलेबल तत्व हैं और
0: जी
1: कुछ हमने उसको दे दिए पौधे को
0: जी
1: तो उसकी पूर्ति वहीं से
0: उसकी
1: शुरू हो
0: पैदावार
1: जाती।
0: अच्छी होती है। अच्छा, ये पहले डोज के रूप में खादें दे दी गई, उसके बाद क्या सावधानी बरतने की जरूरत है?
1: उसके हमारी फसल हम देखते हैं हमारी फसल कैसी चल रही है इस समय, अगर हमको दूसरी डोज देनी है तो उसका भी समय है कम से कम 20 दिन का, उसमें गैप होना चाहिए 30 से 32 दिन तक हमको दूसरा खाद देने का समय उसका सही है।
0: यानी पहली डोज देने के बाद में करीब 20 दिन बाद,
1: जी सर,
0: यानी रुपाई के 30 दिन बाद।
1: 30 दिन बाद, 30 से 32 तक हमको दूसरी डोज उसमें खाद की दे देनी चाहिए, और खेत की बढ़वार देखते हुए
0: कि कैसी बढ़वार हो रही
1: कैसी
0: है।
1: बढ़वार है उसी हिसाब से, अगर बढ़वार सही हो रही है तो थोड़ा हल्का खाद कम लगाएंगे, ज्यादा हो रही है तो कम लगाएंगे, कम हो रही है तो थोड़ा 21 करके लगा देंगे, अगर ज्यादा में ही ज्यादा लगा दिया तो बहुत ज्यादा होगा फिर वो गिर जाएगा, पैदावार उसमें जीरो हो जाएगी,
0: उसमें भी कम हो जाएगी।
1: कम हो जाएगी।
0: तो किसान भाई, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप खेत का निरीक्षण बहुत ध्यान से करते रहें और देखें बढ़वार कैसी, उसी के अनुपात में आपको खादें देनी है।
1: जी
0: ये
1: सर,
0: तो दूसरा डोज हो गया। अच्छा, खेतों में पानी भरा होना जरूरी, कितना पानी हो इसके बारे में बताइए।
1: खेत में सर कुछ वैरायटी ऐसी हैं कि अभी इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, 1692 है, 1500 है, तो इसमें हर समय पानी भरने की कोई जरूरत नहीं है, ये नमी से भी बहुत अच्छा चलता है मेरे खेत में, अभी इस समय लगा हुआ है
0: जी
1: तो अभी बारिश के ही पानी चल रहा है, कभी सूख जाता है कभी बरस जाता तो हो जाता है, अभी ट्यूबवेल का पानी नहीं लगा है, जब जरूरत पड़ेगी तभी लगेगा,
0: यानी अगर नमी भी है पर्याप्त
1: तो
0: आपके
1: भी वो
0: खेत
1: बहुत
0: में।
1: अच्छा चलती है वैरायटी।
0: जी
1: और जो 17-18 वैरायटी और भी जो हाइब्रिड में है कुछ वैरायटी, उनको पानी की जरूरत पड़ती है तो ये कोई इतना जरूरत नहीं है, खासकर हर समय ही उसमें 6 इंच 4 इंच पानी होना चाहिए,
0: जी
1: समय से ही पानी की जरूरत
0: देने की
1: है।
0: जरूरत है। अच्छा, ये तो हो गया दूसरा डोज 1 महीने के बाद में। अब इसके बाद किसान भाई किन चीजों

0: सर अगर वो तीसरा डोज, तो ये दो वेराइटी है ये नहीं लेती, अगर इनमें तीसरा डोज देंगे तो ये नुकसान की ओर जाती है। इसका जो पाल है वो कमजोर हो जाता है, बाली आने से, जब बाली पकने को होती है उससे पहले ही वो गिर जाता है, उसमें ताकत नहीं रहती है।
1: क्योंकि ज्यादा बढ़वार हो जाती है, फिर वो नीचे झुक जाएगा।
0: जी, तो दो ही खाद की जरूरत है,
1: जी
0: और जो हमारा 17-18 है वो भी बहुत ऊंचा बढ़ता है, तो उसमें भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, अगर पड़ती भी है तो कमजोरी के हिसाब से दे सकते हैं।
1: जी अच्छा, ये फसल कितने दिन में तैयार हो जाएगी?
0: 25-22 दिन की नर्सरी लगा दी हमने, लगाने के बाद में 90 दिन में खेत से बाहर काट के किसान कर सकते हैं इन वेराइटियों को। 17-18 जो वेराइटी है वो हमारी आगे चल के पकती
1: मतलब
0: है,
1: 100 दिन, 110 दिन के
0: सौ एक सौ
1: आसपास
0: दस दिन के आसपास पकती
1: यानी।
0: है।
1: तो ये 3 महीने से लेकर और 15 दिन और बढ़ा लें तो ये सभी वैरायटियां पक जाएंगी और उनको किसान भाई अपने काट सकते
0: काट
1: हैं।
0: सकते हैं
1: अच्छा, इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं, उसका
0: सर,
1: निराकरण क्या क्या है?
0: रोग कई तरह के आते हैं, इसमें समस्याएं तो हैं ही किसान के
1: जी
0: लिए।
1: जी
0: जब जब इसमें बाली निकलती है तो एक रोग आता है इसमें, हॉपर नाम का, उसकी भी दवाएं मार्केट में मिल रही
1: यानी
0: हैं।
1: हॉपर कीड़ा।
0: हॉपर कीड़ा वो
1: जी
0: महसूस नहीं हो पाता, जब महसूस होता है जब खेत को वो पछाड़ देता
1: काफी
0: है,
1: नुकसान हो चुका
0: नुकसान हो
1: होगा।
0: चुका है, तो किसान भाई अपनी खेत जब दिख रहा है कि खेत में मेरे में बाली निकलने वाली है तभी उसकी रोकथाम कर सकते हैं, उसको हॉपर वाली दवा लगा दें।
1: हॉपर की पहचान कैसे करेंगे, हॉपर लगने वाला?
0: जी हाँ जी बताऊंगा, हॉपर की पहचान ये, जब हम अपने खेत में जाएंगे
1: जी
0: तो जो हमारी धान का गूला है उसको हम नीचे जड़ पे उन्हों को फाड़ के देखेंगे
1: जी
0: तो उसमें मच्छर से दिखाई देंगे,
1: बहुत बारीक
0: बहुत
1: भुनगे
0: बारीक
1: टाइप के।
0: सफेद सफेद, तो
1: जी
0: समझ लें कि हमारे खेत में हॉपर का रोग
1: लग चुका
0: लग
1: है।
0: चुका है। हॉपर की दवा डालना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: और बाली निकलने से पहले किसान भाई एक स्प्रे और दे लें, NPK 0050।
1: NPK 0050।
0: इसका सर 1 एकड़ में 2 किलो NPK 0050, क्योंकि ये पोटास होता है,
1: जी
0: हमारे धान की फसल पे चमक लाएगा धान पे, और वजन भी लाएगा। और अगर मिलाना चाहते हैं तो वैसे तो इसमें कीटनाशक मिलता नहीं है, कोई किसान मिला देते हैं लेकिन ये केवल अकेला ही लगता है 0050। 52-34 एक ऐसा NPK है कि उसमें हम जिंक 7-12% वाला मिला सकते हैं इसमें।
1: जी दोनों मिला के लगा सकते हैं।
0: जी
1: अच्छा, जैसे हॉपर की रोकथाम कर ली, और कोई रोग जो बाली आने पर जब दाना पड़ता हो तब लगाना पड़ता हो?
0: वो आते हैं और रोग आते हैं, तो उसमें तो जैसे बॉर्डर बना दें मेलाथिन पाउडर का, तो उससे भी
1: जी
0: जो कीट जो लोग कहते हैं पतली आ गई है, अब वो मेरे धान की वो दूध चूस रही है, तो उसका अगर 3-4 1 एकड़ का खेत है तो 3-4 बॉर्डर बना दे उसमें, तो
1: जी
0: वो उससे भी नहीं आती, वो भाग जाती है, 4-5 दिन बदबू रहती है उसकी,
1: जी
0: तो
1: मेलाथियन की।
0: तब तक नहीं आता तब तक उसमें दूध पड़ के तैयार हो जाता है।
1: जी अच्छा, जब फसल कटती है उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: फसल जब हमारी पक जाती है तो सावधानी तो उसमें यह है कि काट किसान भाइयों को सही तरीके से देख के अपनी फसल को कटवाएं, मड़ाई करवाएं उसकी,
1: जी
0: और खेत को जो खेत का जो पाल है उसे नजर लाएं, तो इससे भी हमारे खेत को बहुत लाभ मिलता है
1: जी
0: फसल अवशेष
1: क्योंकि फसल अवशेष में नाइट्रोजन होता है, अगर उसको आप खेत में ही मिला
0: मृदा में
1: देंगे
0: मिला देंगे तो उससे भी बहुत
1: तो
0: अच्छा लाभ
1: नाइट्रोजन जो
0: होता
1: अगली
0: है।
1: फसल के लिए है, जो रबी के लिए हम तैयारी करेंगे, नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा।
0: खेत में अगर पाल है, हमारे खेत में पाल है, हमने उस खेत में जुतवा मिलवा दिया, मिट्टी में मिला के उसमें पानी काट करके
1: जी
0: अगर 5-7 5 किलो का भैया यूरिया मार दें तो वो 6-7 दिन में गल के तैयार हो जाता है, वो जहां
1: जी
0: से खींचोगे वहीं से टूट आएगा, वो
1: जी तो वो आपकी अगली फसल में
0: अगली फसल में वो गेहूं की में काम बढ़िया दे,
1: खाद का
0: गेहूं
1: काम
0: है,
1: करता
0: कोई
1: है।
0: भी चना मटर जो भी लगाना चाहते हैं लहसुन,
1: जी, यानी रबी फसल में लिए वो एक तरह का
0: बहुत
1: खाद का
0: लाभदायक
1: काम
0: होगा वो।
1: करेगा, और पराली जलाने से जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो भी सूक्ष्म जीवाणु वो खत्म हो जाते हैं।
0: वो जो पर किसान भाई पराली जला देते हैं वो कहते हैं कार्बन पैदा से जो होता है, वो ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारे खेत के अंदर जीवाणु वो भी नष्ट हो जाते हैं, उससे
1: जी
0: कोई लाभ नहीं मिलता जलाने से,
1: यानी
0: और
1: मिट्टी की परत खराब हो गई,
0: खराब हो गई वो,
1: पैदावार भी कम आएगी।
0: पैदावार भी कम आती है उससे।
1: तो ये बड़े महत्वपूर्ण बात है जो अभी से किसान भाई को ध्यान में रखनी है कि जो फसल अवशेष है, जो पराली, उसे नहीं
0: न
1: जलाना
0: जलाएं
1: है और उसको मिट्टी मिला दें, और जैसा आपने बताया यूरिया मिला के अगर पानी लगा देते हैं तो वो खाद का काम करेगी। तो देवेन जी, आपने देखे धान के बारे में बहुत विस्तार से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाई बहनों, अभी हमने देवेन सिंह से जाना, धान की फसल में होने वाले सामयिक कार्यों के बारे में आपसे बातचीत कर रहे थे श्री कृष्ण। साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि देवेन सिंह द्वारा बताई गई बातों को आप ध्यान में रखकर अपनी धान की फसल से अच्छी पैदावार जरूर लेंगे। किसान साथियों, धान की फसल के सामयिक कामों को जानने के बाद आइए अब जान लेते हैं मौसम के हाल और बात करते हैं आज के तापमान की। तो आज का न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस। कल के तापमान की बात करें तो कल का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, वहीं अधिकतम 33 डिग्री

0: सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से भारी बरसात होने की भी संभावना है।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम ग्रामलोक में आपका स्वागत है। आइए आनंद लेते हैं एक और लोकगीत का और जानते हैं इनकी क्या परेशानी है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्यालोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मजदूर मंडल।

श्रमिक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। नमस्कार, मैं हूं संतोष वर्मा। कार्यक्रम में आपका साथ निभाने के लिए, आपसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बारिश के इस मौसम में आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जीवन की भागदौड़ में हम सब अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि हमारा घर खुशियों से, अपनेपन से, आपसी विश्वास से भरा रहे। लेकिन जब घर का वातावरण तनाव, झगड़े और हिंसा से भर जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव उन मासूम बच्चों पर पड़ता है जो उसी माहौल में अपने व्यक्तित्व की नींव रख रहे होते हैं। घर बच्चों की पहली पाठशाला है और माता पिता पहले शिक्षक। बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से ही बोलना, व्यवहार करना, दूसरों का सम्मान करना और जीवन के संस्कार सीखता है। ऐसे में यदि घर का वातावरण प्रेम, सहयोग और सम्मान से भरा हो तो बच्चे आत्मविश्वासी, संवेदनशील और जिम्मेदार बनते हैं। पर यदि घर परिवार में आए दिन झगड़े, मारपीट, अपमानजनक भाषा या घरेलू हिंसा का माहौल हो तो इसका बच्चों के मन और व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, जबकि सच तो ये है कि बच्चे हर बात को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। माता पिता के बीच होने वाले विवाद, ऊंची आवाज में झगड़े या हिंसक घटनाएं उनके मन में डर, असुरक्षा और बेचैनी पैदा कर देते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर चुपचाप रहने लगते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास घटने लगता है और ऐसा भी हो सकता है कि ये बच्चे तनाव या मानसिक अवसाद से गिर जाएं। इसके विपरीत कुछ बच्चों का स्वभाव आक्रामक भी हो जाता है, वे गुस्से में जल्दी प्रतिक्रिया देने लगते हैं, रूखा व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे वही व्यवहार सीखते हैं जो बार बार घर में देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे केवल हमारी बातें सुनते ही नहीं हैं बल्कि उस व्यवहार की नकल भी करने लगते हैं। हर परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, अलग अलग विचार होना भी सामान्य बात है, लेकिन बातचीत, धैर्य और आपसी सम्मान के साथ मतभेदों को सुलझाना ही एक अच्छे परिवार की निशानी है। आवेश के क्षणों में संयम रखना और समस्या का शांतिपूर्ण हल ढूंढना न केवल परिवार को जोड़कर रखता है बल्कि बच्चों के मन में भी सुरक्षा और विश्वास की भावना भरता है। यदि घर परिवार में घरेलू हिंसा की स्थिति बन रही हो तो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, विश्वसनीय मित्रों या सहायता सेवाओं का सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है, यह तो पूरे परिवार के वर्तमान और बच्चों के भविष्य पर बुरा असर डालती है। शारीरिक चोट तो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है दोस्तों, लेकिन हिंसा से जो चोट बच्चों के मन पर लगती है वह ताउम्र नहीं भरती। इसीलिए मतभेदों को शांति से सुलझाइए। घर को डर की जगह नहीं बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षा और प्यार की जगह बनाइए, तभी बच्चे मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे, जीवन के विकास पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना दोस्तों केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए भी ज़रूरी है। जैसे हमारा शरीर बीमार पड़ता है वैसे ही हमारा

0: मन भी बीमार हो सकता है। तनाव, डिप्रेशन या दिमागी उलझने कोई नाटक या वहम नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रोग हैं जिनका सही समय पर इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इन मानसिक बीमारियों के कारण क्या हैं, तनाव से कैसे बचें और सही इलाज क्या है, ये सब बातें जानने के लिए आइए सुनते हैं डॉक्टर अनुजा जैन की वार्ता, मनोवैज्ञानिक रोगों के कारण और उनका उपचार।
1: स्वस्थ जीवन जीना एक कला है जो वास्तव में सभी को नहीं आती। अब प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य क्या है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णता स्वस्थ होना है। केवल शारीरिक बीमारी का ना होना ही पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ है, तभी उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। अतः जब भी कोई रोग होता है तब उसका उपचार करना आवश्यक है, लेकिन प्रत्येक रोग का कोई ना कोई कारण होता है और हर रोग का उपचार केवल दवाई नहीं है। हमारे शरीर में अनेक अनेक प्रकार की शारीरिक और मनोरोग उत्पन्न होते हैं। इनके अनेक अनेक मनोवैज्ञानिक कारण पाए जाते हैं। आज सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में डिप्रेशन का, तनाव का, मूड स्विंग का, चिंता का देखा जाता है। इसका आनुवांशिक कारण भी है और जैविक कारण भी। इनमें प्रमुख रूप से हमारे दिमाग के सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे रसायन जिम्मेदार हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक कारणों से तनाव, चिंता, अवसाद आदि मनोविकारों से रोग उत्पन्न होते हैं। वायुमंडलीय प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, जल का प्रदूषण, ध्वनि का प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ताप का प्रदूषण, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रदूषण जैसे अनेकों कारण जिम्मेदार हैं। बचपन की चोट लगना, पारिवारिक संघर्ष होना, आर्थिक दबाव होना, सामाजिक अपेक्षाएं होना जैसे कारण भी मनोविकारों के लिए जिम्मेदार हैं। मन और शरीर अर्थात साइकोमेटिक अंतःक्रिया के कारण से सिर दर्द, पेट दर्द, लगातार दबावपूर्ण स्थिति इन रोगों को बढ़ाते हैं। मादक पदार्थों का सेवन करना जैसे शराब पीना, भांग, गांजा, तंबाकू का सेवन करना इन रोगों की उत्पत्ति में और बढ़ोतरी में सहयोगी कारण है। मैं यहाँ पर आपसे एक और बात करना उचित मानती हूँ कि अभी पिछले वर्षों में पूरे विश्व ने कोविड जैसी महामारी का सामना किया। इस संबंध में चीन के ज़ेग्यांग विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने विश्व के लगभग 204 देशों पर अध्ययन किया। इसकी रिपोर्ट BMZ में प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट के बहुत ही चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए। इस दौरान पूरे विश्व में पुरुष और महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मानसिक विकारों में 23% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले चिंता और अवसाद के मामले 12-14% ज्यादा बढ़े हैं। किशोरों में ये मामले 15% तक बढ़े। ये सब विशेष आपदा के प्रभाव से ही हुआ। बालक का लालन पालन प्रेम में वातावरण और सहानुभूति पूर्वक है। डांटना पीटना उचित नहीं है। किशोरावस्था के पूर्व उचित शिक्षा और परीक्षण रहे। संवेगात्मक अभिव्यक्ति का समुच्चय परीक्षण मिले। संतुलित व्यवहार की सीख दी जाए। आत्मसम्मान को प्राथमिकता देकर सिखाया जाए। प्रेरित किया जाए। विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करना सिखाया जाए। मनोरंजन की उचित सुविधा दी जाए। ये सब कारण किसी भी मनोविकार को रोकने में समर्थ हैं। आपको ये जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि अपच होना, कुपच होना, गैस बनना, सीने पर जलन होना, एसिडिटी जैसे रोग केवल हमारे आहार की गड़बड़ी से ही नहीं है, लेकिन तनाव का होना इन रोगों का बहुत बड़ा कारण है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हृदय रोग का कारण बनता है। यह हमारे खाने में ज्यादा मेद कारक या चर्बी वाले पदार्थ के सेवन से नहीं है, लेकिन बहुत अधिक आलसी और गतिहीन जीवन शैली का परिणाम है। मधुमेह या डायबिटीज आज बच्चे, बूढ़े सबको अपनी जद में लपेट रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि कोई रोग ये है ही नहीं, आपको लगता है कि ज्यादा मीठा खाने से ग्लूकोज की ज्यादा मात्रा

0: से ये रोग होता है, किंतु ऐसा नहीं है। ये हमारे जिद्दी स्वभाव, स्वार्थी दृष्टिकोण, अच्छे सोच की कमी से होता है, जैसे कि हमारे प्रिंक्यास को प्रभावित कर देते हैं, तब यह रोग के रूप में सामने आता है। आज उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप मतलब हाई या लो ब्लड प्रेशर जैसा रोग बहुतायश में लोगों में पाया जाता है। ये केवल अधिक नमक के सेवन से नहीं है, पर मुख्य रूप से भावनाओं के संवेग के, अनुभूति के, विचारों के कुप्रबंध या प्रतिबंध के कारण से है। श्वास रोग, टीवी रोग, अस्थमा, कुछ भी कहिए, ये हमारे फेफड़ों की क्रिया से संबंधित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस रोग के होने में हमारे मन की दुखद भावनाएं शोक के कारण हमारी श्वासों को नियंत्रण रहित कर देते हैं, जिससे कुछ समय बाद फेफड़े प्रभावित होते हैं और श्वास रोग पैदा होते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो केवल L4 या L5 या सर्वाइकल विकार के कारण से नहीं है, अपितु ये भविष्य की चिंता होने से, भविष्य की असुरक्षा होने से, आशा भंग होने से, अचानक अधिक वजन उठाने से ये रोग पैदा होते हैं। अब मैं यहाँ पर ये चर्चा करना उचित मानती हूँ कि रोग और रोगों के कारण जानने के बाद यह भी जान लें कि इन रोगों का संभावित उपचार क्या है। हमारा जीवन अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग को अच्छा रखना, स्वस्थ रखना अनिवार्य है। योग करना, आसन करना, ध्यान करना, प्रकृति के आनंद लेना, नदी के किनारे, झील के किनारे, तालाब के किनारे, जल के दृश्य देखना, उद्यान में घूमना, हंसना और दूसरों को हंसाना, सामाजिक जुड़ाव रखना, आपसी मेलजोल रखना, संवाद रखना, मित्रता रखना और निभाना, सामाजिक कौशल बढ़ाना आदि से व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना भी इन रोगों से निजात पाने में सहयोगी कारण है, जैसे संगीत सुनना, गायन करना, वीणा, बांसुरी आदि यंत्र बजाना, कला में अभिरुचि जगाना, दिमाग की कसरत करना, सृजनात्मक गतिविधि बढ़ाना जैसे लेखन, काव्य पाठ आदि, उचित आराम करना, पर्याप्त नींद लेना, ऐसी उपचार की विधियां अधिक उपयोगी हैं। ओमकार का उच्चारण करना, ऊंचा कंपन देना, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लालच, संदेह, क्रोध आदि के बजाय प्यार रखना, दया करना, उपकार करना, दान पुण्य करना, पूजन भक्ति करना, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना आदि प्रयोग भी लाभकारी हैं। मनोविकार हो गए हैं और अधिक विकसित होने लगे हैं, तब मनोविकृति के तुरंत उपचार के लिए कुशल मनोचिकित्सक के संपर्क करना सर्वथा उचित है। यह आपको रोग और उनकी प्रकृति के अनुरूप अनेक अनेक प्रकार की प्रचलित उचित निदान की विधियां या जांच जैसे इंटेलिजेंस, व्यक्तित्व, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट आदि अपनाकर और विकार अनुसार थेरेपी जैसे CBT, साइकोलॉजिकल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, प्ले थेरेपी, PMR थेरेपी आदि का प्रयोग कर आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएंगे। इस स्थिति से भी अधिक ऊपर रोग की अवस्था हो गई है, तब मनोरोग चिकित्सक या साइकेट्री विभाग से संपर्क करना लाभदायक है। वहाँ एंटी डिप्रेशन, एंटी साइकोमेट्रिक आदि दवाओं से उपचार मिलेगा और जीवन का सच्चा और अच्छा आनंद ले सकेंगे।
1: श्रमिक दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर अनुजा जैन की वार्ता, मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाले रोग और उनका उपचार। उम्मीद है कि हम सब इस ओर जागरूक रहेंगे, मानसिक समस्याओं को छिपाएंगे नहीं बल्कि इलाज कराएंगे, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बनाए रखेंगे। और अब कार्यक्रम में बात दोस्तों अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ सेहत टिप्स की। गर्मी में काम करने, बेवक्त खाना खाने या भारी सामान उठाने से पेट में जब गैस बनने लगे या मरोड़ सी उठने लगे तो एक चुटकी अजवाइन में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर सेवन करें, गैस और पेट दर्द से राहत मिलेगी। या फिर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा चबाकर पानी पी लेना चाहिए, जिससे पेट को आराम मिलेगा। पेट में होने वाली समस्याओं से बचाव के लिए खाली पेट बहुत देर तक काम ना करें। गर्मियों और उमस के मौसम में पसीने की वजह से त्वचा पर यदि खुजली और जलन हो

0: तो उस जगह पर नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर लगा लें, जलन और खुजली कम होगी। नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर इस पानी से नहाने से भी त्वचा के सारे कीटाणु खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर त्वचा संबंधी या अन्य कोई गंभीर समस्या हो तो कभी भी देर ना करें, डॉक्टर से मिलें, इलाज कराएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सेहत टिप्स। और अब कार्यक्रम में आपके लिए आज का प्रश्न। प्रश्न ये है कि वह महान वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने टीवी शो के माध्यम से विज्ञान को घर घर तक पहुंचाया था। हम जानते हैं कि आप जवाब पता कर लेंगे, और अगर नहीं पता कर पाए तो हम बताएंगे, लेकिन पहले ये अंतराल।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकन

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: श्रमिक दोस्तों, अंतराल के बाद आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य की, जिसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लापरवाहियाँ इतनी भारी पड़ जाती हैं कि जान पर बनाए। जब गर्मी का मौसम हो या कोई विशेष पर्व त्योहार, अक्सर हम नदी, नहरों, तालाब, पोखरों के किनारे नहाने चले जाते हैं। ठंडे पानी में उतरना अच्छा तो लगता है, लेकिन कभी कभी यही पानी भूल या लापरवाही से गहरे दुख का कारण बन जाता है। आए दिन हम खबरों में पढ़ते सुनते हैं कि गहरे पानी में हादसा हो गया, लोगों की डूबकर मौत हो गई, या नदी तालाब में नहाने गए बच्चे डूब गए। ऐसी खबरें विचलित कर देती हैं, मगर सच्चाई तो ये है कि इनमें से लगभग 90% दुर्घटनाओं का कारण लापरवाही होता है। बरसात के मौसम में नदियां, नहरें, तालाब और पानी से भरे गड्ढे देखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन ये कभी भी जानलेवा बन सकते हैं। कई बार लोग गहराई का अनुमान लगाए बिना ही पानी में उतर जाते हैं, बच्चे बिना निगरानी के जलाशयों के पास खेलते हैं, या सेल्फी के ही चक्कर में अपनी सुरक्षा को भूल जाते हैं। इसके अलावा काम की थकान मिटाने के नाम पर नशा करके पानी में चले जाना भी जानलेवा हो जाता है। कुछ तो दोस्तों के चक्कर में कि मैं भी तैरकर उस पार चला जाऊंगा जैसी शर्त लगाकर अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं। जब नदी नाव से पार करनी हो तो ऐसा भी कई बार हो चुका है कि नाव की क्षमता से अधिक सवारियां बैठा ली गईं और नाव डूब गई। कारण जो भी हो दोस्तों, जीवनदायी पानी का ही जान ले लेना बहुत दुखद है। इसीलिए सभी को इस बारे में सचेत करने के लिए हर साल 25 जुलाई को विश्व डूब रोकथाम दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस दिवस का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से डूबने से होने वाली अधिकांश दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यदि तैरना न आता हो तो कभी भी गहरे पानी में न जाएं। बारिश के दिनों में पुलों, नालों और पानी के तेज बहाव वाले स्थानों से दूरी बनाकर रखें। किसी भी तरह का नशा करके पानी में न उतरें। बच्चों को अकेले जलाशयों के पास न जाने दें। जहां प्रशासन या स्थानीय लोगों द्वारा मना किया गया हो वहां भी नहाने न जाएं। अगर कोई डूब रहा हो और आपको तैरना ना आता हो तो खुद पानी में कूदने के बजाय रस्सी, सूखी लकड़ी या टायर उसकी तरफ फेंकें। तुरंत आसपास के लोगों की मदद लें या आपातकालीन सेवाओं तक सूचना पहुंचाएं। और एक और सावधानी यह है दोस्तों कि कभी भी क्षमता से अधिक सवारियां नाव में ना बैठाई जाएं। श्रमिक दोस्तों, भले ही हम तैरना जानते हों, लेकिन ये हर परिस्थिति में सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तेज बहाव, फिसलन, अचानक आई गहराई और घबराहट जैसी स्थितियां किसी को भी मुश्किल में डाल सकती हैं। डूब दुर्घटनाओं से बचाव

0: सबसे प्रभावी उपाय यही है कि कोई लापरवाही ना करें, सावधानी बरतें। थोड़ी सी सतर्कता हमारे साथ साथ दूसरों की जान भी बचा सकती है। तो आइए इस बरसात के मौसम में सावधानी को अपनी आदत बनाएं और सुरक्षित रहें।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रमिक दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हर दिन वैज्ञानिक और शोधकर्ता ऐसी नई नई चीज़ें और मशीनें बना रहे हैं जो आने वाले समय में हमारी मेहनत को कम करेंगी और जीवन को बेहतर बनाएंगी। आइए बात करते हैं ऐसी ही दो नई खोजों की। पहले बात कूलिंग जैकेट की। धूप और गर्मी में खेत या निर्माण स्थल पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है, पसीने से तरबतर शरीर और चक्कर से आने लगते हैं। इसी को देखते हुए स्मार्ट कूलिंग जैकेट बनाई गई है। इस जैकेट में छोटे छोटे पंखे और खास फैब्रिक लगा होता है जो बाहर की तेज गर्मी के बावजूद अंदर के तापमान को लगभग 8 से 10 डिग्री तक ठंडा रखता है। आने वाले समय में जब यह तकनीक सस्ती होकर बाजार में आएगी तो कड़क धूप में काम करने वाले हमारे मजदूर भाई बहनों को लू और गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। अब बात दूसरी खोज की। कई बार हम ऐसे दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं जहां पीने का साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, पर युवा वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कमाल की तकनीक खोजी है जो हवा की नमी से पीने का शुद्ध पानी बना देती है। यानी ऐसी मशीन जो हवा में मौजूद नमी को खींचकर उसे ठंडा करती है और फिल्टर करके एकदम साफ मीठे पानी में बदल देती है। जब ये मशीन बाजार में आ जाएगी तो जहां बिजली या सोलर पैनल होगा वहां सिर्फ हवा से दिन भर में सैकड़ों लीटर शुद्ध पानी तैयार हो जाएगा। ये खोजें हमें बताती हैं दोस्तों कि तकनीक और विज्ञान केवल बड़े बड़े ऑफिसों तक ही नहीं है। विज्ञान का एक उद्देश्य ये भी है कि आम इंसान के पसीने की कीमत को समझा जाए और उसकी मेहनत को आसान बनाया जाए। तो हमें चाहिए कि बच्चों को पढ़ने लिखने और नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करें। क्या पता कल को हमारा ही बेटा या बेटी कोई महान खोज कर दे जो पूरे देश का नाम रोशन कर दे। देश में अनेक वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरी दुनिया में नाम कमाया है। एक वैज्ञानिक तो ऐसे भी थे जिन्होंने खेल खेल में ही बच्चों को विज्ञान सिखाने का काम किया, और ये वैज्ञानिक थे दोस्तों प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने विज्ञान को बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं और किताबों के बजाय आम आदमी की भाषा में ढाल दिया। प्रोफेसर यशपाल भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अंतरिक्ष किरणों और खगोल विज्ञान पर अभूतपूर्व शोध कार्य किए। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष भी रहे और देश ने उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। प्रोफेसर यशपाल की सबसे बड़ी पहचान यह रही कि वे विज्ञान को लेकर दूर नहीं गए, बल्कि एक शिक्षक और साथी बनकर आम लोगों के बीच आए। 90 के दशक में वे जन सामान्य के लिए एक दूरदर्शन कार्यक्रम लेकर आए, टर्निंग पॉइंट, जो बहुत लोकप्रिय हुआ। वे टीवी पर आते और बच्चों के मन में उठने वाले छोटे छोटे सवालों के जवाब इतनी सादगी से देते कि हर कोई हैरान रह जाता। आसमान नीला क्यों दिखता है, बारिश की बूंद गोल क्यों होती है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, ऐसी हर वैज्ञानिक बात को वे बहुत ही सरल उदाहरणों से समझा देते। उनका मानना था कि विज्ञान हमारी रोज की जिंदगी

और मेहनत में है। हमेशा कहते थे कि विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं है, बल्कि सोचने और सवाल पूछने का तरीका है। 24 जुलाई 2017 को यशपाल जी का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य और विज्ञान के प्रति उनकी सरल प्रेरक दृष्टि आज भी नई पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही है। तो दोस्तों, ये थी बात आज के ज्ञान सागर में, बात प्रोफेसर यशपाल जी के बारे में। और आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही श्रमिक दोस्तों, आवाज़ का मजदूर मंडल कार्यक्रम यहीं संपन्न करते हैं। मैं संतोष वर्मा फिर मिलूंगा आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7 बज चुके हैं। हमारा अगला प्रसारण हिंदी समाचार बस कुछ ही देर में।
2: मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी

0: सीजीपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजीपी प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ये घोषणा की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
2: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
0: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सभी 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसियर डैन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। द The CJP has withdrawn.

0: अपचित्रण। और आज की हमारी वार्ताकार हैं डॉक्टर ममता सिंह।
1: आज बाजारवाद के दौर में विज्ञापनों का बहुत ही अहम किरदार है, परंतु जिस तरह से विज्ञापन में स्त्रियों को दर्शाया जा रहा है वो चिंतन का विषय है। विज्ञापन की दुनिया में आज विज्ञापन और स्त्री एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं। विज्ञापनों में स्त्री की छवि और उसकी देह को कामुक अपील बनाकर प्रस्तुत किया जाता रहा है। आज विज्ञापन एजेंसियों और उद्योग जगत विज्ञापन की सारी आचार संहिताओं और हमारे परंपरागत मान व नैतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाते हुए स्त्री की कामुक छवि को विज्ञापनों में दर्शाकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। आज की मुक्ति बाजार व्यवस्था में स्त्री देह उसका सौंदर्य विज्ञापन दाताओं के हक में बहुत कारगर भूमिका निभा रहा है। स्त्री देह का बाजारीकरण करके विज्ञापन एजेंसियां अपनी और अपने ग्राहकों की हित साधक बन गई हुई हैं। उनके द्वारा तैयार विज्ञापन एक तरफ स्त्री के सौंदर्य का विकृतिकरण कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मनुष्य की उच्च स्त्री क्षमताओं को कुंठित करके चकाचौंध की कैद में डालने की बड़ी साजिश भी रच रहे हैं। स्त्रियां अपना बौद्धिक सांस्कृतिक आर्थिक और सामाजिक विकास करने की बजाय सस्ते कामों और उपभोक्तावादी जाल में फंसती जा रही हैं। दरअसल स्त्री का गुलामी की तरफ बढ़ता हुआ एक और कदम है। इसे दासी प्रथा का आधुनिक संस्मरण भी कह सकते हैं। शेविंग ब्लेड, टीवी, टायर, जूते आदि के विज्ञापन में स्त्री का देह प्रदर्शन अनेक सवालिया निशान उठाता है, क्योंकि इस तरह के उत्पादकों का इस स्त्री विशेष से कोई विशेष संबंध नहीं है। इस तरह के विज्ञापनों में स्त्री के सौंदर्य को बाजार की वस्तु बनाकर उपभोग की ही एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। चेहरे की ताजगी, कोमलता, शारीरिक सौष्ठव के अनुसार ही विज्ञापन के बाजार में स्त्री के दाम लगाए जाते हैं। इस तरह के विज्ञापन स्त्री के विकास को आत्मकेंद्रित करने के साथ ही स्त्री पुरुष के भेद भरी सोच को भी आगे बढ़ाते हैं। विज्ञापन दाता का सीधा सच्चा सिद्धांत अथवा दर्शन है, विज्ञापनों में स्त्री देह को उत्पाद की ओर इस सीमा तक लुभाना कि जल्दी ही उनका उत्पाद या ब्रांड उपभोक्ताओं की पहली पसंद बन जाए। फेमिना, फिल्म फेयर जैसी पत्रिकाओं के विज्ञापनों में तो कामुक अपील की भरमार रहती है। विज्ञापन की दुनिया में स्त्री की छवि का विश्लेषण करें तो उसमें दो तरह की स्त्री दिखाई देगी। एक ऐसी परंपरागत भारतीय स्त्री की छवि है जिसके जीवन की बागडोर, जिसकी सांस, जिसका सुख चैन पति और ससुराल वालों के हाथों में है, जो दिन रात उनको खुश करने के नुस्खों की तलाश में रहती है। वह ऐसी लक्ष्मी है जो घर को बरकत देती है। वह 2 रुपए के साबुन से पति की पैंट शर्ट चमका देना चाहती है, जो मूव लगाकर अपने कमर दर्द को तुरंत दूर कर जल्दी ही काम पर पुनः जुट जाती है, जो दिन रात पति बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता में पौष्टिक खाद्य पदार्थों का अंबार लगा देती है, खास ब्रांड की चाय या कॉफी से ऑफिस से लौटे पति की थकान दूर करती है। यह सदियों से शोषित भारतीय स्त्री की एक ऐसी छवि है जो ममतामयी माँ, आदर्श बहू और दुल्हन वही जो पिया मन भाए के आदर्श को समेटती हर क्षण अपना बलिदान करने को तत्पर है। उसकी पहचान उसके पति से बनती है। उसमें स्वचेतना की आकांक्षाएं कभी अंगड़ाई नहीं लेती। यह समूची तस्वीर वस्तुतः उस आश्रिता स्त्री की है जिसकी दुनिया का दायरा पति, घर और बच्चों तक सीमित है। उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं इस दायरे को लांघने की हिम्मत नहीं कर पाती, या वो खुशी खुशी इस दायरे में अपनी इच्छा से कैद है। विज्ञापनों में स्त्री की दूसरी छवि एक आधुनिक स्त्री की है जो राह चलते युवक को देखकर टॉक टू मी कहकर आमंत्रण दे सकती है, जो अपनी देह को उन्मुखता के साथ उभार सकती है, जो खुलेआम कजरारे नेत्रों की भाषा से ही उन्माद का ज्वार ला सकती है, जो सौंदर्य को अपने व्यक्तित्व का प्राण तत्व मानते हुए इस सौंदर्य की रक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय मानती है। फैशन, मौज मस्ती और ग्लैमर की दुनिया से जिसका गहरा रिश्ता है, जो विज्ञापन की दुनिया में प्रवेश करके सौंदर्य के बाजार में मुक्ति का सपना सच होते हुए मानती है। सौंदर्य के व्यवसायीकरण ने इस स्त्री में एक खास तरह की उन्मुक्तता की चाह भरी है। विज्ञापन की दुनिया में स्त्री की दोनों ही छवियां विज्ञापन दाताओं के बड़े काम की हैं। बाजारवाद की लहर में वह इन दोनों छवियों को खूब भुना रहा है। मसाले, मिक्सी, दूध, दही, खाद्य पदार्थों, तेल आदि के विज्ञापनों में स्त्री की ऋणबद्ध छवि चुनता है। वहीं कपड़े, फैशन, सौंदर्य प्रसाधन, नशे वाले

0: पेय पदार्थों के विज्ञापन में उसकी मोहक कामुक अदाओं वाली छवि को। रूढ़बद्ध छवि वाली स्त्री में थोड़ा सा बदलाव विज्ञापन दाताओं ने अवश्य दिखाया है कि अब वह स्त्री डिटर्जेंट, चना मसाला, शैम्पू, क्रीम, डाई तथा तेल के अलावा सेल के मौसम में 20-30% छूट पर ढेरों सामान अपने पति और ससुराल वालों की इजाजत के बगैर खरीद लेती है। बेबी की ड्रेस, मुन्ना की टी शर्ट तथा छोटे छोटे गहने पति की गैर मौजूदगी में खरीद लेती है। परंतु यह परिवर्तन भी विज्ञापनदाताओं के हक में अधिक हुआ है। औरत की इस थोड़ी सी आज़ादी ने उनकी विक्की वृद्धि में और ज़्यादा इजाफा कर दिया है। बहुत कम ही विज्ञापन में महिलाएं सम्मानित तरीके से बुद्धिमानीपूर्वक निर्णय लेते हुए सामने नजर आती हैं। कभी कभी उसे एक प्रबुद्ध और जागरूक महिला के रूप में दर्शाया जाता है। उसमें उसकी चेतना संपन्नता स्पष्ट झलकती है, जो पुरुष की तरह जीवन और समाज के महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह बखूबी कर सकती है। मगर ऐसे विज्ञापन क्वार की बारिश की तरह यदा कदा ही देखने को मिलते हैं। विज्ञापन में नारी की मोहक और आकर्षक छवि का इस्तेमाल करके विज्ञापनदाता उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं। इस कोशिश में महिलाओं को भोग की वस्तु बनाकर विज्ञापन के बाजार में प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी उनकी बड़ी अश्लील, अशिष्ट छवि मर्यादित ढंग से प्रस्तुत की जाती है। यद्यपि 1986 में स्त्री शरीर प्रदर्शन के संदर्भ में अश्लीलता चित्रण प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया, जिसमें स्त्री की एक ऐसी अपमानजनक छवि को प्रस्तुत करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना दंड स्वरूप निर्धारित किया गया है। दूसरी बार दोष सिद्ध होने की स्थिति में भारी सजा का प्रावधान है। कानून बन जाने के उपरांत भी आज भी महिलाओं के प्रति विज्ञापनों में देहवादी शोषण बदस्तूर जारी है। जब विज्ञापन के संदर्भ में सामाजिक हित की बात उठाई जाती है, तब विज्ञापन में महिलाओं के प्रति दर्शाए जा रहे इस नकारात्मक दृष्टिकोण पर भी चर्चा की जानी चाहिए। विज्ञापन जगत के ऊंचे खिलाड़ी महिला आजादी के नाम पर जो देहवादी आंदोलन चला रहे हैं, सौंदर्य का जिस तरह बाजारीकरण कर रहे हैं, उन्मुक्तता और स्वतंत्रता के नाम पर बाजार का हित साधक बनाकर स्त्री के लिए जो नए किस्म की गुलामी का इतिहास बना रहे हैं, उनके खिलाफ नारी को स्वयं ही खड़ा होना होगा। अपनी दीनहीन कमजोर छवि के साथ साथ देह प्रदर्शन के विरोध की आवाज उसी को बुलंद करनी होगी। वास्तविक रचनात्मकता के विकास की संभावना की ओर बढ़ना होगा, अन्यथा भूमंडलीय मीडिया बाजार का वर्चस्ववादी साम्राज्यवादी स्वरूप सांस्कृतिक दृष्टि से गंभीर संकट पैदा कर देगा।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था विज्ञापनों में नारी छवि का अपचित्रण। वार्ताकार थी डॉक्टर ममता सिंह। इसी के साथ हमारा आज का विविधा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 7:18 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई।

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये गर्व का क्षण। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता में सीजेपी ने दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में जारी प्रदर्शन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की चर्चा में परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से संबंधित मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री नड्डा ने कहा कि बैठक के दौरान सरकार ने सीजेपी की इस मांग को मान लिया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उसे वापस ले लिया जाएगा और एफआईआर की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: आत्महत्या करने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में आज जालौन विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए अपनी गौरवशाली और नई पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है।
2: बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी, ये क्षेत्र बीहड़ था, अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था, लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक ओर करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है, देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनपद फतेहपुर में 489 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 12 वर्षों में छात्रों और युवाओं के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
2: आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। आपने डिजिटल इंडिया के नाम पर, आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के दिन आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं वैश्विक

0: जगत में अपनी दाग को का लोहा मना सकता है, यह व्यवस्था दी।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दो दिवसीय दौरे पर आगरा पहुंचे। उन्होंने यहां 342 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 53 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। आगरा पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है, जिनके ज्ञान, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश से विश्व प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मान्यता देश की समृद्ध सभ्यतागत और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करती है। श्री मोदी ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर वाराणसी के निवासी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि ये काशीवासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना हम सभी काशीवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। भगवान बुद्ध की प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन स्थली को मिली यह वैश्विक पहचान भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान है। हम इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री का विशेष आभार व्यक्त करते हैं।
1: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद कल पीलीभीत के पूरनपुर में ऐशबाग कासगंज एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बदायूं में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री वर्मा ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस सेवा के शुरू होने से बदायूं और उझानी क्षेत्र के यात्रियों को राजधानी लखनऊ के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी।
3: उस ट्रेन की हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिलेगा। हरी झंडी में अपने जो गृह नगर है, होम टाउन है उझानी, उस रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन उझानी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में सबसे पहली योजना में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया था।
1: प्रदेश के कई जनपदों में रुक रुक कर वर्षा जारी है। कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 25 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बदायूं में गंगा, लखीमपुर खीरी में शारदा और बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 27 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है।
4: मानसूनी प्रवाह बढ़ने के दृष्टिगत 27 जुलाई से पुनः प्रदेश में मानसूनी सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में व्यापक वर्षा के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य मांगे माने जाने के बाद सीजेपी ने प्रदर्शन समाप्त करने का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जालौन में 1274 करोड़ रुपए लागत की 374 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। फतेहपुर को दी 489 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। और यूनेस्को ने सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को विश्व धरोहर सूची में किया शामिल। प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए ये

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। साथियों, आज वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे यानी डूबने से रोकथाम संबंधी जागरूकता दिवस पर आज हम आपके लिए विशेष एक भेंट वार्ता लाए हैं, जिसका विषय है पानी में डूबते व्यक्ति का बचाव एवं उपचार विषय पर, जिसमें आज अतुल कुमार सारस्वत से बातचीत कर रहे हैं अनिंद्र सिंह। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
3: श्रोताओं नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे डूबने से बचाव कैसे किया जाए इस विषय पर। हर वर्ष 25 जुलाई को वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को जल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना होता है, ताकि डूबने जैसी जो कोई स्थिति अगर बनती है तो उससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके और कम किया जा सके। हर साल नदियों, तालाबों, झीलों, नहरों और बाढ़ में बड़ी संख्या में खासतौर से बच्चे और युवा डूबने की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी, सही जानकारी और समय पर बचाव के उपाय कर लिए जाएं तो जीवन जो हमारा बहुत अनमोल है उसको बचाया जा सकता है। आज इसी से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर अतुल कुमार सारस्वत जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
4: जी नमस्कार।
3: अतुल जी, सबसे पहले तो यही बताएं कि ये जो आज वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे जैसे दिवस हैं, उनकी आवश्यकता क्यों महसूस होती है?
4: सिंह साहब, जल जनित दुर्घटनाएं जो हैं वो अचानक और बड़ी घातक होती हैं। किसी को डूबते हुए देखना या ऐसी स्थिति को देखना एक बड़ी तनावपूर्ण स्थिति होती है और ऐसे समय में अधिकांश लोग बिना सोचे समझे ही पानी में कूद जाते हैं, जिससे बचाने वाले की जान भी खतरे में पड़ जाती है। जल सुरक्षा का पहला नियम है, एक पीड़ित को बचाने के चक्कर में खुद को दूसरा पीड़ित कभी न बनाएं। हम आपको उन वैज्ञानिक तरीकों से अवगत कराना चाहते हैं जिससे आप स्वयं सुरक्षित रहकर किसी की जान बचा सकें।
3: बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और ये जो डूबने की दुर्घटना हम मानते हैं, जिसको विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि ये जो है रोकी जा सकने वाली घटनाएं होती।
4: जी बिल्कुल,
3: है ना। तो और हमारे देश में तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, चूंकि बहुत डाइवर्स हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर लोग नदियों, तालाबों, नहरों या जो स्विमिंग पूल्स में आजकल बहुत सारी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। हर साल बाढ़ आती है, इस वक्त चूंकि मौसम भी मानसून का चल रहा है तो सैकड़ों की संख्या में जो है ये घटनाएं होती हैं।
4: जी,
3: और सबसे ज्यादा उसमें प्रभावित जो होते हैं बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं। ये जो वर्ग होता है ये क्यों ज्यादा प्रभावित होता है?
4: असल में इसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण बिंदु जिसको हम कहेंगे, वो ये है कि जब व्यक्ति कोई डूबता है तो उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए आदमी बिना स्थिति का आकलन किए हुए, उसको स्वयं नहीं पता कि पानी कितना गहरा है, पानी का बहाव कितना तेज है, और वो उसको बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है। जबकि नियम तय ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही हम किसी को पानी में डूबते हुए देखते हैं तो चिल्ला के आसपास हमें मदद के लिए चिल्लाना चाहिए, जोर जोर से मदद मांगे, ताकि आसपास मौजूद अन्य लोग या कोई लाइफगार्ड या कोई कुशल तैराक व्यक्ति उस व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंच सके।
3: यानी सबसे पहले हमें अपने आप को जो है आसपास के लोगों को आगाह करना है।
4: जी बिल्कुल,
3: ताकि जो आसपास के लोग हैं या कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मदद कर सकता है वो आपकी स्थिति से अवगत हो पाए।
4: जी बिल्कुल। इसके अतिरिक्त ये भी देखना चाहिए कि व्यक्ति होश में है या बेहोश हो रहा है या वो किनारे से कितना दूरी पर है। अगर हम इस तरीके को सुरक्षा नियमों के अनुसार भांप सकते हो तो

0: हम पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, उसकी जान को भी बचा सकते हैं। इसके विरुद्ध विपरीत में कभी कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि पीड़ित व्यक्ति को बचाने के चक्कर में बचाने वाला स्वयं भी पीड़ित हो जाता है और उसकी भी जान खतरे में पड़ती है।
1: अक्सर लोग जो है बिना सोचे समझे किसी को बचाने के लिए खुद पानी में डूब गए, ये जाने बगैर कि उसका खुद आता है तैरना, या जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो चूंकि उस वक्त जो है भय से ये होता
0: जी
1: है,
0: बड़ा
1: घबराई स्थिति में
0: स्थिति
1: होता है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो क्या क्या चीजें हैं जो सही स्थिति का आकलन करने के लिए जरूरी होती हैं?
0: देखिए सिंह साहब, इसमें एक सुरक्षा नियमों के अनुसार डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए चार मुख्य चरण माने गए हैं, जिसमें हमेशा पहले चरण से शुरुआत करनी चाहिए। चार मुख्य चरणों में रीच, थ्रो, रॉ और गो। रीच का मतलब है कि बाहर से उसकी मदद कर सकें, उस तक पहुंचे, लेकिन हमें स्वयं पानी के बाहर रह करके उस तक पहुंच बनानी है। उसका तरीका होता है कि अगर डूबता हुआ व्यक्ति किनारे के पास है तो खुद पानी में उतरे बिना उसे बाहर खींचने का प्रयास करें,
1: हाँ, नहीं तो आपको भी पानी में खींच सकता है वो।
0: अन्यथा वो व्यक्ति जो घबराया हुआ व्यक्ति है वो हमें स्वयं को हमें मजबूती से पकड़ लेगा और वो हमें भी पानी में अंदर खींच देगा। और उसको बचाने के लिए आसपास में मौजूद कोई लंबी चीज, जैसे कि कोई मोटी रस्सी हो, पेड़ की डाल हो, बांस हो, मजबूत डंडा हो, कोई धोती हो, गमछा हो, वो उसकी तरफ फेंक देना चाहिए, जिससे कि वो उसे पकड़ करके और हम उसको बाहर खींच सकें।
1: मान लो ये चीजें नहीं है तो
0: अगर नहीं
1: सावधानी
0: है
1: भी
0: तो
1: हमें बरतने की जरूरत है भाई, नहीं तो हमारे लिए खुद के लिए मुश्किल हो सकती है।
0: जी बिल्कुल। तो इसमें फिर दूसरा सिद्धांत आता है थ्रो। अगर व्यक्ति डंडा पकड़ने की दूरी से बाहर है तो कोई ऐसी चीज उसकी तरफ फेंके जो पानी पर तैरती हो, जैसे कि कोई लाइफ जैकेट हो, हवा भरा हुआ कोई ट्यूब हो, कोई खाली प्लास्टिक का डब्बा या कोई छोटा ड्रम हो, वो उसकी तरफ फेंके। इससे वो व्यक्ति उसको पकड़कर पानी के ऊपर तैरता हुआ रह सकता है और कम से
1: क्योंकि
0: कम
1: क्योंकि वो जो है तैर रही चीज है।
0: जी वो तैरती हुई चीज है, तो वो उस पर तैरते हुए कम से कम अनवरत रूप से श्वास ले सकता है और जीवित रह सकता है।
1: हाँ, पानी में डूबेगा नहीं, जिससे उसकी जान जा सकती हो।
0: जी
1: वो अगर उसको पकड़ लेगा तो कम
0: जी
1: से कम वो उसका सिर बाहर रहेगा और वो सांस ले पाएगा और तैरता रहेगा।
0: जी इसके अतिरिक्त तीसरा जो नियम है वो है रॉ, यानी कि तैरने वाले साधन का उपयोग करके उस तक पहुंचना। ये उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति बिल्कुल बेहोशी वाली स्थिति में आ गया हो, तो ऐसा कोई साधन, नाव या कोई तैरने का अन्य कोई साधन, मान लीजिए लाइफ जैकेट वगैरह कुछ है, तो उसका उपयोग करके व्यक्ति तक बचाव दल को पहुंचना चाहिए, जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। और चौथा जो सिद्धांत है इसमें वो है गो। ये एक आखिरी सिद्धांत है, जब सारे रास्ते बंद हों और कोई भी रास्ता न हो उस तक उसको बचाने का, तब इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। और ये
1: आपको खुद पानी
0: सिद्धांत
1: में उतरना
0: जी
1: पड़ेगा
0: ये
1: फिर।
0: तभी हो सकता है, हमें स्वयं पानी में उतरना पड़ेगा। लेकिन पानी में उतरने से पहले कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि डूबते हुए व्यक्ति के पास कभी भी सामने से न जाएं, क्योंकि घबराहट में क्या होता है अक्सर कि वो व्यक्ति आपके हाथ को या गर्दन को या आपको बुरी तरीके से जकड़ सकता है, जिससे कि आप स्वयं तैरने में आपको स्वयं अवरुद्ध हो जाएंगे। तैराक है भले ही, लेकिन हाथ पैर बंधने के बाद आप स्वयं नहीं तैर पाएंगे और उसके साथ साथ आप भी डूब सकते हैं। दूसरा है कि जब आप उसको व्यक्ति को पकड़ें तो पीछे से पकड़ें उस व्यक्ति को और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाएं, उसके चेहरे को हमेशा पानी से ऊपर रखा जाए, जिससे कि वो व्यक्ति पानी के ऊपर रहे, उसका मुंह और नाक और वो सांस ले सके।
1: असली चीज ये है कि पानी में वो सांस कैसे ले पाए, तो उसका नाक वाला हिस्सा या मुंह जो है वो
0: जी
1: ऊपर
0: उसका चेहरा
1: पानी से
0: पानी
1: रहना
0: से हमेशा
1: जरूरी है।
0: ऊपर होना चाहिए और एक हाथ से आप उसको पकड़ें। और ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है सिंह साहब जो एक कुशल तैराक होगा, क्योंकि कुशलता इस कार्य में बड़ी आवश्यक है। बिना सोचे समझे पानी में कभी ना उतरें। ऐसी स्थिति में जब उसको हम बचाव करते हैं तो उसके शरीर को या उसके हाथ को या छाती के सहारे किसी तरीके से उसको टिकाकर और पैरों का उपयोग करके अपने दूसरे हाथ का और पैरों के सहायता से तैरते हुए किनारे की तरफ तैरना होता
1: ये
0: है।
1: आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद अच्छे तरह
0: जी
1: से
0: बिल्कुल।
1: तैरना
0: बिना
1: जानते
0: अगर
1: हैं।
0: आप व्यक्ति कुशल तैराक नहीं है तो वो कभी पानी में ना उतरे, क्योंकि उसके साथ साथ वो स्वयं अपनी जान भी खतरे में डाल सकता है।
1: तो ये बड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है कि अगर आप देखें किसी को डूबता हुआ तो आप जो है अगर तैरना नहीं जानते हैं तो कम से कम खुद पानी में ना उतरें,
0: जी बिल्कुल।
1: उसको बाहर से बचाने का प्रयास करें। जैसे कि आपने कहा कि पास में कोई अगर मौजूद है चीज, लंबी कोई
0: कोई
1: रस्सी
0: रस्सी,
1: है,
0: डंडा,
1: डंडा
0: जी
1: है,
0: बिल्कुल।
1: तो उसका बांस वगैरह है अगर, या नहीं है कुछ तो आपके पास जो कपड़ा है उनको
0: जी जो
1: आपस में
0: कपड़े हों
1: बांध के
0: उसको,
1: उस
0: हाँ
1: तक
0: जी
1: पहुंचा
0: उसके
1: सकते
0: इसकी
1: हैं।
0: एक रस्सी रोप बना करके और उस तक फेंक सकते हैं, जिससे कि वो उसको पकड़ के पानी से बाहर आ सके।
1: और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे डूबने के लिए कोई है किनारे की तरफ आ रहा है तो आप हाथ बढ़ा के उसको पकड़ते हैं कि
0: जी
1: बाहर खींच लें,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: वो भी कभी कभी मुश्किल भरा हो सकता है।
0: जी, मुश्किल भरा होता है, लेकिन उस स्थिति में जब हम उसको हाथ पकड़ के खींचने का प्रयास करते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि खड़े होकर के उसको न खींचें, या तो पेट के बल लेट करके उसको बाहर खींचा जाए या घुटने के बल अपने हाथ का

0: सहारा लेते हुए पहले अपनी पकड़ मजबूत की जाए, तब उसके बाद उसको खींचना चाहिए।
1: आप कोई मजबूत चीज पकड़ भी सकते
0: या
1: हैं,
0: हम किसी मजबूत चीज को पकड़ करके पीछे से एक हाथ से एक कुछ पकड़ लें, पेड़ की टहनी, खंभा या कोई चीज, रस्सी सांकर कुछ पकड़ के, तब उस व्यक्ति को सहारा दे करके बिना अपनी मजबूत स्थिति किए हुए उसको खींचना स्वयं के लिए घातक हो सकता।
1: चलिए, ये तो बड़ी सावधानी भरी चीजें हैं जिनको आपको जहन में रखने की जरूरत है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को किनारे पे आप लेके आ गए, आपने बचा लिया
0: जी,
1: पानी से बाहर निकाल लिया
0: जी,
1: तो फिर उसके बाद की जो प्राथमिक चिकित्सा होती है वो किस तरह से की जाए?
0: देखिए सिंह साहब, व्यक्ति को पानी से बाहर निकालने के बाद उसका हर क्षण हर सेकंड बड़ा कीमती होता है, अतः इसके परिपेक्ष में हमें कुछ कदम तुरंत ही उठाने चाहिए। जैसे कि उसके होश की जांच करें, सबसे पहले व्यक्ति को ये चेक करें कि उसको पीठ के बल हम सीधा लेटाएं और उसकी सांस और नाड़ी की जांच करें,
1: चल रही
0: क्या
1: है
0: उसकी
1: नहीं?
0: सांस चल रही है कि नहीं, उसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं, और अगर ऐसी स्थिति है तो हमें तुरंत उसके साथ ही तुरंत एम्बुलेंस या आपातकालीन सेवाओं को फोन करके उनको अविलंब हमें बुलाना पड़ेगा, जिससे कि वो उस व्यक्ति को, यदि होश में है और व्यक्ति खांस रहा है तो आपातकालीन सेवाओं से आने से पहले हम जो कर सकते हैं वो ये स्थितियां हैं। अगर व्यक्ति खांस रहा है तो उसको करबट दिला करके बिठा सकते हैं या लिटा सकते हैं और उसकी पीठ को धीरे धीरे थपथपाएं, बहुत अधिक दबाव देने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे थपथपाएं जिससे कि उसके पेट और फेफड़ों में गया हुआ पानी बाहर निकल सके,
1: क्योंकि सबसे पहले फेफड़ों में पानी भर जाता है।
0: जी बिल्कुल,
1: सीपीआर की भी जरूरत पड़ती है।
0: जी, अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है और सांस नहीं ले पा रहा है या नाड़ी नहीं चल रही है तो उसको तुरंत सीपीआर देना शुरू करना पड़ेगा। सीपीआर के कुछ प्रोसेस होते हैं सिंह साहब, मैं आपके मंच के माध्यम से अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं
1: जी
0: कि सीपीआर देने का जो सही एक तरीका जो हमारे सुरक्षा दल ने बनाया है उसमें है कि चेस्ट कंप्रेशन, उसकी छाती को दबाना, जैसे कि अपनी दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखकर पीड़ित की छाती के ठीक बीचों बीच जो स्टर्नम होती है, बीच वाली जो हड्डी होती है
1: जी,
0: उस हड्डी को ठीक से दबाना है और उसके ऊपर अपने पूरे कंधों का वजन डालते हुए उसकी छाती को तेजी से दबाना है और कम से कम ऐसे दबाना है कि एक मिनट में 100 से 120 बार हम उसको दबा सकें प्रेशर के साथ, उससे उसके दिल की धड़कन वापस आने के चांस बहुत होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट माना जाता है इसमें रेस्क्यू ब्रीदिंग, 30 बार कम से कम हमें छाती दबानी होगी और उसके बाद पीड़ित का सिर पीछे की तरफ झुकाकर नाक को उंगलियों से बंद कर दें और अपने मुंह से उसके मुंह में 2 बार गहरी सांस फूंकें। सांस इतना तेज हमें देनी है कि सांस देते समय उसकी छाती फूल जाए, अगर छाती फूल रही है कि नहीं फूल रही है ये हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा।
1: जी जी, जी।
0: और ये प्रक्रिया सिंह साहब तब तक जारी रखनी होती है जब तक कि कोई मेडिकल टीम ना आ जाए या व्यक्ति खुद सांस लेना शुरू ना कर दे।
1: मतलब आपको उसको कहीं ना कहीं सांस देना जरूरी है, उसका सांस लेना जरूरी है, चाहे वो आपके माध्यम से ले या वो खुद ले पाए।
0: जी बिल्कुल,
1: तो जब तक मेडिकल टीम आए तब तक आपको उसकी सांस चला के रखने की जरूरत
0: है। उसको किसी भी तरीके से हमें उसकी सांस को जीवित रखना है, उसकी नाड़ी को चला के रखना है, ऐसा प्रयास करना है। हालांकि हम स्वयं वहां पर इतनी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है कि हम उसको कोई किसी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट या कुछ दे सकें, लेकिन ये प्राथमिक उपचार है, प्राथमिक चिकित्सा है जिससे कि व्यक्ति की जान बचाने के लिए हम भरसक प्रयास कर सकते हैं।
1: उल्टा लिटा के भी क्या दबाते हैं जिससे पानी वगैरह बाहर निकल जाए?
0: जी, ये असल में ये सिंह साहब जो है मोस्टली लोग क्या होता है आजकल जो फिल्मों में देखते हैं कि पेट में पानी भरा और उसको पेट के बल लिटा दिया और फिर उसको जोर जोर से दबाने लगा, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। असल में इस तरीके से पेट को बहुत ज्यादा जोर से दबाने से होता क्या है कि पेट में जो गंदगी गई होती है वो किसी भी तरीके से फेफड़ों में जा सकती है, श्वास के साथ उसके फेफड़ों में जा सकती है और फेफड़ों में जाने से उसको अदर पल्मोनरी डिजीज, जो फेफड़ों की परेशानियां हैं, वो बन सकती हैं जिससे कि खतरे में उसकी जान पड़ सकती है।
1: ठीक बात, तो ये अगर उसकी फिर सांस वापस आ जाती है
0: जी,
1: तो उसके बाद फिर आपको उसको डॉक्टर को?
0: जी बिल्कुल, ऐसा नहीं करना है कि अगर व्यक्ति को हमने सीपीआर दिया या अपने जो भी प्राथमिक बचाव की व्यवस्थाएं करी और व्यक्ति श्वास लेने लगा, उसकी नाड़ी चलने लगी, तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, हम उसको किसी भी तरीके से अस्पताल में जरूर लेके जाना होगा। कभी कभी होता ऐसा है कि पीड़ित व्यक्ति होश में आ जाता है और हम सोचते हैं कि अब इसकी जान बच गई, लेकिन जो नदी या तालाब का जो गंदा पानी होता है, जो मिट्टी का गदला पानी होता है, वो उसके फेफड़ों में चला जाता है और थोड़ा सा पानी भी कुछ घंटों के बाद उस व्यक्ति को फेफड़ों की गंभीर परेशानी, गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है जिससे कि जीवन उसका दोबारा से खतरे में पड़ सकता है।
1: आजकल अतुल जी देखा जाता है कि खासतौर पे युवा जो वर्ग है
0: जी,
1: वो वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और बोटिंग्स
0: जी,
1: इन सब के बहुत शौक रखते हैं
0: जी,
1: तो इन गतिविधियों

0: के दौरान सुरक्षा मानकों का, सुरक्षा उपायों का पालन करना वो कितना जरूरी हो जाता है?
1: पुराने बुजुर्गों की कहावत है कि जल और अग्नि ये कभी किसी को नहीं बख्शते, इनसे खिलवाड़ कभी न करें, इनसे हमेशा बचाव रखें। अगर आप पानी की गहराई से परिचित हैं, पूरी तरह आश्वस्त हैं कि पानी की गहराई कितनी है, तभी पानी में उतरें, पानी के साथ खिलवाड़ कभी न करें, पानी को खेल

0: खिलवाड़ कभी न करें, पानी को खेल न समझें। बहता हुआ जल भयानक रूप कभी भी ले सकता है और उससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ सकता है, हमेशा बचाव रखना चाहिए।
1: और ये जो ऐसे इस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स जहां होते हैं,
0: जी
1: वहां पर जो व्यक्ति घूमने फिरने के लिए या स्पोर्ट्स करने के लिए जाता है तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग नहीं होते,
0: जी
1: और वहां पर जो सुरक्षा के लिए या जो ट्रेनर्स हैं
0: जी जी
1: तैनात हैं तो
0: जी
1: उनकी निगरानी में ही शायद जो है ज्यादा बेहतर होगा अगर आप
0: जी बिल्कुल
1: कोई भी गतिविधि
0: अगर
1: करें।
0: अगर वहां पर सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं तभी आप वहां कोई गतिविधि करें। बहुत सारी नदियों में हमारे भारतवर्ष में रिवर राफ्टिंग का चलन शुरू हुआ है और बहुत सारा युवा वर्ग जो है रिवर राफ्टिंग के लिए जाना शुरू कर दिया है। लेकिन रिवर राफ्टिंग करते समय आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था पहले मजबूत करें। रिवर राफ्टिंग करते समय बिना लाइफ जैकेट के कभी भी दुस्साहस न करें कि नदी में नाव में बैठ करके मैं रिवर राफ्टिंग करने जाऊं या मैं तैरना जानता हूं, क्योंकि आप जहां तैरते हैं आप स्विमिंग पूल में तैरते होंगे लेकिन नदी की गहराई में और स्विमिंग पूल के तैराकी में जमीन आसमान का अंतर होता है। वहां पर आपको सुरक्षा मानकों का पूरा पूरा विशेष ध्यान रखना होगा।
1: आजकल हालांकि जो आपदा प्रबंधन है हमारे देश में
0: जी
1: वो काफी उसमें सुधार हुआ है,
0: जी
1: लेकिन आपदा प्रबंधन में सिर्फ इन्हीं एजेंसीज की भूमिका को हम ना उसके भरोसे रहें, बल्कि जो एक सामुदायिक भागीदारी है
0: जी
1: या सामुदायिक जागरूकता इनके प्रति जो है वो बड़ी जरूरी है, तो उसका प्रशिक्षण भी देना जरूरी है क्या समय समय पर? आप उसकी आवश्यकता को कैसे देखते
0: जी
1: हैं?
0: आपदा प्रबंधन विभाग की उपलब्धता भारतवर्ष में मोस्टली मैंने देखा है, अधिकतर मैंने देखा है कि तभी महसूस करता है व्यक्ति जब वहां कोई घटना घट चुकी होती है या कोई व्यक्ति डूब जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वो लोग आपदा प्रबंधन विभाग में या पुलिस वगैरह में जहां भी है वो लोग सूचना देते हैं। पहले व्यक्ति स्वयं ही प्रयास करता है, लेकिन स्वयं प्रयास करना बड़ा घातक होता है। इसके लिए जब तक कोई योग्य, कोई जानकार, कोई अच्छा कुशल तैराक व्यक्ति न हो तब तक वहां पानी में उतरना या जान बचाना या कुछ भी कोई इस तरीके का स्पोर्ट्स वगैरह में भी जाना, जो रिवर राफ्टिंग वगैरह और जो पानी से जुड़े हुए जो खेल होते हैं आजकल हमारे भारतवर्ष में, जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर पानी से जुड़े हुए बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति कुशल तैराक नहीं है तो मैं इस मंच के माध्यम से जन समुदाय को ये सूचना देना चाहता हूं कि वो इस तरीके के प्रतिभाग कभी जो है ऐसे खेलों में प्रतिभाग ना करें और ऐसे खेलों में कभी पार्टिसिपेट ना करें।
1: चलिए अतुल जी, जाते जाते हमारे श्रोताओं को अगर आप कोई तीन संदेश जो देना चाहें कि हर परिवार को जिन्हें अपना के डूबने जैसी घटनाओं से बच सकता है।
0: देखिए सबसे पहले तो जल ही जीवन है, ये हमें ध्यान रखना है। जल जीवन है, जल खेल नहीं है, हमें उससे खेलना नहीं है। हमें उसको एक हमारे भारतवर्ष में जल को देवता के रूप में माना गया है तो उसके साथ हमें खिलवाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अगर कहीं कोई व्यक्ति हमारा सहृदयी, हमारा प्रेमी, हमारा परिचित या कोई अन्य व्यक्ति, अगर हम कहीं किसी दूसरे व्यक्ति को भी देखते हैं और अगर वो डूब रहा है तो बिना सोचे समझे जाने हमें पानी में कभी नहीं उतरना चाहिए। और तीसरा, मैं इस मंच के माध्यम से एक ये संदेश देना चाहता हूं अपने जन समुदाय को कि अगर ऐसी कहीं भी कोई भी स्थिति है तो हमें एक मानवता के नाते वहां हर संभव प्रयास करना चाहिए कि व्यक्ति की जान किसी तरीके से बचे। थोड़ा अपना समय हमें देना चाहिए और जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन हो हमें उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए उन सभी साधनों का उपयोग करना चाहिए।
1: धन्यवाद डॉक्टर अतुल जी, आज आपने जो डूबने से कैसे बचा जाए, उनके प्रति क्या सावधानी हम बरत सकते हैं और कैसे जन हानि को रोक सकते हैं, उससे बचा जा सकता है, इन पहलुओं पर आपने जो आज जानकारी साझा की है हमारे श्रोताओं के साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसमें आज डॉक्टर अतुल कुमार सारस्वत से बातचीत कर रहे थे अनिंद्र सिंह। इस बातचीत का विषय था पानी में डूबते व्यक्ति का बचाव एवं उपचार। साथियों, आज 25 जुलाई को हम विश्व डूबने से बचाव दिवस यानी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे मनाते हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों को डूबने जैसी रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन की शुरुआत कहां से हुई थी? आइए हम बताते हैं। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 2021 में एक प्रस्ताव पारित करके की गई थी। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 25 जुलाई को

ये दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस अभियान का नेतृत्व विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करती है, जो विभिन्न देशों की सरकारों एवं संगठनों के साथ मिलकर डूबने की घटनाओं को कम करने के लिए कार्य करता है। साथियों, वर्ल्ड ड्रोनिंग प्रिवेंशन डे का 2026 का मोटो है, योर स्टोरी कैन सेव अ लाइफ, यानी आपकी कहानी किसी की जान बचा सकती है। इस संदेश का अर्थ यह है कि यदि लोग अपने अनुभव, सीख और सावधानियों को दूसरों के साथ साझा करें, तो वे किसी को डूबने जैसी दुर्घटना से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया में लाखों लोग डूबने की घटनाओं से प्रभावित होते हैं और लगभग 3 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या बच्चों और युवाओं की होती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि अधिकांश डूबने की घटनाओं को सही जानकारी, सतर्कता और समय पर बचाव उपायों से रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत जैसे विशाल देश में, जहां अनेकों नदियां, तालाब, झीलें, समुद्र तट और कई बड़े जलाशय हैं, वहां जल सुरक्षा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। भारत सरकार, राज्य सरकारें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, भारतीय तट रक्षक बल तथा विभिन्न सामाजिक संगठन मिलकर लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जल सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, रैलियां और पोस्टर प्रतियोगिताएं, तैराकी प्रशिक्षण, जीवन रक्षक तकनीकों का प्रदर्शन तथा फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। कई राज्यों में बच्चों को सुरक्षित तैराकी और पानी के आसपास सावधानी बरतने की शिक्षा भी दी जा रही है। साथ ही विश्व स्तर पर विभिन्न देश डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित जलाशय, चेतावनी संकेत, लाइफ जैकेट के उपयोग को बढ़ावा देना, तैराकी शिक्षा तथा आपातकालीन बचाव सेवाओं को मजबूत करना है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति केवल लापरवाही या जानकारी के अभाव में अपनी जान न गंवाए। साथियों, हम सभी नागरिकों का इस अभियान में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। हमें कुछ सरल लेकिन जरूरी सावधानियां हमेशा अपनानी चाहिए, जैसे छोटे बच्चों को कभी भी पानी के पास अकेला ना छोड़ें, तैरना सीखें और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करें। नाव या जल क्रीड़ा या कोई भी वाटर स्पोर्ट्स के समय हमेशा लाइफ जैकेट जरूर पहनें। बाढ़ या तेज बहाव वाले पानी में प्रवेश करने से बचें। किसी को डूबता देखकर बिना प्रशिक्षण के सीधे पानी में न कूदें, बल्कि तुरंत सहायता बुलाएं और उपलब्ध बचाव उपकरणों का प्रयोग करें। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। साथियों, डूबना केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी त्रासदी है जिसे जागरूकता, सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से काफी हद तक रोका जा सकता है। आइए आज इस विश्व डूबने से बचाव दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि जल सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे और अपने छोटे छोटे प्रयासों से अनेक अनमोल जीवन बचाने में योगदान देंगे।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश यहीं संपन्न होता है। इस मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को है। हमारा अगला प्रसारण इस सप्ताह संसद में हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही देर में।

के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार

को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर

सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। राज्यसभा में भी मानसून सत्र के 4th दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश

0: भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव के लिए एक ही संपर्क भाषा है, वो है हिंदी। ये सुविचार है फादर कामिल बुल्के का।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म चार धाम से, हरिहरन की आवाज में। उदाई शंकर पानी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है सुरेंद्र कोहली ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला भजन हमने लिया है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, केदारनाथ फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का फिल्मों से भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म श्री 420 से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा मकान से, लता मंगेशकर की आवाज में। वर्मा मलिक के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: श्रोताओं, दो रास्ते फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा आज का चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण समाचार संध्या बस कुछ ही देर में।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता

जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकुशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉक्टर सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा।

इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देश भर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जंतर मंतर और पूरे मुल्क की सूरत हाल को मद्देनजर रखा। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की खिदमत उनकी जिंदगी की अवलीन तरजीह रही है और वो हमेशा इस बात पर अहद बस्ता रहेंगे। जनाब प्रधान ने कहा कि 16 जुलाई को ऐलान किए गए नीट यूजी नतायज इत्मीनान बख्श थे। इनमें कमजोर तबकों से वाबस्ता कई तलबा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। जनाब प्रधान ने कहा कि अलबत्ता ऐसे वक्त में भी जिम्मेदार ओहदों पर फायज अफराद ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की और तलबा को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि इन बातों से उन्हें गहरी तकलीफ पहुंची है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के साथ साथ वजारत तालीम का चार्ज सौंपा गया है। जनाब जोशी इस वक्त सारिफीन के उमूर, खुराक और अवामी निजामे तकसीम, नेज नई और काबिल तजदीद तवानाई के वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वजरा की मरकजी कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। सीजेपी ने हुकूमत के जरिए अपने मुतालबात पूरे किए जाने के बाद अपना एहतजाज खत्म कर दिया है। मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सीजेपी के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात और पेपर लीक को रोकने के इकदामात के लिए उसके मुतालबात पर तवज्जो मरकूज की गई। बाद में नई दिल्ली में सीजेपी के वफद के साथ एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग के दौरान हुकूमत ने सीजेपी के उन मुतालबात से इत्तेफाक किया है कि एहतजाज करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई और ना ही उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन एफआईआर ना हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं, उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: सीजेपी के चीफ तर्जुमान सौरभ दास ने इस उम्मीद का इजहार करते हुए एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया कि जिन उमूर पर इत्तेफाक हुआ है उन पर मुतफक्का वक्त की मुद्दत में अमल दरामद किया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वालों के कुनबों को मुआवजे देने के मामले पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस जिम्न में हुकूमत को पूरी हमदर्दी है और वो उसूल और जवाबित के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा फराहम करने को यकीनी बनाएगी।
1: कंपेंसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपेंसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: इस दौरान सीजेपी के कौमी तर्जुमान आशुतोष रांका ने तमाम एहतजाज करने वालों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर एहतजाज खत्म करें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मुल्क के तालीमी निजाम में इस्लाहात के लिए ठोस इकदाम करे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तालिब इल्मों की जीत करार दिया। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के तमाम स्टेशन अब मुसाफिरों की खिदमात के लिए खुल गए हैं। इससे कबल दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने सिक्योरिटी वजूहात के बाइस 18 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया था। आसाम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है और तकरीबन 1,15,000 लोगों ने इमदादी कैंपों में पनाह ली हुई है। शिवसागर, चराइदियो और जोरहाट सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर है। सैलाब से मजीद 14 लोगों की अमवात की खबर है, जिससे रियासत में हलाक होने वालों की कुल तादाद 61 हो गई है। मुतासर इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में सैलाब से इंसानी जानों के नुकसान और उससे होने वाली तबाही पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा से टेलीफोन पर बात की और रियासत में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: दोस्तों विज्ञान भारती के आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। विज्ञान जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस मनाए जाने के अवसर पर आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है आईवीएफ तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताज़ा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक

0: 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयूज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं DAVPG कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या।
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में वो एक बेसिक

0: केमिकल रिएक्शन पर आधारित है जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन एक सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं।
0: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं और उस एनर्जी का उपयोग करके, जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफिल करने में इस्तेमाल किया और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहां पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलकर वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
2: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती में बहुत कम पाए जाते हैं, कम इस सेंस में है कि ये है धरती में बहुत सारे बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन है। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है, जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है, तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
2: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से वापस जीरो लाएंगे तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट

0: का यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स से नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे NdFeB बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है, तो Nd जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशियंसी है वो Nd की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशियंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय की जब हम Nd और Fe को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्यूमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
0: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना, तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है। और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
0: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और आईवीएफ तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व आईवीएफ दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से आईवीएफ तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो आईवीएफ है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजन ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि क्वांटिटी, उनकी मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपियरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स की, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ, और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है, और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमेट, एक फीमेल और मेल गेमेट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे 1 पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब 0 डे है और फिर

0: स्लोली स्लोली 5वें दिन तक एंडोमेट्रियम यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है और फिर चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं 5वें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
1: दोस्तों, आईवीएफ तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं।
0: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां की पहले हम एम्ब्रियोज को देखते थे 5 दिन में 2 बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम इन्वायरमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती है। देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते, तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीज

0: वीडियोस अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते। तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से, और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एबसेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा। तो इस सेंस में जो चांसेस हैं अटेम्प्ट हैं IVF के वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर चार मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कंफ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
1: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों, और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने, और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
2: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है, और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है। यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए गए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पर निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से।
3: देखिए जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि एक कहीं संस्थान है, एक कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाएं। ऐसी टेक्नोलॉजी तो हम हम जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार है, फ्रुगल नवाचार है, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गांवों से जोड़ना, ये एसटीआई है क्योंकि ये

0: से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए एसटीआई इंपॉर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए, और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
1: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
0: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने स्टेम की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़े, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सूंघें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही हैं बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा, मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा, वो कैसे बदलेगा, सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर के। तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
2: जुलाई का ये महीना सिर्फ मानसून की फुहारें लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक डीएनए की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार सीढ़ी जैसा मॉडल तैयार किया था। डीएनए के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजलिन ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

0: श्रोता हूँ, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी की एक ग्रेड गायिका श्रीमती आदिति बैनर्जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती आदिति बैनर्जी।
1: श्रीमती आदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नील माधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूरब अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती आदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूरब अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
2: श्रीमती आदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू। फॉर नियरली 14 ईयर्स शी मास्टर्ड द ऑथेंटिक पूरब अंग गायकी परफॉर्मिंग ठुमरी, दादरा, होरी एंड कजरी एंड ऑल्सो एकम्पनीड हर गुरु ऑन न्यूमरस प्रेस्टीजियस ओकेजन्स। इन एडिशन टू टॉपिंग हर एमए एंड एमफिल डिग्रीज इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विथ गोल्ड मेडल्स, श्रीमती आदिति बैनर्जी वॉज स्पेशली ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण गिरिजा देवी ड्यूरिंग द पूरब अंग गायकी उत्सव।
1: आइए सुनते हैं।

0: श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी, जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं बैरन रतिया कैसे आऊं।
1: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। शी बिगिन्स हर रिसाइटल विथ ठुमरी कंपोज्ड इन राग मिश्र तिलक कामोद सेट टू दीपचंदी ताल। बैरन रतिया कैसे आऊं।

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामोद ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे and broadcast came to you from Akashwani Delhi. Namaskar. Ye Akashwani Delhi ka

0: प्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
3: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।